मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 की आषाढ़ मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 11 जुलाई 2026। इस समय प्रातः के 5:56 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। इस समय प्रातः के 6 बजने को है। अब कुछ ही पलों में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच मुक्त व्यापार समझौते सहित वाणिज्य और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत जारी है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और प्रमुख उद्योग तथा खेल जगत की हस्तियों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की यात्रा पूरी करने के बाद न्यूजीलैंड पहुंचे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। भारतीय समुदाय ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की दो दिवसीय यात्रा के स्वागत में ऑकलैंड के प्रसिद्ध स्काई टॉवर को भारतीय तिरंगे के रंगों से रोशन किया गया है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये न्यूजीलैंड की 40 साल बाद पहली यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवई ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों को लाभ होगा।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। स्वदेशी स्टील्ड फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना भारत की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसीलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। ये सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। भाजपा ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को

0: उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन अहमद अल मुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खेलों में फीफा विश्व कप में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। आज तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। विंबलडन टेनिस में आज महिला सिंगल्स फाइनल में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, प्रातः के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

हे पवन सुत अंजनी नंदन श्री रामदूत, इस संसार में आपके समान कोई दूसरा बलवान नहीं है। आपको हम बारंबार नमन करते हैं।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। स्वर थी लता मंगेशकर, हरिओम शरण, जगजीत सिंह और साथियों की। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। कार्यक्रम चिंतन के अंतर्गत आइए आपको सुनवाते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद के विचार।
1: खुदा पर विश्वास हर धर्म की बुनियादी कल्पना है, हर धर्म की यही शिक्षा है और मनुष्य की प्रकृति में ये बात मौजूद है। ईश्वर के अस्तित्व के विषय में मतभेद के बावजूद किसी को संदेह नहीं। कर्म से भटकाव की आखिरी सीमा दुराचार है और विश्वास मार्ग से भटकना ही नास्तिकता है। इसलिए दुराचार और नास्तिकता का कोई प्रकार ऐसा नहीं था जिससे अपना जीवन खाली रहा हो, और दुराचार स्वयं भी पूर्ण रूप से नास्तिकता है। दुनिया किसी के लिए कभी नहीं बदल सकती, लेकिन अगर तुम स्वयं बदल जाओ तो उसको भी बिल्कुल बदला हुआ पाओगे। तुम्हारी दुनिया तुम्हारे लिए युवावस्था में तो ऐसी न थी जैसी अब बुढ़ापे में नजर आ रही है। मिलन की शाम में यही रोज वाली दुनिया कितनी रोमांचकारी लगती थी, अब विरह की सुबह में वो बात कहाँ। विधाता की एक अनजानी शक्ति कब से अपनी ओर खींच रही थी, परंतु भुलावे की दुर्बलता ने दामन थाम रखा था। सत्य की ज्योति कब से आवरण उठा चुकी थी, परंतु अपनी ही अनुचित दृष्टि का पर्दा रुकावट बना हुआ था। कृपा करने के लिए अदृश्य स्वयं पुकार रहा था, परंतु मन वासनाओं के झमेलों में खोया हुआ था। इश्क की असफलताओं ने अंतिम चोट की तो अनायास ही आंखें खुल गईं। देखा तो एक दूसरे ही संसार का आकर्षण सामने था। न वो आसमान था, न वो जमीन, न वो संसार था, न वो वासना। जिस हाथ ने यहाँ तक पथ प्रदर्शन किया था स्वयं उसको भी ढूंढा तो पता न था। मानो वो एक दीपक था कि जब तक रात के अंधियारे में चलते रहे वो पथ प्रदर्शक बना रहा। जब भोर हो गई तो आवश्यकता न थी, बुझा दिया गया। आँखों का तो ये हाल था, कान लगाए तो अंदर और बाहर हर ओर एक ही आवाज उठ रही थी। वही दुनिया जिसमें अपने आप को भूलकर अपने हर जलवे से आंखों को, अपने हर नगमे से कानों को मस्ती के निरंतर निमंत्रण दिए, अब उसका कोना कोना चप्पा चप्पा होशियारी और दूरदृष्टि का आगार था। कण कण को बोलते हुए महसूस किया, पत्ते पत्ते पर कोई संदेश अंकित देखा। फूलों ने जबान खोली, पत्थरों ने उठ उठ कर संकेत किए, धूल ने उड़ उड़ कर मोती बरसाए। आसमानों को बार बार उतरना पड़ा कि सवालों का जवाब दें। धरती को कई बार उछलना पड़ा कि आकाश के तारे तोड़ लाए। फरिश्तों ने बाजू थामे कि कहीं पाँव न लड़खड़ाए। सूरज चिराग लेकर आया कि कहीं ठोकर न लग जाए। सब ने आवरण उतार फेंके, सारे पर्दे छलनी हो गए। सबकी आंखों में कहानियां थीं, रात जैसे खो गई। अंधकार की खोज की मगर न मिला, निद्रा का पता पूछा तो किसी ने न बताया। सोया उत्साह जाग उठा और दिल फिर नई शक्ति और प्रेरणा के साथ वापस आ गया। इस जीते जागते संसार में जो कुछ है उनमें से कोई भी न था जिसकी भ्रिकुटी पर तेवर या नैनों में चंचलता हो। सबकी जवानी बोलती हुई, सबके संकेत स्पष्ट, सबकी रेखाएं उभरी हुई थीं। न कोई होठ बंद रहा, न कोई प्रकाश छिपा रहा। आँखों और कानों के द्वारा जो कुछ प्राप्त हुआ दिल की व्यापकता ने सबको समेट लिया।
0: कार्यक्रम चिंतन के तहत अभी आप सुन रहे थे मौलाना अबुल कलाम आजाद के विचार। मीडियम

अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर में 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस का कार्यक्रम। खेती की बातें में 6:45 पर सुनी जा सकेगी पशुओं में अफरा रोग के कारण और निवारण के विषय में डॉक्टर ब्रजभूषण सिंह की वार्ता।

प्रातः 7:10 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में डॉक्टर रूपक सक्सेना दांत खाज खुजली के कारण और उपचार के विषय में जानकारी देंगे। देवेंद्र कुमार के गाय ब्रज लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे लोक संगीत के कार्यक्रम में प्रातः 9:45 पर।

प्रातः 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनेगा राग पटदीप में संतूर वादन, कलाकार होंगे पंडित भजन सोभोरी। 11 बजे आज के कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत हम बात करेंगे फिल्म अभिनेता राजेंद्र कुमार के बारे में और सुनवाएंगे उनकी ही फिल्मों के कुछ गीत।

समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में 11:30 पर फिल्मी गीतों के साथ। चर्चा का विषय होगा बढ़ती आबादी घटते संसाधन। 12:00 कार्यक्रम लोक मंजरी में हम आपको सुनवाएंगे ओम प्रकाश अमर की गाई लावनी। श्रोताओं, दिन में 1:15 पर कार्यक्रम पनघट के अंतर्गत आप सुनेंगे रीता भट्टाचार्य की वार्ता। विषय होगा शारीरिक अक्षमता कोई अभिशाप नहीं। इसी कार्यक्रम में लोकगीतों के साथ चर्चा का विषय होगा बेटी की शिक्षा परिवार की सबसे बड़ी पूंजी। कमाल खान की गाई गजलें हम आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम में 1:45 पर। हमारी सांध्यकालीन सभा में फिल्मी भजनों पर आधारित कार्यक्रम सुर संध्या प्रस्तुत किया जाएगा 5:10 पर। हमारे युवा साथियों के कार्यक्रम युवाणी में 5:30 पर आप सुनेंगे नेहा गोयल की वार्ता, जिसका विषय होगा जनसंख्या वृद्धि विकास में बाधक। इस कार्यक्रम के अन्य आकर्षण होंगे फिल्म संगीत। हम चर्चा कर बताएंगे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के विषय में।

श्रोताओं 6 बजे ग्रामीण कार्यक्रम में सुनी जा सकेगी खेती में लागत खर्च कम करने के उपाय के विषय में डॉक्टर धर्मवीर सिंह की वार्ता। लोकगीतों के साथ हम चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में, साथ ही बताया जाएगा मंडी भाव और मौसम की जानकारी। 6:30 पर मसूर मंडल कार्यक्रम में आप सुनेंगे कौस्तुभ सिंह राणा की वार्ता, जिसका विषय होगा मोबाइल से लेन देन में सावधानी। इसी कार्यक्रम में फिल्मी गीतों के साथ चर्चा का विषय होगा कार्यस्थल पर सुरक्षा और श्रमिक जागरूकता।

शाम 7:10 पर विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा मिथिलेश कुमार शर्मा की वार्ता, जिसका विषय होगा मानवीय विस्तार में संतुलन तलाशती प्रकृति। और 7:31 पर आप सुनेंगे विश्व जनसंख्या दिवस पर केंद्रित काव्य गोष्ठी संख्या संवाद। श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। आपकी सेवा में हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान।

श्रीराम की बाल लीलाओं से आनंदित अयोध्या निवासी उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। उन्हीं दिनों महामुनि विश्वामित्र अपने आश्रम में जप तप यज्ञ और योग करते थे, किंतु मारिच तथा सुबाहु जैसे राक्षस उनकी साधना में विघ्न डालते। मुनिवर के मन में ऐसा विचार आया कि इन पापी राक्षसों का संहार केवल भगवान के हाथों ही हो सकता है। अतः एक दिन वह राजा दशरथ की राजसभा में पहुंचे।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार थे राजेंद्र कचरू और चतुर सेन। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। कार्यक्रम खेती की बातें में आइए अब आपको सुनवाते हैं पशुओं में अफरा रोग के कारण और निवारण के विषय में डॉक्टर ब्रजभूषण सिंह की वार्ता।
1: अफारा रोग अक्सर गोमंथ वाले पशुओं में पाया जाता है। गोमंथ वाले पशु जुगाली करते हैं, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि। गोमंथ आमाशय का पहला भाग है, जिसमें पशु आहार को इकट्ठा कर लेता है, फिर जुगाली के माध्यम से दांतों से चबाकर आहार के मोटे मोटे कणों को छोटा करके वापस गोमंथ में करता है। अफारा को अंग्रेजी में टिम्पेनी तथा ब्लोट कहते हैं। इस बीमारी का प्रमुख कारण है रोमंथ में अधिकाधिक मात्रा में हवा भर जाना, जो पशु के लिए घातक होती है। हवा बनने के कारण हरा चारा की बहुत सी मात्रा खा लेता है। हरा चारा जिसमें पत्तियां अधिक हो, उसमें पानी की मात्रा का प्रतिशत 80 से 90 तक होता है। इस प्रकार चारे को कोमल ग्वार, लोबिया, दूब, घास, रिजका आज बरसात के मौसम में तथा बरसीम जई या जाड़ों के मौसम में है। जब इन चारों में पानी की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है, तो रोमंथ में भाप बनकर अधिक मात्रा में बनकर उसे गुब्बारे की भांति बना देता है। अतः ऐसी दशा में हरे चारे के साथ गेहूं, चना, जौ आदि का भूसा अथवा सूखी ज्वार की कड़वी मिलाकर खिलाना चाहिए। सड़े गले पदार्थ जब रोमंथ वाले पशुओं को खिलाते हैं, तो उससे भी अफारा होता है। यदि पशु को बाईं कोख में थपथपाएं, तो ऐसा लगेगा कि हम गुब्बारे को थपथपा रहे हैं। यह अफारा रोग है। यदि थपथपाने से ऐसा लगे जैसे गुथा हुआ आटा भरा हो, तो हम पाएंगे दूसरी बीमारी, जिसका नाम है इंफेक्शन। अफारा पशुओं का साधारण रोग है, जो गलत आहार के कारण होता है। यह छूत की बीमारी नहीं है, जैसे घुरका, पौका, जहरी बुखार आदि। अतः हमको सावधानी पशु के खाने में बरतनी चाहिए कि उसे संतुलित आहार मिले, जिसमें ठोस पानी की अनुपात सही हो। सड़ा गला आहार बिल्कुल नहीं दें। यदि पशु बोलता नहीं है, तो हमें उसकी दयनीय दशा पर कठोरता से मनमानी नहीं करनी चाहिए। हींग अधिकतर सभी पशुकालयों को घरे में मसालों के तौर पर पाई जाती है। अतः अपारे के इलाज में हींग की 8 ग्राम मात्रा, सौंफ की 8 ग्राम और काला नमक 8 ग्राम मिलाकर 4 घंटे के अंतर पर इतनी मात्रा में खिलाएं। पशु धीरे धीरे कुछ समय में ठीक हो जाएगा। अगर अफारा हल्का है, तो पशु को 8 ग्राम सौंफ, 8 ग्राम 6 घंटे के अंतर पर दी जा सकती है। तारपीन का तेल भी अफारे के इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तरुण गाय भैंस को तारपीन का तेल 60 मिलीलीटर, अमोनिया का घोल 60 मिलीलीटर और अलसी का तेल आधा लीटर खूब मिलाकर नाल के माध्यम से मुंह को ऊपर उठाकर पिलाएं। ध्यान रहे, यह श्वास नली में नहीं जाना चाहिए। अतः फेफड़ों में पानी भरने से जानवर मर सकता है। इस इलाज में पशु को जल्दी आराम मिलता है। यदि अंग्रेजी दवाइयों की दुकान जहां पशु की दवाइयां उपलब्ध हो, तो ऐसी दशा में एल्वोनॉक्स नामक दवाई उपयोग की जा सकती है। यह दवाई आसानी से दी जा सकती है और यह बहुत अधिक कारगर है। यदि आपको लगता है कि पशु अधिक

0: बेचैन है तथा अत्यधिक छटपटा रहा है और अफारे के कारण रोमांच बहुत फूलता जा रहा है कि पेट फटने की आशंका है अथवा लंग्स पर ज्यादा प्रभाव पड़ने से और हृदय पर ज्यादा प्रभाव पड़ने से पशु की मृत्यु हो सकती है, तो ऐसी दशा में वे टोकार कैनुला नाम का औजार पशु के लिए लगा सकते हैं। इसको लगाने के लिए पशु चिकित्सक काबिल है और उसे बुलाना चाहिए। टोकार एक छड़नुमा औजार है जिसकी एक कोने को नुकीला कर दिया जाता है और कैनुला एक खोखला पाइप है जिसमें टोकार फंसा होता है। लगाते समय उसके पशु की बाई कोख में घोंप दिया जाता है, टोकार निकाल लेते हैं, कैनुला फंसा रहता है। इस तरीके से रोमांच की हवा निकल जाती है, पशु बच जाता है। पशुओं को अक्सर नाले का पानी पिला देते हैं और नाले के पानी में बहुत से पारजैविकी बैक्टीरिया और विषाणु होते हैं, वायरस। इस प्रकार उनसे अनेक बीमारी हो जाती हैं और यह अफारा रोग भी उत्पन्न कर सकता है। और उसमें सीवेलचाई एक प्रमुख कीड़ा है और पारजैविकी में फैसियोला हेपेटिका आदि अनेक पारजैविकी होते हैं, टेप वर्म्स भी उनमें से एक है। इस प्रकार के पारजैविकी भी पशु के लिए खतरनाक होते हैं। विषाणु इससे भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, मगर उनको अवस्था जल्दी से खत्म हो जाती है। अतः पानी को हमें साफ सुथरा पिलाना चाहिए, जिसे अंग्रेजी में होलसम कहते हैं, कि पानी जो है गंदा नहीं होना चाहिए। जैसे किसी नाली का और गंदे ड्रेनेज का पानी पिला दें, वो पशु के लिए खतरनाक है। ऐसा है कि पानी को अगर शहर में रह रहे हैं तो क्लोरिनेटेड वाटर पिलाएं, और अगर किसी गांव में रह रहे हैं तो गंदे पोखर में न पिलाएं जहां स्टैग्नेंट वाटर है, वो पशु के लिए नुकसानदायक होता है। बहता हुआ पानी पशु के लिए बहुत उपकारी है, इसीलिए बहते हुए पानी को पिलाना चाहिए। और अगर इस पानी से अफारा रोग या कोई बीमारी होती है तो उसके लिए एंटीबायोटिक देने बहुत जरूरी है। एंटीबायोटिक में कई ग्रुप हैं, जिनमें एक तो बैक्टीरियोसाइट हो जाता है जो कीड़े मारता है, दूसरा इन कीड़ों को बाहर निकालता है, स्टैटिक कर देता है। तो ऐसे इलाज में खुद नहीं करना चाहिए, पशु की सलाह लेनी चाहिए कि उसे क्योंकि बैक्टीसीडल जो है बीमारी को अगर मान लो उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो जब कीड़ा मरता है तो उसमें से ऐसे पदार्थ निकलते हैं जो पशु के लिए घातक हो सकते हैं, इसलिए उनकी डोज जो खुराक है वो नियमित करनी चाहिए, क्योंकि ये काम है पशु चिकित्सक का है, किसी ऐसे अतार वगैरह से या किसी ऐसे अनाड़ी से नहीं इलाज कराना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। पशु चिकित्सक जो है आदमी की दवाई वो भी इस्तेमाल कर सकता है, अगर पशु की दवाई नहीं उपलब्ध है तो आदमियों की दवाइयों को उस डोज में कन्वर्ट करके भी इलाज कर सकता है।
1: कार्यक्रम खेती की बातें में अभी आपने सुनी पशुओं में अफारा रोग के कारण और निवारण के विषय में डॉक्टर ब्रजभूषण सिंह की वार्ता।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1005

130 किलो हर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, अब कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे संस्कृत में समाचार, उसके बाद सुनेगा हिंदी में समाचार, और उसके बाद सुने जा सकेंगी अंग्रेजी में समाचार।

0: लिपुलेख मार्गेण चीन देशे प्रविष्टवान्। सर्वान् आवश्यकान् प्रवासान् सीमा औपचारिकतां च समाप्य आईटीबीपी इति भारत तिब्बत सीमा आरक्षस्य अधिकारिणः सीमायां स्थितेभ्यः चीनदेशस्य अधिकारिभ्यः यात्रिणां समूहं समर्पितवन्तः। फीफा विश्वकप क्रीडायां स्पेन देशेन गतरात्रौ संयुक्तराज्यामेरिका देशस्य इंगलवुड नगरस्य लॉस एंजलिस क्रीडांगणे द्वितीयायां प्रागुपांत्य चक्रे बेल्जियम देशं द्वे एकम अंकहि पराजित्य उपांत्य चक्रे स्वस्थानं सुनिश्चितम अकरोत् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ आज ऑकलैंड में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। वार्ता के बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े पांच महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
2: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। ये मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
1: प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड सरकार द्वारा मुक्त व्यापार समझौते की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे तथा उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से मुलाकात करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी जाएंगे। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना भारत की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। भाजपा ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर 30 जुलाई को मतदान होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई

0: rupees for Kavach deployment on 680 route kilometers of Northern Railway to enhance safety and operational efficiency. The project aimed at expanding the indigenous safety system across high density and strategically important routes. The Railway Ministry said the provision of Kavach version 4.0 will be implemented on the Rewari, Delhi and Shakur Basti Bhatinda sections of Delhi Division. In the FIFA World Cup, Spain has booked its place in the semi-finals, defeating Belgium 2-1 in the second quarter-final at Los Angeles Stadium in Inglewood, United States last night. And in Wimbledon tennis, Czechia's Karolina Muchová will face compatriot Linda Noskova in the women's singles final in London today. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं। दांत खाज खुजली के कारण और उपचार के विषय में डॉक्टर रूपक सक्सेना की वार्ता।
2: आज मैं आपके सामने दांत खाज खुजली के बचाव एवं उपचार के विषय में अपने विचार लिखने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते होंगे, दांत या सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शंस गर्म एवं उमस वाले मौसम में ज़्यादा पनपते हैं। जब हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता किसी वजह से कमज़ोर होती है या हमारी हाइजीन पुअर होती है, जैसे कि नित्य स्नान न करना या अपने खान पान में पौष्टिक आहार को सम्मिलित न करना, तब यह इन्फेक्शंस हमें जल्दी पकड़ते हैं। यह सिर से लेकर पैर तक कहीं भी पनप सकते हैं। प्राय सिर में फंगल इन्फेक्शंस 14 साल से कम आयु के बच्चों में अक्सर देखे जाते हैं। इसमें जहाँ पे ये फंगल इन्फेक्शंस होते हैं उस जगह बाल तक गायब होने लगते हैं। ऐसे ही जांघों का फंगल इन्फेक्शंस, जिसे हम धोबीज इच कहते हैं, ये मर्दों में ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसे ही पैर का फंगल इन्फेक्शन उन लोगों में ज़्यादा मिलता है जो ज़्यादा देर तक जूते पहने होते हैं या जिनमें पैरों के उंगलियों के बीच में विशेष तौर से पसीना बहुत देर तक ठहरता है। इसलिए इसे हम एथलीट्स फुट भी कहते हैं, क्योंकि ये हमें खिलाड़ियों में अक्सर ये देखने को मिलता है। अक्सर दांत में खुजली एक प्रमुख लक्षण होता है और ये बढ़ते समय एक गोलाकार का रूप ले लेता है। इसीलिए इस इन्फेक्शन को आम भाषा में हम रिंग वॉर्म इन्फेक्शन भी कहते हैं। जय यह शरीर के बहुत सारे हिस्से को प्रभावित करता हो या बहुत तेज़ी से जब फैलता है, तो ये डायबिटीज़ या मधुमेह एवं एचआईवी इन्फेक्शन का संकेत देता है। अतः दांत से बचने के लिए हमें अपने खान पान के साथ साथ स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। इन सब बातों से हमारी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जो है वह बढ़ती है। बदन पर गीला वस्त्र न धारण करना व बंद जगहों जैसे कि कांख, रागें व पैर की उंगलियों के बीच पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपका संभव हो तो अपने ऑफिस में कुछ देर के लिए अगर आप जूते मोज़े उतार के बैठ जाएं तो ये अच्छा होगा, या मोज़े जो हैं कॉटन सॉक्स पहने और हमेशा सूखे मोज़े पहने, कभी नमी ना हो। आजकल इन दांत के इलाज या सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन का इलाज अमूमन 6 से 8 हफ्तों में बड़े आराम से संभव है। पर हाँ, मैं यहाँ आपको एक बात बताना चाहूँगा कि कभी भी केमिस्ट के द्वारा या झोला छाप डॉक्टरों के द्वारा इलाज ना लें, वरना ये और विकृत हो जाता है। हमेशा एक विशेषज्ञ से ही सलाह लें। ऐसे ही सूखी खाज या स्केबीज भी पुअर हाइजीनिक कंडीशंस, जहाँ पे ओवर क्राउडिंग हो, एक बंद कमरे में या छोटे सी जगह में कई सारे रोग रहते हैं, ऐसे कंडीशंस में ये स्केबीज बहुत कॉमन है। इसका भी मुख्य लक्षण अत्यंत खुजली होना, विशेष तौर पर सोते समय। ये चूंकि एक छूत की बीमारी है, अतः ये परिवार के और सदस्यों को भी प्रभावित करती है। इसका भी इलाज एक विशेषज्ञ द्वारा सुचारू रूप से संभव है। तो मैं अंत में एक बार ये बात को फिर दोहराना चाहूँगा कि कभी भी किसी भी अवस्था में जब भी दांत खाज या खुजली हो तो केमिस्ट या झोला छाप डॉक्टरों द्वारा कभी भी इलाज ना लें, क्योंकि जब आप इनके द्वारा जब कोई भी दवा लेते हैं तो इसमें अक्सर

0: स्टीरॉयड नामक औषधि होती है जो आपके मूल जो रूप है उस बीमारी के स्वरूप को भी बदल देती है। इससे बात इसको ठीक करने में और परेशानी होती है, आपका खर्चा भी बढ़ता है, समय भी बढ़ता है और कभी कभी विशेषज्ञ को भी इसको ठीक करने के लिए काफ़ी जूझना पड़ता है। तो इसलिए हमेशा जब भी ऐसी कंडीशन हो, जब भी आपको दाद, खाज या खुजली आपको परेशान करे, तो एक विशेषज्ञ के द्वारा ही इसका उपचार के लिए प्रयास करें।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आपने सुनी दांत, खाज, खुजली के कारण और उपचार के विषय में डॉक्टर रूपक सक्सेना की वार्ता। आपकी सेवा में हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं और अब लीजिए सुनिए सबेश्वर में ये देशगान।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे संवेश्वर में देश गान। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है।
1: मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
2: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
2: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
2: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या और बस्ती में 936 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रदेश में हो रहा विकास और विरासत का अद्भुत समन्वय। मुख्यमंत्री आज कुशीनगर और गोरखपुर में 1283 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। अयोध्या के श्रीराम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय में सोमवार को होगी सुनवाई। और भारी बारिश से कई जिलों में बढ़ने लगा नदियों का जलस्तर। बारिश से हो रही जन और पशु हानि पर मुख्यमंत्री ने 24 घंटे में पीड़ितों को मुआवजा देने के दिए निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या के सोहावल में 432 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 217 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने यहां पूर्व मंत्री मुन्ना सिंह चौहान की प्रतिमा का अनावरण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में अब विकास और विरासत का अद्भुत समन्वय हो रहा है।
1: अयोध्या में भक्ति पथ हो, राम पथ हो, जन्मभूमि पथ हो, ये सभी अयोध्या की पहचान बन रहे हैं। जो सिंगल लेन था, आज वो फोर लेन और सिक्स लेन की सड़कें हैं। चारों ओर से एयर कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी आज अयोध्या को नई पहचान दिला रहा है।
0: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने भदरसा नगर पंचायत का नाम भरतकुंड और ग्राम पंचायत खिरौनी सुचित्तागंज का नाम मां ज्वाला देवी के नाम पर करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कल बस्ती में 504 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने हरैया में 27 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय के लिए भूमि पूजन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्ती में मखौड़ा धाम, भदेश्वरनाथ धाम और तपसी धाम में चल रहे विकास कार्यों के साथ साथ अब कर्ण मंदिर के सौंदर्यीकरण का काम भी आगे बढ़ाया जाएगा।
1: ये जो विकास कार्य हो रहा है, मखौड़ा धाम का हो, भदेश्वरनाथ धाम का हो, तपसी धाम का हो, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आस्था का सम्मान करते हुए उसके लिए भव्य अवस्थापना सुविधाओं का विकास भी करती है और इसीलिए तो 84 कोसी परिक्रमा का मार्ग भव्य वन रूप से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भी और अयोध्या धाम के रिंग रोड के रूप में भी वह काम करेगा, इस रूप में उसका विकास किया जा रहा है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कुशीनगर और गोरखपुर जिले को कुल मिलाकर 1283 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। वो कुशीनगर में 525 करोड़ रुपए की लागत वाली 464 और गोरखपुर में करीब 758 करोड़ रुपए की 24 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन करने के बाद कुशीनगर जिले का दौरा करेंगे। पटेकू अटार में आयोजित विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह में तीन विधानसभा क्षेत्रों रामकोला, हाटा तथा कुशीनगर के लिए सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई से जुड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर जनसभा को संबोधित करेंगे। कुशीनगर का दौरा करने के पश्चात मुख्यमंत्री आज दोपहर बाद गोरखपुर के पिपराइच विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भटट बांस स्थान में फोर लेन सड़क सहित पांच सड़कों का लोकार्पण और सड़क निर्माण एवं पर्यटन विकास से जुड़े 19 विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री जिन सड़कों का लोकार्पण करेंगे उनमें सबसे महत्वपूर्ण भटट बांस स्थान फोर लेन मार्ग है। 11.6 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर ही प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय भी स्थापित है। समाचार कक्ष से रितेश।
0: पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार कल पौधरोपण महायज्ञ 2026 का आयोजन करेगी। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेस वे के समीप पौधा लगाकर करेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य झांसी और ब्रजेश पाठक लखनऊ में पौधरोपण करेंगे। एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार ने 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में कल हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर का 8वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर विद्यार्थियों को 1071 उपाधियां और 47 पदक प्रदान किए गए। कार्यक्रम में

0: राज्यपाल ने 300 आंगनबाड़ी केंद्रों को आंगनबाड़ी किट दिए और 600 बालिकाओं का एचपीवी टीकाकरण भी कराया। राज्यपाल ने कहा कि छात्राएं तकनीकी क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करके देश का गौरव बढ़ाएं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या के श्री राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इन याचिकाओं की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ के सामने प्रस्तावित है। इन याचिकाओं में घटना की सीबीआई जांच और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वित्तीय लेनदेन का ऑडिट कैग से कराने का अनुरोध किया गया है। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दान की राशि की गिनती के काम में लगे 20 से अधिक कर्मचारियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। इन कर्मचारियों के इस्तीफे को चढ़ावे में अनियमितता का मामला सामने आने के बाद व्यवस्था में किए गए बदलावों से जोड़कर देखा जा रहा है। इस बीच शेष बचे कर्मचारियों की ड्यूटी व्यवस्था और छुट्टियों में बदलाव किया गया है। वहीं चढ़ावे की गिनती को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त की जा रही है। अब इस काम के लिए अलग से विशेष कर्मचारी रखे जाएंगे। संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत प्रदेश भर में आज से 31 जुलाई तक दस्तक अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर लोगों को मौसमी बीमारियों सहित अन्य बीमारियों के लक्षण और बचाव के बारे में जागरूक करेंगी। फतेहपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी उदय भान सिंह ने बताया कि इस अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विभिन्न विभागों का सहयोग लिया जाएगा।
1: इसमें करीब 7-8 विभाग हमारे जुड़े हुए हैं और 7-8 विभाग का प्लान है। इस तरीके से बनाया गया है कि एक ही स्थान पे उसी दिन सारे लोगों का कार्यक्रम, तो उसमें ये रहता है कि कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं है कि जो छूट जाए, जिससे कि वहाँ की सारी व्यवस्थाएं एक साथ ठीक हो सके। कार्यक्रम में जितना मलेरिया वर्कर है वो लगा है, हमारे यहाँ से HS लगे हुए हैं और नोडल ऑफिसर्स भी बनाए गए हैं और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी और उनके अधीनस्थ जितने चिकित्सक हैं वो सभी लोग इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
0: प्रदेश के विभिन्न जनपदों में भारी बारिश से हो रही जनहानि और पशुहानि की घटनाओं का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से नुकसान का आकलन करके 24 घंटे में मुआवजा देने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को क्षेत्र में जाकर प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मानसूनी बारिश के चलते प्रदेश के कई जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य में लगातार हो रही बारिश के चलते लखीमपुर खीरी के पलियाकला में शारदा नदी खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। वहीं कुशीनगर में गंडक नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। उधर बिजनौर बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण अमरोहा में खादर क्षेत्र के गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। क्षेत्र की कई बीघा फसलें जलमग्न हो गई हैं। अमरोहा के जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ ने बताया कि गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इसको देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क है और सुरक्षा के सभी उपाय कर लिए गए हैं। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: भारी बारिश के चलते बदायूं और सीतापुर में आज कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या और बस्ती में 936 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रदेश में हो रहा विकास और विरासत का अद्भुत समन्वय। मुख्यमंत्री आज कुशीनगर और गोरखपुर में 1283 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। अयोध्या के श्री राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय में सोमवार को होगी सुनवाई। और भारी बारिश से कई जिलों में बढ़ने लगा नदियों का जलस्तर। बारिश से हो रही जन और पशुहानि पर मुख्यमंत्री ने 24 घंटे में पीड़ितों को मुआवजा देने के दिए निर्देश। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: Thank you. तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ।

0: यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जाना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। प्रस्तुत है दैनिक सूचनाओं पर आधारित कार्यक्रम आसपास। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो सखी हरप्रीत कौर का प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले कुछ सूचनाएं परीक्षार्थियों के लिए। श्रोताओं, क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय और राजकीय आईटीआई की ओर से 14 जुलाई को सुबह 10 बजे से राजकीय आईटीआई परिसर फतेहाबाद रोड में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इसमें 1500 से अधिक रिक्त पदों के लिए चयन किया जाएगा। इस रोजगार मेले में कई प्रतिष्ठित कंपनियां शामिल होंगी। मेले में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, परास्नातक, आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक सहित अन्य शैक्षिक योग्यताओं वाले अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकते हैं। इनकी आयु सीमा की अगर बात करें तो 18 से 35 वर्ष निर्धारित की गई है। इच्छुक अभ्यर्थियों को रोजगार मेले में प्रतिभाग करने के लिए रोजगार संगम पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। अभ्यर्थी rozgarsangam.up.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण करके रोजगार मेले में शामिल हो सकते हैं। श्रोताओं, रोजगार मेले में शामिल होने आ रहे अभ्यर्थी अपने साथ सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, बायोडेटा एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ समय से उपस्थित हो। प्रतिभाग करने की प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क रहेगी।

मेरी नजर से आगरा में शहर की नई पहचान देखने को मिलेगी। जी हाँ श्रोताओं, जिला प्रशासन की ओर से इस थीम से ऑनलाइन फोटोग्राफी प्रतियोगिता की शुरुआत की जा रही है। 20 जुलाई तक आवेदन भी मांगे गए हैं। इसका उद्देश्य है कि शहर की संस्कृति, पर्यटन स्थल को चित्रों में ढालकर लोगों तक पहुंचाया जाए। इच्छुक आवेदक को अपने द्वारा ही खींचे गए फोटो भेजने होंगे। चयनित प्रतिभागियों को डीएम की ओर से सर्टिफिकेट दिया जाएगा और तस्वीरें उनके नाम से आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएंगी। प्रतियोगिता पूरी तरह से निःशुल्क है। इसमें नगर या ग्रामीण क्षेत्र की सुंदरता, पर्व और त्योहार, हस्तशिल्प, जन जीवन, ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के खींचे गए चित्र अधिकतम 30 शब्दों के कैप्शन के साथ 20 जुलाई तक upin4agra01@gmail.com पर भेजते हैं। चित्रों के साथ प्रतिभागी का नाम, पता और मोबाइल नंबर देना भी जरूरी है। केवल प्रतिभागी की ओर से स्वयं खींचे गए मौलिक छायाचित्र ही मान्य होंगे। तो हम आपको पुनः बता दें, इसके लिए आप 20 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं।

परीक्षार्थियों के लिए कुछ अन्य सूचनाएं हैं। डीओ में 2026-27 से स्नातक, यूजीसी लेकर स्नातकोत्तर, पीजी, बीटेक और 5 वर्षीय लॉ पाठ्यक्रमों तक दाखिले की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। विद्यार्थियों के पास कॉलेज और कोर्स प्राथमिकता भरने के लिए आज रात 11:59 तक का समय है। स्नातकोत्तर 2 वर्षीय पाठ्यक्रमों में तीसरी आवंटन सूची जारी कर दी गई है। इसमें प्रदर्शन आधारित पाठ्यक्रमों जैसे MFA, BPED, MPED और संगीत पाठ्यक्रमों की सीटें भी शामिल हैं। तो हम आपको पुनः बता दें, चयनित अभ्यर्थियों को आज रात 11:59 तक सीट स्वीकार करनी होगी।

श्रोताओ, आगरा कॉलेज में परास्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। 13 जुलाई से कॉलेज परिसर में मेरिट से परास्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए काउंसलिंग शुरू होगी। वहीं स्नातक और परास्नातक के कॉलेजों के छात्र आगे के सेमेस्टर में ऑनलाइन पंजीकरण कराने के बाद प्रवेश ले सकते हैं और ये प्रक्रिया 30 जुलाई तक चलेगी। एमएससी प्रथम सेमेस्टर रसायन विज्ञान के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 13 जुलाई को सुबह 11 बजे से रसायन विज्ञान विभाग में होगी। इसी तरह एमएससी प्रथम सेमेस्टर वनस्पति विज्ञान में प्रवेश के लिए काउंसलिंग 14 जुलाई को सुबह 11 बजे से वनस्पति विज्ञान विभाग में होगी और एमए प्रथम सेमेस्टर चित्रकला और पेंटिंग के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग भी इसी दिन 14 जुलाई को होगी। एमएससी प्रथम सेमेस्टर भौतिक विज्ञान, सांख्यिकी और प्राणी विज्ञान और एमए प्रथम सेमेस्टर मनोविज्ञान और एमकॉम प्रथम सेमेस्टर के सभी अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 15 जुलाई को सुबह 11 बजे से होगी। इसी तरह एमए प्रथम सेमेस्टर राजनीति विज्ञान के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग राजनीति विज्ञान विभाग में 16 जुलाई को होगी। एमएससी प्रथम सेमेस्टर गणित, एमए प्रथम सेमेस्टर इतिहास, अर्थशास्त्र और संस्कृत विषयों के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 17 जुलाई को और एमए प्रथम सेमेस्टर अंग्रेजी, हिंदी और दर्शन शास्त्र विषयों के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 21 जुलाई को सुबह 11 बजे से होगी। श्रोता, अभ्यर्थी अपने सभी मूल दस्तावेजों के साथ ही विश्वविद्यालय के समर्थ पोर्टल पर कराए गए पंजीकरण की रसीद और कॉलेज में प्रवेश के लिए किए गए आवेदन की रसीद साथ लेकर आएं।

संयुक्त सीट आवंटन प्राधिकरण यानी कि जौसा काउंसलिंग का चौथा राउंड शुक्रवार को जारी हो गया। अब इंजीनियरिंग के लिए अच्छे कॉलेज में दाखिले का सपना देख रहे छात्रों की नजर सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड के स्पेशल राउंड पर टिकी हुई है। जौसा खत्म होने के बाद ही खाली रह गई सीटों को भरने के लिए केंद्र सरकार की ओर से CSAB विशेष राउंड चला रही है। ये जिले के छात्रों के लिए इंजीनियरिंग में अच्छी सीट पाने का आखिरी मौका होगा। CSAB काउंसलिंग के बाद खाली सीटों को भरता है, जिसमें जौसा के 5 राउंड के बाद भी अगर कोई खाली सीट रह जाती है तो CSAB में दोबारा रजिस्ट्रेशन करके छात्रों को मौका मिलता है। इसमें नए छात्रों के साथ साथ जो छात्र पहले से जौसा में शामिल थे उन्हें भी फायदा उठाने का मौका मिलता है। जिन छात्रों को जौसा में सीट नहीं मिली, जिन्होंने जौसा में रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया था, जिनकी सीट कैंसिल हो गई है या जो अपनी पुरानी सीट छोड़कर बेहतर विकल्प चाहते हैं, उनको इसमें शामिल होने का मौका मिलेगा। CSAB की रजिस्ट्रेशन 28 जुलाई के आसपास शुरू होने की उम्मीद है और दूसरा राउंड मध्य अगस्त में होगा।

सगाओ आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया 16 जुलाई को ओडिशा के जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलेगी, तो उसी समय शहर में श्रद्धालुओं का रेला भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचते हुए गदगद होगा। अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ यानी कि इस्कॉन द्वारा हर वर्ष होने वाले रथ यात्रा का आयोजन महालक्ष्मी मंदिर बल्केश्वर से शुरू होगा। यहां से शुरू हुई रथ यात्रा इस्कॉन मंदिर कमलानगर पहुंचेगी। रथ यात्रा मार्ग पर पुष्प बरसेंगे। भगवान जगन्नाथ के दर्शन और उनके रथ को खींचने के लिए श्रद्धालु आतुर हैं। पलक पावड़े बिछाकर उन पलों का इंतजार कर रहे हैं जब प्रभु जगन्नाथ बहन सुभद्रा और बलदाऊ के स्वरूपों का रथ उनकी आंखों के समक्ष होगा।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है और आप सुन रहे हैं दैनिक सूचनाओं पर आधारित कार्यक्रम आसपास। अब सुनिए कार्यक्रम की कुछ अन्य सूचनाएं। श्रोताओं, रामायण रिसर्च काउंसिल द्वारा संस्कृति, आध्यात्म, साहित्य शोध, कथा वाचन, संगीत और सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाली विभूतियों को रामायणी सम्मान से पुरस्कृत किया जाएगा। इसके लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है जो 23 जुलाई तक चलेगी। विशेष बात यह है कि ये आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर है जिसमें विभिन्न राज्यों से विद्वानों, कथावाचकों, शोधकर्ताओं, कलाकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का चयन किया जाएगा। विदेश में रहकर इस दिशा में कोई योगदान दे रहा है तो वो भी इसके लिए आवेदन कर सकता है।

श्रोताओं, जलकल विभाग बिजली घर चौराहे पर शिवाजी मार्केट के सामने पेयजल पाइपलाइन शिफ्ट करने का कार्य आज रात से शुरू करेगा। इसके कारण 12 और 13 जुलाई को जीवनी मंडी और सिकंदरा वाटरवर्क से जुड़े करीब 8 से 10 लाख लोगों को जलापूर्ति नहीं हो सकेगी। विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से पहले ही पर्याप्त पानी का भंडारण करने की अपील की है। इसके कारण रविवार और सोमवार को सुबह और शाम दोनों समय जलापूर्ति बंद रहेगी। छत्ता जोन के अंतर्गत शिवाजी मार्केट बिजलीघर चौराहे के पास नाले से होकर पेयजल पाइपलाइन गुजर रही है। इससे नाले में कचरा फंस जाता है और जलभराव की समस्या पैदा होती है। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए पाइपलाइन को बाईपास किया जाएगा और ये कार्य आज रात से शुरू

होगा। शदा इसके चलते काला महल, कोतवाली, दरीसी, कचहरी घाट, रावतपाड़ा, सुभाष बाजार, बेलनगंज, काजीपाड़ा, मंडूला, छत्ता, रकाबगंज, बालूगंज, छिपीटोला, नौलखा, ताजगंज, गोबर चौकी, फतेहाबाद रोड, ताजनगरी, बसई, चक्कीपाट, शाहगंज का अलबतिया रोड, सुभाष नगर, बालाजीपुरम, दयालबाग, सिकंदरा, आवास विकास कॉलोनी, जगदीशपुरा, किशोरपुरा, भीमनगर, बोदला, मारुति इस्टेट, अवधपुरी, पश्चिमपुरी, शास्त्रीपुरम, राजपुर चुंकी, शमसाबाद रोड और ट्रांस यमुना कॉलोनी, यहां पर पानी की दिक्कत हो सकती है। तो आपसे निवेदन है कि आप पर्याप्त मात्रा में पानी का भंडारण कर लें, और अगर आपको टैंकर की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए आप टोल फ्री नंबर नोट कर लें। नंबर है 1800 270 2722। ये टोल फ्री नंबर आप पुनः नोट कर लें, 1800 270 2722। इसके अलावा कंट्रोल रूम का नंबर है जिस पर कॉल करके आप सहायता प्राप्त कर सकती हैं। नंबर है 8192 095401। इस नंबर का मिलान आप पुनः कर लें, नंबर है 8192 095401। पुनः आपसे आग्रह है कि आप पर्याप्त मात्रा में पानी का भंडारण कर लें।

श्रोताओ, आइए आपको जानकारी दे दें कुछ खोए हुए व्यक्तियों के विषय में। सपना पुत्री राजू निवासी ग्राम नौगांव थाना चित्राहाट आगरा से दिनांक 8 मई 2026 से लापता है। सपना की उम्र 19 वर्ष, कद 5 फुट और रंग की हुआ है। गुमशुदगी के समय सपना ने पीले रंग का सूट और सलवार पहनी हुई थी। सपना के संबंध में आपको कोई भी सूचना मिलती है तो कृपया थाना चित्राहाट आगरा के पते पर सूचित करें।

एक अन्य सूचना के अनुसार सिमरन पुत्री राजू निवासी प्रकाशपुरम अंबेडकर पार्क के सामने टीडी बगिया आगरा से दिनांक 16 मई सन 2026 से लापता है। सिमरन की उम्र 19 वर्ष, कद 5 फुट 4 इंच है। गुमशुदगी के समय सिमरन ने काले रंग का सूट और सलवार पहनी हुई थी। सिमरन के संबंध में आपको कोई भी सूचना मिलती है तो कृपया थाना टीडी बगिया आगरा के पते पर सूचित करें। और एक अन्य सूचना के अनुसार आशा पत्नी शिशुपाल निवासी हिरोड़ा थाना सैया आगरा से दिनांक 6 मई सन 2026 से लापता है। आशा देवी की उम्र 40 वर्ष, चेहरा गोल और रंग सांवला है। गुमशुदगी के समय आशा देवी ने हरे रंग की साड़ी पहनी हुई थी। इनके संबंध में आपको कोई भी सूचना मिलती है तो कृपया थाना सैया आगरा के पते पर सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना समाप्त हुई।

और अब सुनिए कार्यक्रम की कुछ अन्य सूचनाएं। श्रोताओं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के तहत उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस उत्सव में निबंध, भाषण और काव्य लेखन प्रतियोगिता का आयोजन होगा। संबंध महाविद्यालयों और आवासीय परिसरों में पढ़ रहे छात्रों ने प्रतियोगिताओं में भागीदारी लेने के लिए आवेदन मांगा गया है। निबंध लेखन के लिए भारत विश्व की

चौथी अर्थव्यवस्था कैसे बने और भाषण के लिए विकसित भारत 2047 में उत्तर प्रदेश का योगदान जैसे समसामयिक विषय रखे गए हैं। हम आपको पुनः बता दें, निबंध लेखन के लिए जो विषय है वो है भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था कैसे बने, और भाषण के लिए जो विषय चुना गया है वो विषय है विकसित भारत 2047 में उत्तर प्रदेश का योगदान।

श्रुतो आज भीष्म साहनी की पुण्यतिथि है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी भीष्म साहनी आम लोगों की आवाज उठाने और हिंदी के महान लेखक प्रेमचंद की जनसमस्याओं को उठाने की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले साहित्यकार के तौर पर पहचाने जाते हैं। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। साहनी जी एक ऐसे साहित्यकार थे जो बात को केवल कह देना नहीं बल्कि बात की सच्चाई और गहराई को नाप लेना भी उतना ही उचित समझते थे। वे एक प्रसिद्ध हिंदी लेखक, नाटककार और कलाकार भी थे। श्रुतो भीष्म साहनी का जन्म 8 अगस्त 1915 को रावलपिंडी पाकिस्तान में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। विभाजन के बाद वो भारत आ गए। वो अपने पिता श्री हरबंस लाल साहनी और माता श्रीमती लक्ष्मी देवी की 7वीं संतान थे। भीष्म साहनी हिंदी फिल्मों के जाने माने अभिनेता बलराज साहनी के छोटे भाई थे। पिता के समाजसेवी व्यक्तित्व का इन पर काफी प्रभाव था। इस विरासत को उन्होंने आगे भी बढ़ाया। 1935 में लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से अंग्रेजी विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने डॉक्टर इंद्रनाथ मदन के निर्देशन में कॉन्सेप्ट ऑफ द हीरो इन द नॉवल शीर्षक के अंतर्गत अपना शोध कार्य संपन्न किया और भारत छोड़ो आंदोलन में भी शामिल हुए और इसके चलते कुछ समय तक उन्हें जेल में भी रहना पड़ा। भारत पाकिस्तान विभाजन के पहले अवैतनिक शिक्षक होने के साथ साथ वे बिजनेस भी करते थे। विभाजन के बाद उन्होंने भारत आकर समाचार पत्रों में लिखने का काम किया। बाद में भारतीय जननाट्य संघ यानी कि इप्टा से जा मिले। इसके पश्चात अंबाला और अमृतसर में भी अध्यापक रहने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में साहित्य के प्रोफेसर बने। उनकी पहली कहानी अबला इंटर कॉलेज की पत्रिका रावी में और दूसरी कहानी नीली आंखें अमृत राय के संपादन में हंस में छपी। बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहनी ने नाटकों के अलावा फिल्मों में भी काम किया। मोहन जोशी, हाजिर हों, कस्बा के अलावा मिस्टर एंड मिसेस अय्यर फिल्मों में भी उन्होंने अभिनय किया। बेहद सादगी पसंद रचनाकार और दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर साहनी को पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया और आज ही के दिन 11 जुलाई सन 2003 को इनका शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया। और इसी के साथ कार्यक्रम आसपास संपन्न करने की हरप्रीत कौर को इजाजत दीजिए। आपकी सेवा में हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओ, इस समय प्रातः के 8 बजने को है। अब कुछ ही पलों में आप हमारी दिल्ली केंद्र से सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी आज नौसेना में शामिल होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की, मजबूत तटीय सुरक्षा उपायों के निर्देश दिए। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में, आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा हमवतन लिंडा नोस्कोवा के साथ खेलेंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन एवं डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑकलैंड स्थित गवर्नमेंट हाउस में औपचारिक स्वागत किया गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ रिसीव किया। औपचारिक स्वागत के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान रक्षा, पशुपालन, डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ, जिससे भारत न्यूजीलैंड साझेदारी को नई गति मिली। इसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड बिजनेस एंगेजमेंट कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड कार्य समय में मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने पर खुशी जताई और विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो जाएगा। उन्होंने न्यूजीलैंड के उद्योग जगत को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत केवल एक बड़ा बाजार ही नहीं बल्कि वैश्विक विकास का एक सशक्त लॉन्च पैड भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
2: वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
4: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
2: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
4: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
2: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देगी। उन्होंने कहा कि सामरिक साझेदारी से व्यापार सहित कई क्षेत्रों में सहयोग का दायरा और बढ़ेगा।
5: Marking the first visit by an Indian Prime Minister to New Zealand in 40 years,

0: This visit is also a significant milestone in the New Zealand-India relationship. When I visited last year, you welcomed me and my delegation with great warmth and tremendous generosity.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और उद्योग तथा खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का प्रमुख संरक्षक है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है।
2: हमारे व्यापार का 90% से अधिक हिस्सा समुद्री मार्ग से ही होता है। हमारे विशाल प्रसिद्ध इकोनॉमिक जोन है, हमारे आईलैंड टेरिटरीज है, और यह जो रीजन है वह आज पहले से कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स और अधिक चैलेंजिंग होता जा रहा है। और इस रीजन में एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स की प्रेजेंस और एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है, जिससे आप प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने वर्तमान बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए पत्तन सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया।
2: इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, सीमा प्रबंधन सचिव, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय सचिव, मत्स्य पालन विभाग के सचिव, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। BOPS का गठन मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 की धारा 13 के प्रावधानों के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में किया जा रहा है। ब्यूरो का नेतृत्व एक महानिदेशक करेंगे और यह पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करेगा। श्री शाह ने मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के साथ मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों और मछली उतारने के केंद्रों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी जाएंगे। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हाल के तनाव के बावजूद अमेरिका और ईरान वार्ता जारी रखने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने वार्ता जारी रखने का अनुरोध किया है और अमेरिका इस पर सहमत हो गया है। अमेरिका ने ईरान से होर्मुस जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमले रोकने की मांग की है। इन हमलों के कारण तनाव बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। वेनेजुएला में पिछले महीने आए 2 शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या 4,000 से अधिक हो गई है। वेनेजुएला संसद प्रमुख जॉर्ज रोड्रिगेज के अनुसार अब तक 4,118 लोगों की मौत हो चुकी है और 16,740 लोग घायल हुए हैं, वहीं हजारों लोग अब भी लापता हैं। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ

0: के अंतर्गत लोगों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के काम में लगे आशीष अग्रवाल से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
1: प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया हमने कपड़े के बैग से, वैसे ही प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दिया मेटल की बॉटल से, टिश्यू पेपर को रिप्लेस कर दिया रुमाल वगैरह से। अनरीड मेल्स 2000 रहेंगे, 5000 रहेंगे, 10000 रहेंगे, 100 रहेंगे, कितना बड़ा मेल है उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है, तो सिर्फ इनबॉक्स को अगर हम लोग क्लियर रखते हैं उससे बहुत सारे एमिशंस बच सकते हैं।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये चर्चा आज सवेरे 9:10 पर आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर प्रसारित होगी। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
3: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलिस में आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। इससे पहले फ्रांस ने पहले क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 बजे शुरू होगा। वहीं चौथे क्वार्टर फाइनल में कल मौजूद चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। उधर विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा का सामना लिंडा नेस्कोवा से होगा। चेक गणराज की दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव से होगा। सिनर ने सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को और ज़वरेव ने ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इस बीच लंदन के लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में कल के 21 रन पर 1 विकेट के स्कोर से आगे खेलेगा। कल का खेल समाप्त होने के समय माया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर थीं। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए थे। स्मृति मानधाना ने 83 रन, कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने अर्धशतक बनाए।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद कनक। पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण से संबंधित खबर आज अखबारों के पहले पन्ने पर है। हिंदुस्तान ने सरकार का बयान दिया है, E20 से माइलेज थोड़ा घटेगा मगर इंजन सुरक्षित। जनसत्ता लिखता है, पेट्रोलियम मंत्रालय ने दी जानकारी, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से 5% कम हो जाएगी औसत। पत्र ने संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा हुआ कि अंततः सरकार की ओर से ये स्पष्ट किया गया कि E20 ईंधन से गाड़ियों का माइलेज भले ही कम होता हो लेकिन ये ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ पर्यावरण के लिए उपयोगी होने के साथ ही किसानों के लिए लाभकारी भी है। अल्कोहल युक्त दवाओं पर नए नियम लागू होने पर नवभारत टाइम्स ने नहीं मिलेगी छूट से लिखा है, अल्कोहल 12% से अधिक तो डॉक्टर की पर्ची से ही दवा, सरकार ने कहा हो रहा था गलत इस्तेमाल। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान बदतमीजी करने पर याचिकाकर्ता को कक्ष से बाहर निकाले जाने की खबर दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान में है। दिल्ली में भूजल में तय सीमा से अधिक यूरेनियम, एनजीटी सख्त, अमर उजाला की खबर है। वंदे मातरम जन गण मन को लेकर नई गाइडलाइन पर पंजाब केसरी लिखता है, सभी राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और पहले वंदे मातरम तथा उसके बाद जन गण मन गाया जाएगा। फीफा विश्व कप की खबर देते हुए जनसत्ता ने लिखा है, गोल्डन बूट की दौड़ में अब एम्बाप्पे आए मेसी के बराबर। अमर उजाला ने अमरनाथ यात्रा पर लिखा है, प्रकृति में दखल से जल्दी अंतर्ध्यान हुए बाबा बर्फानी। दैनिक भास्कर ने अपने खास आलेख में लिखा है, अतीत आज से बेहतर ये सच नहीं, बीते कल की चाहत में आज गुम न होने दें, यादों से ऊर्जा लें, भविष्य की चुनौतियों से लड़ सकेंगे।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक तथा रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट महेंद्र गिरी आज नौसेना में शामिल होगा। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा। आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा अपने ही देश की लिंडा नेस्कोवा से खेलेंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात

0: जनाब मोदी, दोनों मुल्कों के दरमियान आवाम से आवाम के रिश्तों की अक्कासी के सिलसिले में आज भारतीय बिरादरी के एक बड़े इज्तिमा से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म तीन मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे और आखिरी मरहले के तहत कल ऑकलैंड पहुंचे थे। इससे पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया का दौरा किया था। भारतीय बहरिया अपने छठे प्रोजेक्ट 17A के तहत मुल्क में ही तैयार किए गए जंगी बहरी जहाज महेंद्रगिरी F-38 को आज आंध्र प्रदेश के शहर विशाखापट्टनम में अपने मशरकी बेड़े में शामिल करेगी। इस तकरीब की सदारत वजीर दिफा राजनाथ सिंह करेंगे। ये दिफा के शोबे में खुद किफालत और जंगी जहाज़ों को मुल्क ही में तामीर करने की जानिब एक और अहम कदम है। इस जहाज को बहरिया में शामिल किए जाने की तकरीब के मौके पर बड़ा खाना के दौरान बहरी अमले से खिताब करते हुए वजीर दिफा ने बहर हिंद खित्ते में अमन इस्तेकाम के बुनियादी जामिन के तौर पर भारत के मौकफ को दोहराया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: भारतीय बहरिया के जंगी जहाज़ों को डिज़ाइन करने वाले ब्यूरो के डिज़ाइन करदा और मुंबई में मेजागन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड का तामीर करदा ये जहाज महेंद्रगिरी एक ऐसा जंगी जहाज है जो जदीद तरीन हथियारों, हसास आलात और इलेक्ट्रॉनिक जंगी निज़ाम से लैस है। ये जहाज दुश्मन के हथियारों को फजा और जमीन में नीज आबदोज कर सकता है। ये समंदर में सलामती के लिए गश्त, तलाश और बचाव का काम भी अंजाम दे सकता है। ये जहाज इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मदद, कुदरती आफात की सूरत में राहत कार्रवाई और बहर हिंद खित्ते में मुस्तकिल तैनाती की खिदमात भी अंजाम दे सकता है। इस जहाज का नाम मशरकी घाट के महेंद्रगिरी पहाड़ी सिलसिले पर रखा गया है। हुकूमत ने कहा है कि इसे कामकाज में शामिल किए जाने से भारतीय बहरिया की कार्रवाई की सलाहियत में इजाफा होगा और बहरी जहाजों की मुल्क ही में तामीर के मैदान में एक सरकर्दा मुल्क के तौर पर भारत की हैसियत उजागर होगी। इस जहाज से बहर हिंद खित्ते में भारत को सलामती के शोबे में शराकतदार मुल्क के तौर पर एक तरजीही मुल्क की हैसियत कायम होगी। विशाखापट्टनम से अल्लू मुराली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: कोयले की वजारत ने कोयला ब्लॉकों की तजारती नीलामी के 15वें मरहले के लिए बोलियों का अमल शुरू कर दिया है। वजारत ने बताया कि इन मरहलों में जिन 23 कोयला ब्लॉकों की पेशकश की गई थी उनमें से 8 के लिए कुल 21 बोलियां मौसूल हुई हैं, जिससे भारत के तजारती कोयला कानकनी के फ्रेमवर्क में सनअतों की मजबूत शिरकत की अक्कासी होती है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत मुल्क के साहिली सलामती के निज़ाम को इंतहाई पुख्ता बनाने के तई अहद बस्ता है। जनाब शाह ने बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल के साथ ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी BOPS के क्याम से मुतालिक पेशरफ का जायजा लेते हुए ये बात कही। वजीर दाखिला ने कहा कि बंदरगाहों की सलामती की जिम्मेदारी सिर्फ लाइसेंस याफ्ता प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों को ही दी जानी चाहिए और उनकी हिफाजत के लिए CISF के जरिए तरबियत याफ्ता एहलकारों को ही तैनात किया जाना चाहिए। जनाब शाह ने BOPS के तहत तैनात किए जाने वाले सभी हिफाजती एहलकारों का जामे डेटाबेस तैयार करने की भी अफसरान को हिदायत दी। वजीर दाखिला ने मजीद कहा कि BOPS हिफाजती फ्रेमवर्क के तहत आने वाली सभी बंदरगाहों को कंटेनर स्कैनिंग सहूलतों से लैस होना चाहिए। वजीर दाखिला ने विशाखापट्टनम बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह और मुंदड़ा बंदरगाह समेत बड़ी बंदरगाहों पर मुजवजा सिक्योरिटी इंतजाम की आजमाइश करने की CISF को हिदायत दी। ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी BOPS बहरी जहाज़ों और बंदरगाहों की सहूलतों की हिफाजत का मुआयना करने और उन्हें मुंजबित करने का जिम्मेदार है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: इस मीटिंग में मरकजी दाखिला सेक्रेटरी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर, सरहदी इंतजाम से मुतालिक सेक्रेटरी, बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों की वजारत के सेक्रेटरी और माही परवरी के महकमे के सेक्रेटरी, नीज CISF के डायरेक्टर जनरल और दीगर सीनियर अफसरान ने शिरकत की। मर्चेंट जहाजरानी कानून 2025 की दफा 13 के तहत ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी के क्याम को कानूनी इदारे की शक्ल दी जा रही है। ये ब्यूरो बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों की वजारत के तहत डायरेक्टर जनरल के मातहत काम करेगा। ये ब्यूरो सलामती से मुतालिक मालूमात मुश्तरक करने, तज्जिया करने और उन्हें बरवक्त जमा करने की यकीनी बनाएगा। इसके अलावा ब्यूरो साइबर सलामती पर खसूसी तवज्जो देगा और एक मखसूस डिवीजन साइबर हमलों के खिलाफ बंदरगाहों के IT बुनियादी ढांचे को तहफ्फुज़ फराहम करेगा। दिल्ली से सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बे।
0: नायब सदर CP राधाकृष्णन आज बिहार के गया का एक रोजा दौरा कर रहे हैं। इस दौरान नायब सदर गया के बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट में

0: बिहार कानून साज असेंबली के अराकीन के तरबियती प्रोग्राम के इफ्तिताही इजलास से खिताब करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुकासिमत में हालिया इजाफे के बावजूद वाशिंगटन और तेहरान बातचीत जारी रखने पर रजामंद हो गए हैं। तहम सदर ट्रंप ने यह ऐलान किया कि फरीकैन के दरमियान गुज़िश्ता महीने हुई जंगबंदी खत्म हो चुकी है। सोशल मीडिया पोस्ट में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान ने बातचीत जारी रखने की दरख्वास्त की है और अमरीका इस पर राजी हो गया है। वहीं अमरीका ने भी मुतालबा किया है कि ईरान आबनाए हुरमुज में बहरी जहाज़ों पर हमले बंद करे। आबनाए हुरमुज में जारी लड़ाई की वजह से तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। सदर ट्रंप का ये बयान उस वक्त आया है जब 3 कतरी और सऊदी तिजारती टैंकरों पर हमले हुए हैं, जिसके बाद अमरीका को ईरानी मकामात पर हमले करने पड़े और जवाब में ईरान ने खलीजी ममालिक में वाक़ अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। वेनेजुएला में 24 जून को आए दो तबाहकुन जलजलों में मरने वालों की तादाद 4,000 से तजावुज कर गई है। वेनेजुएला की पार्लियामेंट के चीफ जॉर्ज रोड्रिगेज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि लातिनी अमरीकी मुल्क में 7.2 और 7.5 शिद्दत के जके बाद दीगरे आए दो जलजलों में कम अज कम 4,118 अफराद हलाक हो गए हैं और 16,740 अफराद जख्मी हो गए हैं। हम अपनी सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के तहत अपने आइंदा नशरिए में जनाब आशीष अग्रवाल से बातचीत करेंगे, जो माहौल दोस्त तर्ज जिंदगी अपनाने के लिए लोगों की हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। ये प्रोग्राम आप 100.1 मीटर पर आकाशवाणी गोल्ड पर आज सुबह 9:10 पर सुन सकते हैं। आप ये प्रोग्राम न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनलों पर भी सुन सकते हैं। फीफा आलमी कप में कल रात अमेरिका के इंगलवुड के लॉस एंजलिस स्टेडियम में खेले गए दूसरे क्वार्टर फाइनल मैच में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इससे पहले फ्रांस ने बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में मराकिश पर 2-0 की आसान जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। विंबलडन टेनिस के खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में आज लंदन में चेक जमहूरिया की कैरोलिना मुचोवा का मुकाबला हमवतन लिंडा नोस्कोवा से होगा। दोनों खवातीन खिलाड़ी अपना पहला विंबलडन खिताब जीतने की कोशिश कर रही हैं। पहली मर्तबा विंबलडन का फाइनल खेल रही मुचोवा पूरी तरह अपने खेल और तजुर्बे पर इन्हिसार कर रही हैं, जबकि अपनी सख्त हिटिंग के लिए मशहूर नोस्कोवा भी अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीतना चाहेंगी। विंबलडन में कल मर्दों के सिंगल्स का फाइनल खेला जाएगा, जहां आलमी नंबर 1 यैनिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव से होगा। खवातीन क्रिकेट में लंदन के शहर लॉर्ड्स में भारत और इंग्लैंड के दरमियान जारी पहले टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली बारी के अपने स्कोर 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेल की शुरुआत करेगा। ये थी खबरें और अब अखबार के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
1: शुक्रिया जमीर। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के अखबार ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इंकलाब ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 3 ममालिक के दौरे के आखिरी मरहले में न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड पहुंचने की खबर को अहमियत दी है, जहां न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म क्रिस्टोफर लक्सन ने हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया, जबकि रोजनामा प्रताप ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथनी एल्बनीज़ के जरिए मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में दोनों ममालिक के दरमियान खेलों में ताउन बढ़ाने के लिए एक रोडमैप जारी किए जाने की खबर पर तवज्जो मरकूज की है। ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु के कदीम विरसे की वापसी पर नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने खुशी का इजहार किया और कहा कि भारत के मालामाल सकाफती विरसे को उसके मकाम पर वापस लाने की समझ में ये एक अहम कदम है। इस खबर को रोजाना प्रताप ने उजागर किया है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने दिफा, कुदरती आफात की सूरत में बंदोबस्त और मवेशियों की अफजाइश नस्ल समेत अहम शोबों में 5 मफाहमत नामों पर दस्तखत किए हैं, जिनका मकसद इक्तसादी और दिफाई ताउन में इजाफा करना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के अपने हमनसब क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वफ्द की सतह की बातचीत की। उन्होंने भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान FTA को ऐसा तारीखी संग मील करार दिया जिससे दोतरफा ताल्लुकात को एक नई रफ्तार मिलेगी। भारतीय बहरिया आज शाम विशाखापट्टनम में मुल्क में ही तैयार किए गए जंगी बहरी जहाज महेंद्र गिरी को अपने कामकाज में शामिल करेगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत बहर हिंद खत्ते में अमन इस्तेकाम का एक बुनियादी जामिन है। वजीर दाखिला अमित शाह ने बंदरगाहों की हिफाजत का ब्यूरो शुरू करने के काम में पेशरफ का जायजा लिया। उन्होंने मजबूत साहली सिक्योरिटी इकदाम की हिदायत दी। इसके साथ ही आकाशवाणी से यह खबरनामा खत्म हुआ।

0: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, प्रातः के 8:45 हुए हैं और प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। कार्यक्रम का ये आरंभिक गीत है इश्क फिल्म से। स्वर है उदित नारायण और विभा शर्मा के, बोल है जावेद अख्तर के, धुन बनाई है अनु मलिक ने।
1: मुझे शर्म आती है।
2: देखो, तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।

कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे आनंद बख्शी की शब्द रचना। स्वर थे मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की फिल्म थी त्रिदेव।

श्रोताओं अब लीजिए सुनिए बागी फिल्म से अमित कुमार और अनुराधा पौडवाल को। गीतकार है समीर, संगीतकार है आनंद मिलिंद।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें।

0: अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत है उदित नारायण और अलका याग्निक के जुगल स्वरों में। जावेद अख्तर के बोलों को संगीत से सजाया है संजीव दर्शन ने। फिल्म का नाम है हमारा दिल आपके पास है।

श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत। फिल्म है सांवरिया, स्वर है श्रेया घोषाल का, बोल है नुसरत बद्र की, धुन बनाई है मोंटी ने।

साथियों, इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अब यही संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, अब कुछ ही पलों में आप हमारे लखनऊ केंद्र से सुनेंगे जिले की हलचल।

0: हलचल। आज सुनिए अयोध्या और गौतम बुद्ध नगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं अयोध्या जिले की हलचल। आलेख और स्वर है तन्मय सोनी का।
1: अयोध्या के श्रीराम मंदिर चढ़ावा गबन मामले में पुलिस द्वारा आरोपियों की निशानदेही पर स्थलीय निरीक्षण और गबन की धनराशि से अर्जित की गई संपत्तियों को चिन्हित किया जा रहा है। इस मामले में अब तक करीब 69,85,000 रुपए की बरामदगी हो चुकी है। पुलिस आगे भी आरोपियों की कस्टडी रिमांड के लिए कोर्ट से मांग कर सकती है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की 6 जुलाई को हुई अहम बैठक में राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण को लेकर कई बड़े निर्णय लिए गए। बैठक में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का त्याग पत्र स्वीकार किया गया। ट्रस्ट ने दान व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति का फैसला लिया है। बैठक के बाद ट्रस्ट ने जानकारी दी कि श्रद्धालुओं की

0: है। बैठक के बाद ट्रस्ट ने जानकारी दी कि श्रद्धालुओं की दान की गई सभी बहुमूल्य वस्तुएं सुरक्षित हैं, जिसे दानकर्ता ट्रस्ट से संपर्क करके देखकर संतुष्ट हो सकते हैं। यदि उन्हें रसीद नहीं मिली है तो अब रसीद भी प्राप्त कर सकते हैं। SIT जांच रिपोर्ट के बाद आगे के अन्य निर्णय लिए जाएंगे। ट्रस्ट की अगली बैठक 22 जुलाई को निर्धारित की गई है। अयोध्या में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना और छात्रों के लिए DTB योजना का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश स्तर पर योजना की शुरुआत की। इसके बाद अयोध्या के सर्किट हाउस में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा योजना के कार्ड वितरित किए गए। वहीं DTB योजना के तहत जिले के 1,14,669 बच्चों के अभिभावकों के खाते में यूनिफॉर्म, जूता मोजा, स्कूल बैग और स्टेशनरी के लिए प्रति छात्र 1200 रुपए की धनराशि भेजी गई। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान विगत दिनों अयोध्या पहुंचे। उन्होंने आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज का दौरा कर मखाने की खेती का निरीक्षण किया और किसानों से संवाद स्थापित किया। कृषि प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए उन्होंने आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी भी ली। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खेती और किसान देश की सबसे बड़ी ताकत हैं और वर्ष 2047 तक किसानों को बेहतर दिशा देने के लिए वैज्ञानिक कृषि रोड मैप तैयार किया गया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि
1: पूरे देश में खेत बचाओ अभियान चल रहा है। हमने अलग अलग विकल्प यहाँ के देखे, इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मॉडल देखा और यहाँ किसान भाइयों और बहनों के साथ खेत बचाओ अभियान पर यहाँ चर्चा की। उत्तर प्रदेश कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है।
0: अयोध्या को एक और सौगात के रूप में दुनिया के पहले रामायण वैक्स म्यूजियम का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण किया। नगर निगम के PPE मॉडल पर तैयार इस म्यूजियम में भगवान श्री राम के बाल स्वरूप से लेकर सीता स्वयंवर, वनवास और लंका विजय तक के रामायण के प्रमुख प्रसंगों को मोम की प्रतिमाओं के जरिए प्रदर्शित किया गया है। म्यूजियम के संस्थापक सुनील कंडलूर ने बताया कि दूसरे चरण में रामायण से जुड़े और प्रसंगों को भी भव्य रूप दिया जाएगा। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सिंह अयोध्या पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार रामनगरी पहुंचे देवेंद्र सिंह ने रामलला के दर्शन पूजन किए। राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण को लेकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जांच निष्पक्ष तरीके से चल रही है और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लखनऊ अग्निकांड के बाद अयोध्या में भी अग्निशमन विभाग अलर्ट हो गया है। विभाग की टीमों ने शहर के कोचिंग सेंटरों पर जांच अभियान शुरू किया। फायर सेफ्टी उपकरणों और सुरक्षा मानकों की जांच की जा रही है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी MP सिंह ने बताया कि नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों पर कार्रवाई की जाएगी।
2: चेकिंग अभियान हमारा जारी रहेगा तो हमारे पास ऑन रिकॉर्ड 36 कोचिंग हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है, उनको सबको हम थोरोली चेक करेंगे। NOC जब भी इशू किया जाता है, जब उनके जो मानक है हमारा निर्धारित मानक वो पूरा करते हैं, जब भी जारी करता है। बाद में जो पर्पज होता है चेकिंग अभियान का, वो ये रहता है कि जो अरेंजमेंट लगे हैं समय के साथ कई बार वो जाने अनजाने या किसी कारण निष्क्रिय या अकार्यशील हो जाते हैं।
3: अयोध्या जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गौतम बुद्ध नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विशाल धर दुबे का।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर जिले के यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत सेक्टर 10 में स्थित अंबर एवं एसेंट के अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास एवं भूमि पूजन किया। लगभग 6,785 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित होने वाली इस परियोजना से हजारों युवाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने सेक्टर 8 में 8,200 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित होने वाले सेल के सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। 200 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित होने वाला यह अत्याधुनिक संयंत्र 5 गीगावाट सोलर सेल और 5 गीगावाट सोलर मॉड्यूल निर्माण क्षमता से युक्त होगा। इस परियोजना से प्रदेश में लगभग 5,000 प्रत्यक्ष एवं 15,000 अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट के शिलान्यास इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट निर्माण के क्षेत्र में यह एक बड़ी उपलब्धि है। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था आज कीर्तिमान स्थापित कर रही है।
5: आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यशस्वी और विजनरी लीडरशिप हम सबको प्राप्त हो रहा है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व में ही आज देश के अंदर तेजी के साथ विकसित हो रही भारत की अर्थव्यवस्था एक नए प्रतिमान को स्थापित कर रही है।
4: इसी कार्यक्रम में केंद्रीय रेल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोगों को PCB के बारे में विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि भारत पहले 40,000 करोड़ रुपए का

0: से भी आयात करता था, अब इसे जेवर में ही बनाया जाएगा।
1: हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले बजट में एक नई स्वीकृति दी है बुलेट ट्रेन की। बुलेट ट्रेन, ये मोदी जी का सपना है उत्तर प्रदेश के ट्रांसपोर्टेशन के नक्शे को बदल देने का।
0: केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि आज यूपी को उत्तम प्रदेश के रूप में देखा जा रहा है। प्रदेश औद्योगिक निवेश और विश्वास का केंद्र बनकर उभरा है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से यात्री उड़ानें शुरू होने के बाद कार्गो उड़ानें भी शुरू हो गई हैं। 17 जून को एयर इंडिया सेट्स ने भारत के पहले एकीकृत मल्टी मॉडल कार्गो हब से माल ढुलाई के काम को शुरू कर दिया। इसे भारत के सबसे बड़े लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे की पहली वाणिज्यिक शुरुआत माना जा रहा है। इससे पहले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 जून से वाणिज्यिक उड़ानों का संचालन शुरू हुआ। कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री जयरापू राममोहन नायडू ने इस मौके को ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी विजन का परिणाम है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में प्रभारी व लोक निर्माण राज्य मंत्री कुंवर विजय सिंह शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन से लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि का वितरण किया और देश भर के युवाओं को प्रोत्साहित किया। घिटन ऊर्जा में आयोजित कार्यक्रम में दादरी विधायक तेजपाल नागर, जेवर विधायक धीरन सिंह व श्रम व रोजगार विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में शामिल प्रभारी मंत्री ब्रजेश सिंह ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनेगा, जिसमें वर्तमान समय का जो युवा शक्ति है उसका सबसे बड़ा योगदान होगा। कोरियाई प्रतिनिधिमंडल ने निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का दौरा किया। इस प्रतिनिधिमंडल में कोरिया गणराज्य के व्यापार उद्योग संसाधन मंत्रालय, कोरिया गणराज्य के दूतावास और कोरिया व्यापार निवेश संवर्धन एजेंसी के प्रतिनिधि शामिल थे। इस दौरान ईडा के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेंद्र कुमार भाटिया ने ईडा क्षेत्र की निवेश क्षमता पर एक प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि ईडा क्षेत्र में सेमीकंडक्टर, चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, चिकित्सा उपकरण, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स और अन्य उभरते औद्योगिक क्षेत्र जैसे प्रमुख क्षेत्रों और उत्पादों में निवेश हो रहा है, जिससे क्षेत्र का औद्योगिक और लॉजिस्टिक इकोसिस्टम मजबूत हुआ है। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ने अंतरिक्ष विज्ञान, नवाचार एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए विश्व के पहले अंतर्राष्ट्रीय ऑल गर्ल्स लूनर मिशन शक्ति सेट से सहभागिता स्थापित की है। इस ऐतिहासिक मिशन में विश्वविद्यालय ने एक प्रमुख शैक्षणिक एवं संस्थागत भागीदारी के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। यह महत्वाकांक्षी मिशन एरोस्पेस संस्था, स्पेस किड्स इंडिया तथा भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के नियामक एवं प्रोत्साहन संस्थान इन स्पेस के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। कुलपति प्रोफेसर राणा प्रताप सिंह ने कहा कि सक्सेस मिशन से गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय का जुड़ना हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है।
2: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

मीडियम वेव 196.9 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा।

रवि के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे साहिल लुधियानवी की शब्द रचना। स्वर था महेंद्र कपूर का, फिल्म थी हमराज। और अब लीजिए सुनिए फिल्म मेरे सनम से मोहम्मद रफी को। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार है ओपी नैयर।

कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर और मुकेश की जुगस्वरों में। मजरूह सुल्तानपुरी की शब्द रचना है, संगीत निर्देशन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फिल्म का नाम है धरती कहे पुकार के।

श्रोताओं अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत। स्वर है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के, गीतकार है आनंद बख्शी, संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम है आया सावन झूमके।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के गाए इस गीत के साथ। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, लोक संगीत के कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं देवेंद्र कुमार के गाए कुछ ब्रज लोक गीत।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं देवेंद्र कुमार की गाय कुछ प्रस्तुत गीत।

श्रोता देवेंद्र कुमार की गाई इस ब्रज लोक गीत के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता।

प्रीतम के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे सईद कादरी की शब्द रचना। स्वर थे जावेद अली, इरफान अली और शादाब की फिल्म थी तुम मिले।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

रहमान के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे गुलजार के शब्द रचना, स्वर थे अलका याग्निक और जावेद अली के, फिल्म थी युवराज।

शंकर एहसान लॉय के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे जावेद अख्तर की शब्द रचना, स्वर थे सोनू निगम और अलका याग्निक के। फिल्म थी कभी अलविदा ना कहना। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता अब यहीं संपन्न होता है।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं विदुषी प्रभा अत्रे का राग देसी में ख्याल गायन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विदुषी प्रभा अत्रे का रागदेसी में ख्याल गायन। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। समय है कार्यक्रम आज के कलाकार का, जिसे लेकर हाजिर है आपकी रेडियो दोस्त गरिमा शाक्य। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के उस सितारे की, जिसकी मुस्कान, मासूमियत और शानदार अभिनय ने लाखों करोड़ों दिलों को अपना दीवाना बना लिया। एक ऐसा अभिनेता जिसकी फिल्में सफलता की ऐसी मिसाल बनी कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें प्यार से जुबली कुमार कहना शुरू कर दिया। जी हां, आज के इस विशेष अंक में बात होगी महान अभिनेता राजेंद्र कुमार की। राजेंद्र कुमार का जन्म 20 जुलाई 1927 को सियालकोट में हुआ था, जो आज पाकिस्तान में है। देश के विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आ गया। नए देश में नई शुरुआत करना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को कभी टूटने नहीं दिया। फिल्मों का शौक उन्हें मुंबई ले आया, जहां उन्होंने अभिनेता बनने के लिए कड़ा संघर्ष किया।

अपने शुरुआती दिनों में राजेंद्र कुमार ने निर्देशक एचएस रवेल के सहायक के रूप में भी काम किया। धीरे धीरे उन्हें छोटे छोटे रोल मिलने लगे, लेकिन मेहनत और लगन का फल उन्हें तब मिला जब उन्हें फिल्म मदर इंडिया में एक अहम भूमिका निभाने का अवसर मिला। ये फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे महान फिल्मों में गिनी जाती है और यहीं से राजेंद्र कुमार के अभिनय को नई पहचान मिली। इसके बाद सफलता का ऐसा दौर शुरू हुआ जो कई वर्षों तक लगातार चलता रहा। गूंज उठी शहनाई, धूल का फूल, घराना, ससुराल, दिल एक मंदिर, मेरे महबूब, संगम, आरजू, सूरज, झुक के आसमान और तलाश जैसी फिल्मों ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया।

दोस्तों, उन दिनों एक दिलचस्प बात अक्सर कही जाती थी कि जिस फिल्म में राजेंद्र कुमार हो उसकी सफलता लगभग तय मानी जाती थी। उनकी कई फिल्में लगातार सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली मनाती थी। यही कारण था कि पूरा बॉलीवुड उन्हें जुबली कुमार के नाम से जानने लगा और ये सम्मान बहुत कम कलाकारों को मिला है। राजेंद्र कुमार की अभिनय शैली बेहद सहज और भावनात्मक थी। वे बिना किसी बनावट के अपने किरदार में जान डाल देते थे, चाहे रोमांटिक हीरो का किरदार हो, एक आदर्श बेटे का, समर्पित पति का या त्याग करने वाले इंसान का। हर भूमिका में वे पूरी तरह उतर जाते थे। यही वजह थी कि परिवार के हर सदस्य को उनकी फिल्में पसंद आती थी। अगर उनके गीतों की बात करें तो आज भी उनके ऊपर फिल्माए गए कई गीत सदाबहार है। बहारो फूल बरसाओ, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, एनर्गे से मस्ताना और याद ना जाए बीते दिनों की जैसे गीत आज भी संगीत प्रेमियों की पहली पसंद है। इन गीतों में मोहम्मद रफी की आवाज और राजेंद्र कुमार की अदाकारी का ऐसा जादू था जिसने हमेशा हमेशा के लिए उन्हें अमर बना दिया।

दोस्तों, राजेंद्र कुमार ने सिर्फ अभिनेता के रूप में ही नहीं बल्कि निर्माता के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। उन्होंने अपने बेटे कुमार गौरव को फिल्म लव स्टोरी में लॉन्च किया और ये फिल्म उस समय की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शामिल रही और इसके गीत भी आज तक बेहद लोकप्रिय है। साल 1969 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। ये सम्मान उनके भारतीय सिनेमा में अतुलनीय योगदान का प्रमाण था।

6 जुलाई 1999 को राजेंद्र कुमार इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनकी फिल्में, उनके गीत और उनका अभिनय आज भी दर्शकों के दिलों में जिंदा है। नई पीढ़ी जब भी हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम दौर को याद करती है तो राजेंद्र कुमार का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। दोस्तों, राजेंद्र कुमार हमें ये सिखाते हैं कि संघर्ष चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर मेहनत, धैर्य और अपने सपनों पर विश्वास हो तो सफलता एक दिन जरूर कदम चूमती है।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। समय है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत का और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त गरिमा शाक्य। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, बढ़ती आबादी, घटते संसाधन। जरा सोचिए, हमारे घर में अगर लोग बढ़ जाएं लेकिन कमरा वही रहे, पानी उतना ही रहे, खाना उतना ही रहे, तो दिक्कत तो होगी ना। बिल्कुल यही बात हमारी धरती के साथ भी हो रही है। लोग बढ़ रहे हैं, जरूरतें बढ़ रही हैं, लेकिन जमीन, पानी, जंगल, हवा और बाकी प्राकृतिक संसाधन सीमित है। विश्व जनसंख्या दिवस हमें यही याद दिलाता है कि आबादी केवल गिनती नहीं, बल्कि ये हमारे बच्चों की पढ़ाई, हमारे परिवार की सेहत, रोजगार, पानी, भोजन, घर और आने वाले भविष्य से जुड़ा सवाल है। दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य बढ़ती जनसंख्या, परिवार नियोजन, लैंगिक समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य और मानव अधिकारों जैसे गंभीर विषयों के प्रति वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाना है। तो चलिए आज की इस बातचीत की शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत से जो हमें अपनी धरती, अपनी मिट्टी और अपनी जमीन से जोड़ता है।

कितना प्यारा गीत था ना दोस्तों, ये जमीन गा रही है। ये गीत सुनकर ऐसा लगता है जैसे सच में धरती हमसे बात कर रही हो। लेकिन कभी कभी आपको नहीं लगता कि हमारी धरती गा तो रही है पर साथ ही हमें समझा भी रही है कि अब थोड़ा संभल जाओ। आज हम देखते हैं कि जहां पहले खेत हुआ करते थे वहां अब कॉलोनीज बन रही हैं, जहां पेड़ हुआ करते थे वहां बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो रही हैं, शहर फैल रहे हैं, सड़कें बढ़ रही हैं, गाड़ियां बढ़ रही हैं, लेकिन जमीन तो उतनी ही है तो जाहिर है कि वो छोटी ही लगने लगेगी। आबादी बढ़ने का सीधा असर खेती पर भी पड़ता है। खेती की जमीन कम होगी तो अनाज पर दबाव पड़ेगा, पानी कम होगा तो खेती मुश्किल होगी, और जब भोजन, पानी और जमीन पर दबाव बढ़ता है तो आम आदमी की जिंदगी भी महंगी और कठिन होती जाती है। इसलिए आज हमें ये समझना होगा कि छोटे परिवार केवल एक नारा नहीं बल्कि एक समझदारी बड़ा फैसला है। बच्चे कम हो लेकिन उनकी पढ़ाई अच्छी हो, सेहत अच्छी हो, परवरिश अच्छी हो।

यही तो आपकी और हमारी असली जिम्मेदारी है। और दोस्तों, जब हर बच्चे को सही माहौल, अच्छी शिक्षा और अपने सपनों को पूरा करने की आज़ादी मिलती है, तभी वो सच में आगे बढ़ पाता है। हर बच्चे के अंदर एक अलग हुनर होता है, बस ज़रूरत होती है उसे समझने की, उसे मौका देने की और उसके सपनों के लिए रास्ता खोलने की। बढ़ती आबादी के बीच अगर हम बच्चों को सिर्फ संख्या की तरह देखेंगे तो उनके सपने कहीं खो सकते हैं, लेकिन अगर परिवार छोटा और सोच बड़ी होगी तो हर बच्चे को उड़ने के लिए आसमान मिल सकता है। इसी उम्मीद, आज़ादी और सपनों की उड़ान के साथ आइए सुनते हैं अगला गीत।

दोस्तों, बच्चों को सिर्फ आसमान नहीं चाहिए होता, उनको जमीन भी चाहिए होती है। किस लिए? अपना बचपन जीने के लिए, खेलकूद करने के लिए। पर जरा सोचिए कि आज उनके पास वो पहले जैसे खुले मैदान हैं। हम सब ने अपना बचपन भरपूर जिया है, मैदानों में दौड़ लगाकर, क्रिकेट खेलकर। पर आज हम अपने बच्चों को अपना वाला बचपन दे पा रहे हैं? नहीं ना। हम तो आज प्राथमिक जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जैसे शुद्ध हवा, पानी। आज कई जगहों पर पानी की कमी बड़ी समस्या बनती जा रही है। गर्मी आते ही टैंकरों की लाइनें लग जाती हैं। कहीं लोग दूर दूर से पानी भरकर लाते हैं तो कहीं भूजल लगातार नीचे जा रहा है। अब अगर आबादी बढ़ती रहे, पानी की बचत ना हो, तो आने वाले समय में हालात और मुश्किल हो सकते हैं। और बात सिर्फ पानी की नहीं है, बिजली की मांग बढ़ रही है, कचरा बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही है, स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ रही है और नौकरी के लिए प्रतिस्पर्धा भी बढ़ती जा रही है। इसलिए जनसंख्या का विषय सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं है, यह समाज, देश और पूरी धरती से जुड़ा हुआ विषय है। अगर परिवार सोच समझ कर निर्णय लेगा, अगर महिलाएं शिक्षित होंगी, अगर युवाओं को सही जानकारी

दोस्तों, हमारा देश युवाओं का देश है, ये बात हम गर्व से कहते हैं और सही भी है। लेकिन युवाओं की संख्या तभी ताकत बनती है जब उन्हें अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, सही कौशल और रोजगार के अवसर मिले। अगर आबादी बढ़ती जाए लेकिन शिक्षा और रोजगार उतनी तेजी से ना बढ़े तो वही ताकत चुनौती बन जाती है। इसलिए हमें संख्या से ज्यादा गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा। हर बच्चा पढ़े, हर बच्चा स्वस्थ रहे, हर युवा सक्षम बने, यही असली विकास है। कई बार लोग सोचते हैं कि परिवार नियोजन केवल महिलाओं की जिम्मेदारी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। परिवार की योजना पति पत्नी दोनों की जिम्मेदारी है। बच्चे कब करने हैं, कितने करने हैं, उन्हें कैसे पालना है, उनकी पढ़ाई और सेहत का ध्यान कैसे रखना है, ये सब सोच समझ कर तय होना चाहिए। छोटा परिवार होने से माता पिता बच्चों को ज्यादा समय दे पाते हैं, उनकी पढ़ाई, पोषण और

स्वास्थ्य पर अच्छा ध्यान दे पाते हैं। घर का आर्थिक दबाव भी कम होता है और जब परिवार मजबूत होता है तभी समाज मजबूत होता है। दोस्तों, आज का समय हमें यही कहता है कि आने वाले कल को बेहतर बनाना है तो आज सही फैसला लेना होगा। इसी सोच के साथ सुनते हैं अगला गीत।

दोस्तों, जो समय आज हमारे हाथ में है वही सबसे कीमती है। अगर आज हमने संसाधनों को बचाना नहीं सीखा तो कल पछताना पड़ सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे अकेले पानी बचाने से क्या होगा, हमारे अकेले बिजली बचाने से क्या होगा, हमारे अकेले पेड़ लगाने से क्या होगा। लेकिन सच ये है कि बदलाव हमेशा एक एक व्यक्ति से ही शुरू होता है। घर में नल खुला छोड़ना बंद करें, खाना बर्बाद ना करें, जरूरत से ज्यादा चीजें ना खरीदें, प्लास्टिक कम करें, पेड़ लगाएं, बच्चों को प्रकृति से जोड़ें। ये सब छोटी बातें लगती हैं लेकिन असर बहुत बड़ा है। बढ़ती आबादी के बीच अगर हम जिम्मेदार जीवन शैली अपनाते हैं तो संसाधनों पर दबाव कम हो सकता है। हमें ये समझना होगा कि धरती हमारी जरूरतें पूरी कर सकती है, लेकिन हमारी लापरवाही नहीं। और हाँ, शिक्षा इस पूरे विषय की सबसे बड़ी कुंजी है, खासकर लड़कियों की शिक्षा। जब महिलाएं शिक्षित और आत्मनिर्भर होती हैं तो वे अपने स्वास्थ्य, परिवार और बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर निर्णय लेती हैं। इसलिए जनसंख्या जागरूकता में महिला शिक्षा की भूमिका बहुत बड़ी है।

दोस्तों, बढ़ती आबादी और घटते संसाधन हमें यही समझाते हैं कि जीवन में जो भी हमारे पास है, ये धरती, पानी, हवा, भोजन और प्रकृति सब बहुत ही कीमती है। इसलिए हमें अपने घर से शुरुआत करनी होगी, पानी बचाकर, भोजन की बर्बादी रोककर, पेड़ लगाकर, परिवार नियोजन को समझदारी से अपनाकर। छोटा परिवार, अच्छी परवरिश, बेहतर शिक्षा, महिलाओं का सम्मान और स्वास्थ्य की जागरूकता, यही एक संतुलित समाज की नींव है। आज विश्व जनसंख्या दिवस पर हम संकल्प लें कि हम केवल अपने आज के बारे में नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के कल के बारे में भी सोचेंगे, क्योंकि आखिर में इंसान खाली हाथ ही जाता है, लेकिन उसके अच्छे काम, उसकी सोच और उसकी जिम्मेदारी आने वाली पीढ़ियों के लिए निशानी बन जाती है। इसी सोच के साथ मैं आपकी रेडियो दोस्त गरिमा शाक्य आपसे लेती हूं विदा। अपना ध्यान रखिए, जागरूक रखिए, जागरूक रहिए और एक जिम्मेदार नागरिक बनकर धरती और भविष्य को सुरक्षित रखिए, क्योंकि दोस्तों यही धरती है जो हम सबको सब कुछ देती है। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

अभी आप सुन रहे थे समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। समय है कार्यक्रम लोक मंजरी का। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं ओम प्रकाश अमर की आवाज में कुछ लावणी लोकगीत। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

इस लोकगीत के साथ कार्यक्रम लोक मंजरे अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, अब समय है कार्यक्रम नए तराने का।

कार्यक्रम का पहला गीत था फिल्म लकी से लता मंगेशकर और अदनान सामी की आवाजों में। समीर के बोल थे अदनान सामी की धुन। अगला गीत है नंदिनी श्रीकर की आवाज में फिल्म रावण से। विशाल शेखर की धुन पर बोल है पंछी जलोन वी के।

0: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: कार्यक्रम नए तराने को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं फिल्म पहेली का गीत सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में। गुलजार का गीत है, एम एम करीम का संगीत।

रब्बी शेरगिल को आपने सुना फिल्म जब तक है जान में। गुलजार की रचना को संगीत से सवारा था एआर रहमान ने। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत है फिल्म डर्टी पिक्चर से कमाल खान की आवाज में। रजत अरोड़ा का गीत है, विशाल शेखर का संगीत।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम नए तराने अब संपन्न होता है। श्रोताओं, दोपहर के 1 बजने को है। अब आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने ऑकलैंड में बताया कि आगामी चार वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
1: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
0: इससे पहले दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े पांच महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
2: लोकतांत्रिक मूल्यों में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में भी श्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उन्होंने उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को मजबूत करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि INS महेंद्र गिरी में 75% से अधिक स्वदेशी

0: घटकों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है और इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी।
1: INS महेंद्रगिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमेरिन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें INS महेंद्रगिरी को महेंद्रगिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्री शाह ने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जयप्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सिक्किम एक बार फिर देश का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरा है। प्रति व्यक्ति आय के नवीनतम विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 6,46,000 रुपए से अधिक रही। ये राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। इससे पहले कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में कल सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इससे पहले स्पेन और फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में 5 दिन भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi arrives at Spark Arena in Auckland to address the Indian community. Around 10,000 people have already gathered at the venue. Members of the Indian diaspora from across New Zealand have come together for this special event. Prime Minister Modi and his New Zealand counterpart Christopher Luxon have decided to elevate the bilateral relationship to a strategic partnership. Secretary E. Rudhrendra Tandon shared this in Auckland while addressing the special briefing on the Prime Minister's visit to New Zealand. He added that the Prime Minister endorsed the India-New Zealand Strategic Partnership Roadmap to 2030 as a framework to guide joint action over the next 4 years. He added that this decision aims to take bilateral relations to a new level, strengthen existing cooperation mechanisms, and explore new avenues for deepening cooperation both bilaterally and multilaterally. Defence Minister Rajnath Singh has said that India is building a strong, self-reliant and future-ready defence force by strengthening both conventional defence capabilities and advanced technologies. Mr. Rajnath Singh was addressing the commissioning ceremony of the INS Mahendragiri, the 6th Project 17A Indigenous Stealth Frigate, into the Eastern Fleet at Vishakhapatnam today.
1: Multi-function radar ke saath.
3: It has a long-range surface-to-air missile combination with a multi-function radar that can detect and destroy any threat coming from the sky from a distance. And it has an indigenous rocket launcher, torpedo launchers, an integrated anti-submarine defense system, an electronic warfare suit and a close-in weapon system too. These all things make INS Mahendragiri as invincible and strong as the Mahendragiri mountain.
1: Mahendragiri parvat ke saman hi abhed aur majboot banati hai.
2: Union Home Minister Amit Shah has appealed to the younger generation to connect with libraries, highlighting their significant role in shaping an individual's personality. Inaugurating the Jayaprakash Narayan Public Library in New Delhi today, Mr. Shah said that Lok Nayak Jayaprakash Narayan was a great freedom fighter, thinker and national leader who made remarkable contributions to the country. Highlighting the role of libraries in nation building, the Home Minister said they are a powerful medium for spreading country's culture and knowledge among the masses along with modern education. Union Road Transport Minister

0: Nitin Gadkari chaired the third BRICS Transport Ministers meeting today in Nagpur, Maharashtra. While interacting with media, Mr. Gadkari said the delegates discussed the efforts to make the carbon neutral transport in road, rail, aviation and waterways transport by adopting the alternative biofuels and pollution-free technologies. BRICS Ministerial Declaration 2026 has also been adopted during the meeting for strengthening this cooperation among BRICS countries. Niti Aayog has convened a stakeholder consultation on implementation of the Shanti Act 2025 in New Delhi, with focus on developing legislative and regulatory framework, strengthening finance, insurance and public perception. The consultation brought together key leaders, policymakers and experts from the government, research institutions and industry to deliberate on the operational framework of the Landmark Act. The India Meteorological Department has issued an orange alert for very heavy rainfall over Bihar, Uttar Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim during the next 3 days. In United States, the Trump administration imposed a fresh round of sanctions on Iran today, targeting individuals and financial networks linked to the country's leadership. This comes in response to Tehran's attacks on commercial vessels in the Strait of Hormuz earlier this week. The latest measures mark another escalation in Washington's campaign against Iran, following a series of retaliatory steps that have included U.S. strikes on Iranian targets and the withdrawal of a sanction waiver that had allowed Tehran to sell oil. In the FIFA World Cup, Norway will take on England, while defending champions Argentina face Switzerland late in the night in the quarterfinals to determine the remaining semi-finalists. Spain secured a thrilling 2-1 victory over Belgium to advance, while France progressed with a comfortable 2-0 win over Morocco. India will face host England in the fifth and final T20 international of the series today in Southampton at 7 p.m. Indian Standard Time. England has already clinched the series with a 3-0 lead, while India will be aiming to register a consolation victory before the teams move on to the ODI series. And that is the end of this news bulletin.
1: कल गोरखपुर दौरे पर पहुंचे वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज सुबह गोरखनाथ मंदिर में अवामी दर्शन करने के बाद कुशीनगर जिला पहुंचे, जहां उन्होंने टेकुतार में मुनक्किद तरक्याती कामों के इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखने की तकरीब में तीन असेंबली हलकों रामकोला, हाटा और कुशीनगर के लिए सड़क, तालीम, सेहत और आबपाशी से मुतालिक 525 करोड़ रुपए के 464 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। इस दौरान वजीर आला ने जलसायाम से खिताब भी किया। अपने खिताब में वजीर आला ने कहा,
2: कुशीनगर को बेहतरीन सेवा हम देने जा रहे हैं और हम तो जेवर के साथ भी कुशीनगर को जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, गया के साथ जोड़ने जा रहे हैं, अच्छे और नए एयरक्राफ्ट कुशीनगर की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे। अब हमारे कुशीनगर के नौजवानों को अपनी खेती को आधुनिकता के साथ जोड़ने के लिए इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं, कुशीनगर में ही हम लोग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दे चुके हैं, कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर में ही बन रहा।
1: आज ही वजीर आला गोरखपुर के पिपराइच असेंबली हलके के इंद्र भाथड़ बंस्थान में 758 करोड़ रुपए के 24 तरक्याती कामों की नकाब कुशाई करेंगे। वो 697 करोड़ 49 हजार रुपए की लागत वाली भाट भंस्थान 4 लेन वाली सड़क समेत 5 सड़कों का इफ्तिताह भी करेंगे और 60 करोड़ 63 लाख रुपए से ज्यादा की लागत से सड़क की तामीर और सयाहत से मुतालिक 19 तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट पीर को अयोध्या के श्रीराम मंदिर में एहतियात की मुबैना चोरी की गैर जानबदाराना तहकीकत का मतालबा करने वाली कई अर्जियों पर समाअत करेगी। दरख्वास्तों की समाअत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉय मालिया बागची और जस्टिस वी मोहन पर मुश्तमिल बेंच के सामने होगी। इन दरख्वास्तों में इस वाकये की सीबीआई तहकीकत और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के माली लेन देन का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी ऑडिट का मतालबा किया गया है। कबल अज अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 मुलजिमान में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। कमेटी के चेयरमैन रुपेंद्र मिश्रा राम मंदिर की तामीर कमेटी की मीटिंग में शिरकत के लिए आज अयोध्या में हैं। राम मंदिर में पेशकश की चोरी के बारे में उन्होंने कहा कि खजांची गोविंद देवगिरी महाराज ने कहा है कि यह अपने आप में एक बदनुमा दाग है और हम सब खुद को छोटा महसूस कर रहे हैं। उम्मीद है कि अब इंतजाम

0: बेहतर होंगे और ऐसा दोबारा नहीं होगा। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में एहतियात की गिनती करने वाले 20 से जायद मुलाजमीन ने बैंक वक्त इस्तीफा दे दिया है। इन इस्तीफों को एहतियात में बेजाब्तगियों के सामने आने के बाद निजाम में की गई तब्दीलियों से जोड़ा जा रहा है। इस दौरान बाकी मुलाजमीन की ड्यूटी शेड्यूल और छुट्टियों में रद्दोबदल कर दिया गया है। एहतियात की गिनती के लिए हिफाजती इंतजाम भी सख्त किए जा रहे हैं। इस काम के लिए अब खुसूसी अमले की खिदमत हासिल की जाएगी। माहौलियात के तहफ्फुज के लिए रियासती हुकूमत कल शजरकारी महायज्ञ 2026 का इनेकाद करेगी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के करीब एक पौधा लगाकर तकरीब का आगाज करेंगे। नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य झांसी में पौधा लगाएंगे और ब्रजेश पाठक लखनऊ में पौधा लगाएंगे। एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत रियासती हुकूमत ने 35 करोड़ पौधे लगाने का हदफ रखा है। मुतअद्दी अमराज पर काबू पाने की मुहिम के तौर पर रियासत भर में आज से 31 जुलाई तक दस्तक मुहिम चलाई जाएगी। इस मुहिम के तहत महकमा सेहत की टीमें घर घर जाकर मौसमी बीमारियों और दीगर बीमारियों की अलामत और उनसे बचाव के बारे में आगाही फराहम करेंगी। आज आबादी का आलमी दिन है। ये दिन हर साल 11 जुलाई को आबादी में इजाफे से मुंसलिक चैलेंजों और मवाक़े के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए मनाया जाता है। इसका मकसद आबादी से मुतालिक मसाइल पर तवज्जो मरकूज करना और पायदार तरक्की के लिए कोशिशों की हौसला अफजाई करना है। इस साल आबादी के आलमी दिन का थीम है आज और मुस्तकबिल के लिए नौजवानों की उम्मीदों और उमंगों का इदराक। रियासत के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिश की वजह से जानों और मवेशियों के नुकसान के वाकयात का नोटिस लेते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अहकाम दिए हैं कि 24 घंटे के अंदर नुकसान का अंदाजा लगाने और मुआवजा फराहम करने की हिदायत है। वजीर आला ने तमाम आला हुकाम को इलाके का दौरा करने और मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत की है। मानसून की बारिश की वजह से रियासत के कई अजला में नदियों की सतह बढ़ने लगी है। एक रिपोर्ट।
1: राज्य में लगातार हो रही बारिश के चलते लखीमपुर खीरी के पलियाकला में शारदा नदी खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। वहीं कुशीनगर में गंडक नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। उधर बिजनौर बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण अमरोहा में खादर क्षेत्र के गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। क्षेत्र की कई बीघा फसलें जलमग्न हो गयी है। अमरोहा के जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ ने बताया कि गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क है और सुरक्षा के सभी उपाय कर लिए गए हैं। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नष्ट किया जाएगा।
2: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर ऐप पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोता, अब समय है कार्यक्रम पनघट का।

और राम राम मेरी प्यारी बहनों, खेतों में धान की हरियाली और बादलों की गड़गड़ाहट, घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की शैतानियां, भाई इन सब के बीच स्वागत है आप सभी का आपके अपने साप्ताहिक कार्यक्रम पनघट में। और मैं हूं आपकी प्यारी बहन सोमा जैन। वैसे जुलाई का महीना है, रिमझिम फुहारे पड़ रही हैं और हमारी सब बहनें घर के कामकाज के साथ साथ खेतों में धान की रुपाई में जुटी हुई हैं, है ना भाई। पैरों में कीचड़, माथे पर पसीना, लेकिन दिल में तो बस एक ही उम्मीद है हम सब के, और वो उम्मीद है अच्छी फसल की। और ये उम्मीद खत्म कर देती है हमारी सारी थकान को। जैसे हम हर साल धान का सबसे अच्छा बीज चुनते हैं ताकि फसल लहराए, ठीक वैसे ही बहनों हमारे घर की बिटिया भी हमारे आंगन का वो बीज है जिन्हें अगर शिक्षा का पानी मिल जाए तो पूरा परिवार तरक्की की छा

पाता है। तभी तो हम कहते हैं कि बेटी की शिक्षा परिवार की सबसे बड़ी पूंजी है। बहनों, आज भी अक्सर ये सोचा जाता है कि लड़की तो पराया धन है, इसे तो दूसरे घर जाना है, चूल्हा चौका ही संभालना है, तो भला इसे पढ़ाकर क्या फायदा। लेकिन जरा रुकिए और अपनी सोच को बदलिए। लड़का हो या लड़की, दोनों ही आपके गर्भ से ही तो पैदा हुए हैं, इस संसार में आए हैं। ये तो सिर्फ सामाजिक रीति रिवाज है कि लड़की ब्याह कर दूसरे घर को संभालती है, पर प्रेम तो उसको आप उतना ही करते हैं जितना अपने बेटे को करते हैं। फिर भला ऐसी सोच क्यों? वैसे भी आज के समय में

ऐसी सोच क्यों? वैसे भी आज के समय में बिना पढ़े लिखे कोई काम नहीं चलता। बैंक जाना हो, राशन लाना हो, मोबाइल पर कोई मैसेज देखना हो, आज हर मोड़ पर पढ़ाई की जरूरत है। यदि पढ़ाई रूपी धन ना हो तो जिंदगी में उसके अभाव से तकलीफें तो जरूर होंगी, और बेटी परेशान हो ये तो आप कभी नहीं चाहेंगे। बहनों, अगर हमारी बेटी पढ़ी लिखी होगी तो वो सिर्फ रसोई नहीं संभालेगी, बल्कि विपत्ति के समय अपने पति, अपने पिता और अपने बच्चों का सहारा भी बनेगी। आज गांव-गांव की बेटियों पढ़ लिख कर खेती किसानी के नए तरीके सीख रही हैं, डेयरी फार्म चला रही हैं और खुद के पैरों पर खड़ी हो रही हैं। ध्यान रखो, बेटी की पढ़ाई पर किया गया खर्च कोई नुकसान नहीं, बल्कि वो एक पूंजी है जो जिंदगी भर मुनाफा देती है। बहनों, जुलाई का महीना सिर्फ रुपाई का नहीं है, बल्कि गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल में दाखिले का भी महीना है। आज हमारी सरकार बेटियों के लिए बहुत सारी सुविधाएं दे रही है, जैसे मुफ्त शिक्षा, सरकारी स्कूलों में 8वीं कक्षा तक पढ़ाई और किताबें बिल्कुल मुफ्त हैं। स्कूल जाने के लिए कई जगह बेटियों को साइकिल और दोपहर का पौष्टिक खाना, जिसे हम मिड डे मील कहते हैं, दिया जाता है। कई योजनाओं के माध्यम से आगे की पढ़ाई में भी बेटियों को पढ़ाने के लिए, उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए, कौशल विकास से उन्हें विकसित करने के लिए धन दिया जाता है, उन्हें जोड़ा जाता है। और हाँ, यदि आप अपनी बेटी के नाम डाकघर या बैंक में खाता खुलवाते हैं और उससे में थोड़ा थोड़ा पैसा करते हैं जमा, तो बेटी की शादी या ऊंची पढ़ाई के लिए एक बड़ा फंड आपको मिलता है जब आपको ज़रूरत होती है। तो सरकार ऐसी कई योजनाएं चला रही है जिससे, जिसका मकसद सिर्फ यही है कि हमारी जो बेटियां हैं वो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हूँ। तभी तो देखो, हमारी जो बेटियां दूर स्कूल होने के कारण स्कूल नहीं जा पाती, उनके लिए रहने और खाने की मुफ्त सुविधा वाले आवासीय स्कूल, जिन्हें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के नाम से जाना जाता है, वो भी आज सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। इसलिए अब ये कहना कि बेटी की शिक्षा के लिए पैसा नहीं है, सिर्फ एक बहाना है, क्योंकि सरकार आपकी मदद कर रही है। आपको तो बस एक कदम आगे बढ़ाना है, अपनी लाडली को हाथ पकड़ के उसे स्कूल की चौखट तक पहुंचाना है। यदि ऐसा नहीं किया तो फिर पक्का आपको भी अपनी बेटी से एक दिन अपनी गलती किया एहसास होने पर यही कहना होगा कि बेटी, खता मेरी माफ़ करो।

0: तो बहनों, ऐसी माफ़ी किसी भी पिता या माँ को बेटी से ना मांगनी पड़े, इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने घर की हर बेटी को शिक्षा ज़रूर दिलाएं। वैसे बहनों, कई बार हमारे घरों के आसपास या फिर हमारे पड़ोस में भी और या फिर हमारे खुद के अपने घर में भी ऐसी बेटियां या बेटे भी होते हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं। समाज अक्सर उन्हें बोझ समझने लगता है, लेकिन बहनों याद रखो, शारीरिक अक्षमता कोई अभिशाप नहीं है, ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक अलग तरह की शक्ति है। भगवान ने अगर किसी के लिए एक रास्ता बंद कर दिया है तो उनके भीतर प्रतिभा के 100 नए रास्ते खुले हैं, और ये सच है, ऐसा होता है। ऐसे बच्चों ने साबित भी किया है कि हौसले कभी बैसाखियों के मोहताज नहीं होते। बस ज़रूरत है तो हमारे विश्वास की, हमारे सहारे की और सबसे बढ़कर शिक्षा की। अगर हौसले बुलंद हैं तो शारीरिक अक्षमता कोई अभिशाप नहीं है। चलिए इस बारे में आज विचार सुनते हैं हमारी वार्ताकार रीटा भट्टाचार्य के।
1: हम आज उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिनका जीवन हम सबको एक ही अर्थ सिखाता है।

मानवता का, जो बिना किसी लालच के प्रेरणा देता है। आज शारीरिक अक्षमता एक अभिशाप नहीं, इन्हीं प्रेरणा भरी बातों से हम कुछ ऐसे मनुष्यों को समझे, जाने और सीखे। इन्हीं व्यक्तियों से जो शारीरिक रूप से सक्षम ना होते हुए भी हम आपसे मनोबल से, मन से दृढ़ संकल्पी होते हैं, सभी कार्यों को करने के लिए उत्साहित रहते हैं और समाज के हर क्षेत्र में अपना वर्चस्व बनाए रखे हुए हैं। माउंट एवरेस्ट चोटी पर पहुंचने वाली अरुणिमा सिन्हा ने भी शारीरिक रूप से असक्षम होते हुए भी उन्होंने अपना मनोबल कभी गिरने नहीं दिया, अपने देश का परचम फैलाकर लोहा मनवाया कि मनुष्य तन से कमजोर होता है, मन से नहीं। उसकी इच्छा शक्ति ही दृढ़ संकल्प का एकमात्र साधन है। वह चाहे तो किसी भी क्षेत्र में अपना परचम अवश्य फहरा सकता है। प्राचीन समय में व्यक्ति का शारीरिक रूप से असक्षम होना अभिशाप माना जाता था, मगर आज समाज में शारीरिक अक्षमता अभिशाप नहीं है, क्योंकि सरकार द्वारा, निजी संस्थाएं, चाहे वह गैर सरकारी संगठनों द्वारा हो या ऐसी समितियां भी गठित कर दी गई हैं, जिसमें बच्चों का और इस प्रकार के व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास हो, इनके द्वारा वह कोशिश की जाती है जिससे बच्चा हो या मनुष्य, उनका पूर्ण रूप से विकास हो और उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाया जाए, ताकि वह किसी के ऊपर आश्रित ना हो, स्वयं शिक्षित भी हो, रोजगार युक्त भी हों और आत्मनिर्भर भी हों। चाहे वह MR, CP, HI, VI आदि से ग्रसित हो। यह MR, CP, HI, VI उन श्रेणियों के सूक्ष्म नाम हैं, जिनमें वर्गीकृत करके, उनकी पहचान करके, उन्हीं के अनुरूप हम इनकी चिकित्सा पद्धति को हम श्रेणियों में बांटते हैं और उन्हें सक्षम बनाते हैं, आत्मनिर्भर कर सके ऐसा हम प्रयास करते हैं। MR इंग्लिश में मेंटली रिटार्डेड, अर्थात दिमागी तौर से कमजोर। ऐसे व्यक्ति जिनका दिमाग एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह कार्य तो नहीं करता, ऐसे व्यक्ति के साथ हमें धैर्यता पूर्वक और सहनशीलता के साथ कार्य करना पड़ता है। इसकी दूसरी श्रेणी में CP, जिनको हम इंग्लिश में सेरिब्रल पैरालिटिक, इसे हम हिंदी भाषा में ऐसे कह सकते हैं परामस्तिष्क पक्षाघात, ऐसे व्यक्तियों का इलाज फिजियोथेरेपी के द्वारा किया जाता है, जिसमें व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम बनाया जाता है। फिजियोथेरेपी डॉक्टर द्वारा शारीरिक व्यायाम एवं मस्तिष्क में रक्त संचार का प्रवाह हो, उन्हें कुछ इक्विपमेंट्स के द्वारा विशेष जगहों पर उनकी थेरेपी की जाती है, ताकि नसों का संचालन पूर्ण रूप से हो सके और व्यक्ति को लाभ हो। इसी तरह इसकी तीसरी श्रेणी में HI, जिसको इंग्लिश में हेयरिंग इम्पेयर्ड, अर्थात सुनने की क्षमता जिसमें ना हो, ऐसे मनुष्यों को इशारों द्वारा, हाथों के हाव भाव द्वारा अपनी बातों को किसी के समक्ष प्रस्तुत करने की क्षमता को सिखाया जाता है। इसी तरह आगे की श्रेणी में हम VI विजुअल इम्पेयर्ड, अंग्रेजी में जिसे कहा जाता है, अर्थात इसमें व्यक्ति को दिखाई नहीं देता, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कि अंधापन का शिकार होता है, उसे धुंधला भी दिखाई दे सकता है और ना भी दिखाई दे सकता है, ऐसे व्यक्ति को ब्रेल लिपि द्वारा, और जिसको हम टच आर्ट भी कह सकते हैं, यानी छूने की कला के द्वारा भी एहसास करवाते हैं, ताकि वह महसूस कर सके कि क्या उसने छुआ है। इस कला के माध्यम से उसे वस्तुओं को और इंसान को परखने और समझने की क्षमता का आभास करवाया जाता है, ताकि वह किसी गलत और किसी सही का अंदाजा कर सके, फैसला ले सके कि क्या इस व्यक्ति को छूकर या इस वस्तु को छूकर मैं सही तो कर रहा हूँ। सामने वाले की भाषा को और उनके मन की बात को भी वो पढ़ लेता है आसानी से। ऐसे व्यक्तियों को कम दिखाई देना या ना के बराबर दिखाई देना, दोनों ही व्यक्ति आते हैं। ऐसे व्यक्ति छूकर या आभास कर लेते हैं और सामने वाले की मन की बातों को अपने अंदर उकेर लेते हैं कि वह व्यक्ति उससे क्या चाहता है। इसमें इंक्लूसिव सेटअप, अर्थात ऐसे इक्विपमेंट्स भी होते हैं जो जल्द ही दूसरे की भाषा, मन की बातों को समझ लेना, वस्तु को छूकर उनके आकार के बारे में बता देना या उनके रंगों के बारे में व्याख्यान कर देना, यह सब इसी श्रेणी में आते हैं। अगर हम
विस्तार में जाएं तो ऐसी बहुत

0: से संस्थाएं विद्यालय हैं जो सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए कार्य करती है ताकि यह किसी के मोहताज ना हो सके, किसी के ऊपर ये निर्भर ना हो, आत्मनिर्भर बन सके, स्वयं अपना भरण पोषण कर सके, इन्हें किसी के सहारे की जरूरत ना हो, किसी के ऊपर इन्हें ना निर्भर रहना पड़े। इन्हें इतना सक्षम बनाया जाता है और शारीरिक मानसिक रूप से इन्हें इतना मजबूत बनाया जाता है ताकि ये समाज इन्हें अपनाए, ना कि इनकी अवहेलना करे, इनका तिरस्कार ना करे। इनमें जज्बा होता है आसमान को छूने का, बुलंदी पर चढ़ने का, लेकिन क्या हम इनका साथ देते हैं? यह किसी ने सच ही कहा है कि जो दृढ़ निश्चय है वही मंजिल स्वयं ही बना लेता है, उन्हें किसी की परवाह नहीं होती, क्योंकि वह आत्मबल से कमजोर नहीं, मन से कमजोर नहीं, मनोबल तो ऊपर है उनका, ताकत इनकी आत्मनिर्भरता है, सक्षम है और सक्षम नहीं। ऐसे व्यक्ति स्वावलंबी पराकाष्ठी होते हैं और ये निश्चय रूप से समाज में अपना आगे बढ़ते हुए परचम फैलाते हैं। आज ऐसे बच्चों को और ऐसे व्यक्तियों को समाज अपने साथ बैठने देता है, समझने की कोशिश करता है कि वो व्यक्ति क्या चाहता है या वो बच्चा क्या चाहता है, तिरस्कार नहीं किया जाता है। कई माध्यमों के द्वारा आज उनको भी आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ उनके मनोबल को ऊंचा करने के लिए भी माता पिता अर्थात अभिभावक भी बहुत अपना महत्वपूर्ण स्थान निभा रहे हैं और आज समाज भी ऐसे व्यक्तियों को अपने जगह जगह पर पुरस्कृत करता है और समाज द्वारा कई जगह पर मेला भी लगाया जाता है जिसमें ये अपनी अभिव्यक्तियों को व्यक्त करते हैं। उन मेलों में इनके द्वारा बनाई गई वस्तुएं, बनाई गई चीजें होते हैं। देखा जाए तो सच्चे मायनों में आज इनको देखकर वास्तव में हमारे अंदर भी कुछ कर गुजरने की इच्छा कायम होती है, क्योंकि कई जगह पर हम लोग सोच नहीं पाते, उनकी सोच वहाँ तक पहुँच जाती है। कई वस्तुएं भी वो इतनी सुंदर बनाते हैं, उनकी कला भी देखी जाती है, तो वो उसमें भी वो इतने निपुण होते हैं, गाने, डांस, नाचना, उनमें भी इन लोगों का आत्मबल इतना ऊंचा होता है कि सरकार, प्राइवेट संस्थाएं, उनमें भी ऐसे व्यक्ति जो असक्षम है, शारीरिक रूप से वो सक्षम नहीं है हमारी तरह, लेकिन फिर भी वो डांस के क्षेत्र में भी अपना लोहा मनवा रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को, उन बच्चों को देखकर, उन प्रतिभाओं को देखकर हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए।
1: तो बहनों, अभी आपने सुना कि यदि कोई बच्चा शारीरिक रूप से अक्षम है तो ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए और उन्हें पढ़ने लिखने का मौका देना चाहिए और वो जो सपने पूरे करना चाहें उन सपनों में उनका साथ देना चाहिए। इसी विषय पे अभी हमने वार्ता सुनी रीता भट्टाचार्य से। अभी और भी बातें करेंगे कार्यक्रम में आपसे, पर फिलहाल लेते हैं छोटा सा विराम।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: बहनों, आप सुन रही हैं आपका अपना पसंदीदा साप्ताहिक कार्यक्रम पनघट, और मैं हूँ आपकी बहन सोमा जैन। भाई, आज कार्यक्रम में हमने बहुत सारी बातें करी। हमने बात करी कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, और अगर बेटियों की शिक्षा की बात करें तो वो सबसे बड़ी पूंजी है। हमने बात करी कि शारीरिक अक्षमता कोई अभिशाप नहीं है, ज़रूरत है तो बात सिर्फ उनके समझने की और उनका साथ देने की। भाई, इन सब बातों के साथ साथ सबसे ज़रूरी बात करना तो अभी बाकी है। जी हाँ, सबसे ज़रूरी बात यानी कि हमारी अपनी रसोई की बात। तो चलो, इसी बात पे सीधे चलते हैं आपकी रसोई की तरफ और जानते हैं आज हम कार्यक्रम में क्या बनाना सीखने वाले हैं। साथियों, बहनों, आज हम आपको पालक की मिस्सी रोटी किस तरह बनाएं इसकी विधि बताते हैं। लेकिन सबसे पहले उठा लीजिए अपनी कलम और अपनी डायरी और लिख

लीजिए इसमें काम आने वाली जो सामग्री है। पालक मिक्स मिस्सी रोटी बनाने के लिए बहनों हमें चाहिए 2 कप बेसन, 1/4 कप पालक का मिश्रण, 1 बड़ा चम्मच तेल, 1 प्याज ये मध्यम आकार की हो, 3/4 कप गेहूं का आटा, 1 छोटा चम्मच हरी मिर्च, ये हरी मिर्च बारीक कटी हुई हो, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और ऊपर से लगाने के लिए मक्खन और साथ में चाहिए नमक। और वो कितना चाहिए? स्वाद अनुसार, भाई ये तो आप सभी जानती हैं। चलिए ये थी सामग्री, अब इसे बनाना कैसे है ये जान लेते हैं। सबसे पहले हमें जो घर में अगर आपके गैस ओवन जो होता है ना तंदूर अगर वो हो और उसमें आप इसे बनाएंगी तो बहुत ही ये स्वादिष्ट लगती है और अच्छी भी लगती है। और अगर तंदूर नहीं है तो आप सादे तवे पे भी इसे बना सकती हैं। तो अगर तंदूर है तो उसकी जो सतह है उस पर थोड़ा सा तेल लगा के रख दीजिए ताकि रोटी का आटा चिपके नहीं, ठीक है। और अगर तवा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलिए अब इसके आगे हमें क्या करना है, हमें प्याज को बारीक काट लेना है। अब एक बड़े बर्तन में हमें गेहूं का आटा लेना है और उसमें बेसन, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, नमक, चाट मसाला, प्याज, पालक का जो हमारा मिश्रण है और थोड़ा सा तेल डालकर उसे अच्छी तरह मिला लेना है। अब हमें मुलायम आटा गूंथ लेना है। इससे गूंथे हुए आटे की छोटी छोटी लोइयां हमें बनानी है और हर लोई को सूखे आटे में लपेट लेना है। एक हथेली पे थोड़ा सा तेल लगाना है और दूसरी हथेली को पानी से गीला करें। फिर हथेली की सहायता से मध्यम आकार की रोटियां तैयार कर लें। जी हाँ, ये रोटियां जो हैं वो अपने हाथों से बनाएं, बेलन से नहीं, तभी तो उनका स्वाद और अच्छा हो जाएगा। फिर इन रोटियों को गरम तंदूर पर रखें और ढक्कन लगाकर इन्हें पका लें। अगर तंदूर नहीं है तो हमने जैसे पहले कहा, आप चाहे तो तवे पर इन्हें पका लें। एक तरफ से अच्छे से जब ये सिक जाए तो पलट दें और दूसरी तरफ तक भी सुनहरा होने तक पका लें। जब रोटी दोनों तरफ से सिक जाए, पक जाए, तो तैयार रोटी पर आप मक्खन लगाएं और गर्मा गर्म किसी भी सब्जी से दाल के साथ तेरे से परोस दें। भाई गर्मियों में सब्जियों का बड़ा रोना होता है, क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं। तो ऐसे में अगर रोटी को आप थोड़ा सा बदल देंगे और हमारी ये पालक मिक्स मिस्सी रोटी बना के दाल के साथ देंगी तो उस दिन बहुत सारी तारीफ तो पाएंगी। बरसात का मौसम चल रहा है भाई और बरसात में खाने पीने का अलग ही मज़ा होता है, तो बरसात के मौसम में इस रोटी को ज़रूर बनाइएगा। वैसे बरसात आते ही ना हवा में नमी बढ़ जाती है, इसका सीधा असर ज़्यादातर हमारी रसोई में जो हमारे मसाले होते हैं ना उस पर भी पड़ता है। हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, गरम मसाला और जीरा जैसे मसाले अक्सर सील जाते हैं, उसमें गुठलियाँ बन जाती हैं और उनका स्वाद भी कम हो जाता है। तो भाई इसके लिए क्या करें, इसके लिए हमारी दादी जी बहुत अच्छे से उपाय बताती हैं। वो कहती हैं मसाले ख़राब ना हो इसके लिए ज़रूरी है कि हम गीली चम्मच या हाथ लगाने से मसालों में बचें, क्योंकि हमारे हाथ की नमी या गीली चम्मच से भी मसाले खराब हो जाते हैं। सूखी चम्मच का ही उपयोग करें ताकि मसालों में नमी ना पहुँचे। और हाँ, हो सके तो मसालों में लौंग डाल कर रखें, इससे भी बहुत सारा फ़ायदा होता है, मसालों में नमी से बचत होती है। तो भाई बरसात में कुछ भी हो, चाहे हमारी टूटी झुपड़ियाँ में पानी टपके, मसाले बचे रहेंगे, बस गुनगुनाती रहिएगा आप कुछ

तो बहनों बरसात में रखें थोड़ा सा ध्यान और लेते रहे बरसात का आनंद। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी कार्यक्रम में आपसे, तब तक के लिए राम राम बहनों।

आकाशवाणी के आगरा केंद्र से अभी आप सुन रहे थे हमारी ग्रामीण बहनों का कार्यक्रम पनघट, और अब समय है कार्यक्रम सुगम संगीत का। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं कमाल खान की आवाज में कुछ गजलें। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली पेशकश।

इसी गजल के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब संपन्न होता है। श्रोता, दोपहर के 2 बजने को है। अब आप सुनेंगे मिड डे न्यूज, तत्पश्चात हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, मैं आज आपसे एक आग्रह भी करना चाहता हूं, करूं? हां कहने में क्या जाता है। हमने कुछ समय पहले हमारी इंडियन डायस्पोरा के बच्चों के लिए एक नया प्रयोग किया है। हमारे बच्चे भारत को समझें और भारत की विविधता की बात दुनिया तक पहुंचे, इसके लिए हमने भारत को जानो क्विज इसकी शुरुआत की है। अभी इसका कर्टेन रेजर ही हुआ है और हमारे साथियों ने इसमें ही जिस एनर्जी से पार्टिसिपेट किया है, मैं वही देखकर बहुत प्रभावित हूं।
1: Defense Minister Rajnath Singh has said today that India is building a strong, self-reliant and future-ready defense force by strengthening both conventional defense capabilities and advanced technologies. He said future wars may employ artificial intelligence and other emerging technologies, but they will ultimately be won by national resolve, courageous soldiers and capable military power. The defense minister said technology and conventional military strength complement each other and India is committed to excelling in both under the vision of Atmanirbhar Bharat. Mr. Rajnath Singh was addressing the commissioning ceremony of the INS Mahendragiri, the sixth project 17A indigenous stealth frigate into the Eastern Fleet at Visakhapatnam today. He said the commissioning marks another milestone in strengthening India's maritime power and indigenous defense capability.
2: मल्टी फंक्शन राडार के साथ
3: इट हैज अ लॉन्ग रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल कॉम्बिनेशन विद अ मल्टी फंक्शन राडार दैट कैन डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय एनी थ्रेट कमिंग फ्रॉम द स्काई फ्रॉम अ डिस्टेंस एंड इट हैज एन इंडिजीनियस रॉकेट लॉन्चर टॉर्पेडो लॉन्चर्स एन इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम एन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट एंड अ क्लोज इन वेपन सिस्टम टू दीज ऑल थिंग्स मेक INS महेंद्रगिरी एज इनविंसिबल एंड स्ट्रॉन्ग एज द महेंद्रगिरी माउंटेन
2: महेंद्रगिरी पर्वत के समान ही भेद और मजबूत बनाती है।
1: Union Home Minister Amit Shah has appealed to the younger generation to connect with libraries, highlighting their significant role in shaping an individual's personality. Inaugurating the Jayaprakash Narayan Public Library in New Delhi today, Mr. Shah said that Lok Nayak Jayaprakash Narayan was a great freedom fighter, thinker and national leader who made remarkable contributions to the country. He emphasized that reading is essential for understanding the country and its people. Highlighting the role of libraries in nation building, the Home Minister said they are a powerful medium for spreading country's culture and knowledge among the masses along with modern education.
4: राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाली
5: द फाउंडेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज दैट एडवांस द नेशन कम्स फ्रॉम

0: 4. Spain secured a thrilling 2-1 victory over Belgium to advance, while France progressed with a comfortable 2-0 win over Morocco. The winners of tonight's quarterfinals will complete the semi-final lineup of the FIFA World Cup 2026. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and New Zealand elevates ties to strategic partnership, set to double bilateral trade to 35,000 crore rupees by 2030. Prime Minister Narendra Modi says Indian community across New Zealand is a vital part of the shared journey among two nations, addresses Indian diaspora in Auckland. Defence Minister Rajnath Singh commissions indigenous stealth frigate INS Mahendragiri, says India building a strong, self-reliant and future-ready defence force. BRICS Ministerial Declaration 2026 adopted to strengthen technological and innovation-driven cooperation in transport sector. Typhoon Bavi forces flight cancellations and school closures in Japan and Taiwan. India to face England in fifth and final T20 international in Southampton, England this evening. And in FIFA World Cup, Norway to take on England in Argentina to face Switzerland in quarterfinals tonight. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया, कहा न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरी का जलावतरण किया, कहा भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 को अपनाया गया। बावी तूफान के कारण जापान और ताइवान में उड़ानें रद्द और स्कूल बंद। भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में खेला जाएगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। ऑकलैंड में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
2: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
1: इससे पहले दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा।
3: आज हमने इंडो पैसिफिक में मैरिटाइम कोऑपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति बनाई है। बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज, लॉजिस्टिक सपोर्ट और हाइड्रोग्राफी में सहयोग से हमारा आपसी तालमेल बढ़ेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए भी सहमत हुए हैं।
3: वैश्विक मंच पर भी भारत और न्यूजीलैंड भरोसेमंद साझेदार और करीबी मित्र है। हमारा मानना है कि वर्तमान समय की चुनौती

0: चुनौतियों का सामना करने के लिए यूएन सहित अन्य वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म आवश्यक है। आतंकवाद के विषय पर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने के लिए आज हमने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का गठन किया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश खेल संबंधों की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
0: 100 साल पहले

0: सौ साल पहले मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में हॉकी टीम ने यहां आकर जो इतिहास रचा था वह हमारी खेल साझेदारी को आज भी प्रेरित कर रहा है। इस उपलक्ष्य पर हम दोनों देशों में कई स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित कर रहे हैं। क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेलों में भी सहयोग बढ़ाने के लिए हमने स्पोर्ट्स ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का महत्वपूर्ण आधार है। ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के संबंध साझा विरासत, स्थायी मित्रता, समान लोकतांत्रिक मूल्यों और उज्ज्वल भविष्य के साझा संकल्प पर आधारित हैं।
0: हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रहे हैं। न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया था। भारत भी आज विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ महिलाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि ऑकलैंड से वेलिंगटन और क्राइस्ट चर्च से क्वींसटाउन तक भारतीय समुदाय ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
0: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम हैं। यहां रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
1: इस अवसर पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते से न्यूजीलैंड के निर्यातकों को भारत के विशाल बाजार तक पहुंच मिलेगी और न्यूजीलैंड में भारतीय कारोबार के लिए नए अवसर खुलेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17 इकाई युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को सुदृढ़ करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। श्री सिंह ने कहा कि आईएनएस महेंद्र गिरी में 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है, इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी।
2: आईएनएस महेंद्र गिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें आईएनएस महेंद्र गिरी को महेंद्र गिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 अपनाई गई है। बैठक ब्राजील, चीन, मिश्र, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात के परिवहन मंत्रियों ने अपने विचार साझा किए। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत दो दिन की ये बैठक आज से नागपुर में शुरू हुई। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जय प्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकें

0: व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्री शाह ने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जयप्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
1: किशोरों ने और युवाओं ने अपने रुचि के विषय छान लेने चाहिए और सुने सुनाए ज्ञान की बगैर हमारे रुचि के विषय में जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया है, जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया है, ऐसे लोगों ने जो अपने अनुभव, अपने विचार, अपना चिंतन और चिंतन की व्यवहारिता जो पुस्तकों में अंकित की है उसको पढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा मौका है दिल्ली के युवाओं के लिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट 32,000 पुस्तक और 1 करोड़ ई बुक का एक्सेस है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हैदराबाद को प्रमुख हाई स्पीड रेल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर हैदराबाद को पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु से जोड़ेगा। हैदराबाद में श्री वैष्णव ने कहा कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क से यात्रा में लगने वाले समय में कमी आएगी और दक्षिण भारत में रेल संपर्क मजबूत होगा। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। विश्व जनसंख्या दिवस पर उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व है। उन्होंने कहा कि अभियान का नारा जब बच्चों में हो सही अंतराल, परिवार बने स्वस्थ और खुशहाल, गुणवत्तापूर्ण परिवार नियोजन सेवाओं तथा जागरूक प्रजनन संबंधी निर्णयों के महत्व को दर्शाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जापान के दक्षिणी द्वीपों में आज तूफान बावी के टकराने की खबर है। इस दौरान द्वीपों में तेज हवाएं चली और मूसलाधार बारिश हुई। लगभग 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ तूफान बावी के कल तड़के चीन के झेजियांग प्रांत में टकराने का अनुमान है। इस तूफान के कारण जापान के ओकिनावा प्रांत में 200 से अधिक उड़ानें रद्द की गईं। ताइवान में स्कूल और सरकारी कार्यालय भी बंद रहे। इस बीच चीन ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश ने बताया कि अल नीनो के कारण देश में मॉनसून की बारिश सामान्य से कम हुई है।
2: आज के लिए हमारा असम मेघालय के लिए रेड अलर्ट भी है, वहाँ हम 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं। ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, सब हिमालय में बंगाल, सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो रेनफॉल एक्टिविटी है आने वाले 4 से 5 दिन कंटिन्यू रहेगी और नॉर्थ पंजाब, नॉर्थ हरियाणा में आज हैवी रेनफॉल हो सकती है। अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें, बाई इवनिंग और लेट इवनिंग हल्का फुल्का रेनफॉल हो सकता है।
0: सिक्किम एक बार फिर देश का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरा है। प्रति व्यक्ति आय के नवीनतम विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 6,46,000 रुपए से अधिक रही। ये राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना है। देश की कुल आबादी में सिक्किम की हिस्सेदारी केवल 0.05% है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: सिक्किम एक बार फिर भारत का सबसे समृद्ध राज्य प्रति व्यक्ति आय के आधार पर घोषित हुआ है। बिजनेस स्टैंडर्ड की कल प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सिक्किम के एक औसत निवासी की आय बिहार के एक औसत निवासी की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा है। पिछले 10 वर्षों से शीर्ष 4 स्थानों पर सिक्किम, गोवा, दिल्ली और चंडीगढ़, जबकि सबसे निचले स्थानों पर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर लगातार बने हुए है। मानस प्रतिम शर्मा के साथ मोइनाक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम 7 बजे साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। माइया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इससे पहले कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 83, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 58 और दीप्ति शर्मा ने 57 रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में कल सुबह 6:30 बजे

0: वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इससे पहले स्पेन और फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया। कहा, न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरी का जलावतरण किया। कहा, भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र 2026 को अपनाया गया। और भारत तथा इंग्लैंड के बीच पांचवा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर ऐप पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। दोपहर के 2:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसमें आज की पहली प्रस्तुति में आइए सुनते हैं पंडित भीमसेन जोशी का राग भैरवी में ठुमरी गायन।

अभी आप सुन रहे थे पंडित भीमसेन जोशी का राग भैरवी में ठुमरी गायन। कार्यक्रम की अगली और अंतिम प्रस्तुति में आइए सुनते हैं बेगम परवीन सुल्ताना का राग भैरवी में ठुमरी गायन।

अभी आपने सुना बेगम परवीन सुल्ताना का राग भैरवी में ठुमरी गायन। इसी के साथ कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, अब समय है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का।

कार्यक्रम की पहली पेशकश थी मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म आदमी से, नौशाद की धुन थी। अगला गीत है फिल्म अनाड़ी से, लता मंगेशकर और मुकेश के युगल स्वर हैं। शैलेंद्र की रचना को संगीत में ढाला है शंकर जयकिशन ने।

आशा भोसले और महेंद्र कपूर को आपने सुना फिल्म वक्त में। साहिर लुधियानवी के बोल थे रवि की धुन। इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब संपन्न होता है।

कुमार सानू को आपने सुना फिल्म मिस्टर बेचारा में। अगला गीत है फिल्म खामोशी द म्यूजिकल से कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी का गीत है, जतन ललित का संगीत।

आशा भोसले की आवाज में यह गीत था फिल्म फिजा से, गुलजार का गीत था, एआर रहमान का संगीत। अगला गीत है फिल्म ताल से, अलका याग्निक और सुखविंदर सिंह के युगल स्वर है, आनंद बख्शी की शब्द रचना है, एआर रहमान की संगीत रचना।

कुणाल गांजावाला को आपने सुना फिल्म अनकही में प्रीतम की धुन पर बोल थे सुब्रत सिन्हा के। इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीत गुंजन अब संपन्न होता है।

4530 किलो हर्ट्स और न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस सभा के कार्यक्रमों का प्रसारण अब यहीं समाप्त होता है। सायंकालीन सभा में शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। नमस्कार।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आगरा केंद्र। स्टूडियो की घड़ी में 5 बजने को है। अब हिंदी में समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की अपनी दो दिन की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। चार दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत की। दोनों नेताओं ने रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और दुग्ध तथा पशुपालन सहित विभिन्न क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ऑकलैंड में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
1: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
0: प्रधानमंत्री ने ऑकलैंड के स्पार्क एरिना में प्रवासी भारतीय समुदाय के 10,000 से अधिक सदस्यों के कार्यक्रम में भाग लिया। प्रधानमंत्री लक्सन ने सभा को संबोधित करते हुए भारत को एक विश्वसनीय मित्र बताया। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन को उनके गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि इस यात्रा ने भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय खोल दिया है।
2: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के CEO बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम है। यहां रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जयप्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्षता करेंगी। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि लोकतंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन संविधान और जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता सर्वोपरि रहनी चाहिए। उन्होंने बिहार में गयाजी में राज्य के लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में 18वीं विधानसभा के सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट आज वियतनाम के फूकोक द्वीप के पास पलट गई। स्थानीय खबरों के अनुसार 15 लोगों के मारे जाने की आशंका है, जबकि 21 लोगों को बचा लिया गया है। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 चालक दल के सदस्यों को ले जा रही ये नाव होन में रुत नगोई द्वीप से लगभग 400 मीटर दूर पलट गई, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम 7 बजे से साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। इंग्लैंड ने श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। एक दिवसीय श्रृंखला से पहले भारत की नजर ये मैच जीतने पर रहेगी। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की सूची।

शाम 5:05 का समय रहेगा। शाम 5:10 का समय रहेगा भक्ति परक फिल्म संगीत कार्यक्रम सुर संध्या का। शाम 5:30 का समय रहेगा कार्यक्रम युववाणी का, जिसमें आज की चर्चा का विषय होगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। साथ ही होगी नेहा गोयल की वार्ता, जिसका विषय होगा जनसंख्या वृद्धि विकास में बाधक। इसके अलावा होंगे सेगमेंट्स, आइए जानें इस सप्ताह आज के हम सफर और ताकत वतन की हमसे है।

शाम 6 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम ग्राम्यालोक का, जिसमें आज की चर्चा का विषय होगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसमें आज वार्ता का विषय रहेगा खेती में लागत खर्च कम करने के उपाय, और वार्ताकार होंगे डॉक्टर धर्मवीर सिंह। इसके साथ ही होंगे सेगमेंट्स नई खोजें, मौसम, मंडी भाव और लोकगीत।

शाम 6:30 का समय रहेगा कार्यक्रम मजदूर मंडल का, जिसमें आज की चर्चा का विषय होगा कार्यस्थल पर सुरक्षा और श्रमिक जागरूकता। कौस्तुभ सिंह से आज हम करेंगे बातचीत मोबाइल से लेनदेन में सावधानी विषय पर। साथ ही होंगे सेगमेंट्स आज का प्रश्न, सेहत टिप्स, ज्ञान सागर, नई खोजें, और साथ ही आनंद लीजिएगा अपने पसंदीदा फिल्मी गीतों का।

शाम 7:10 का समय रहेगा कार्यक्रम विविधा का, जिसमें आज की वार्ता का विषय होगा मानवीय विस्तार में संतुलन तलाशती प्रकृति। वार्ताकार होंगी डॉक्टर मिथिलेश कुमार शर्मा।

शाम 7:31 का समय रहेगा कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश, जिसमें आज विश्व जनसंख्या दिवस पर केंद्रित होगी आज की काव्य गोष्ठी, जिसका विषय होगा संख्या संवाद, जिसमें आज के प्रतिभागी होंगे डॉक्टर शेषपाल सिंह शेष, सुरेंद्र सिंह वर्मा सजग, सतेंद्र सिंह निर्झर और वे प्रकाश मणि। साथ ही इसमें संचालन होगा मुकेश कुमार उपाध्याय का। रात्रि 8 बजे का समय रहेगा फिल्मों से भजनों के कार्यक्रम भजन संध्या का।

रात्रि 8:30 का समय रहेगा चित्रपट संगीत का। रात्रि 9:30 का समय रहेगा संस्कृत रेडियो पत्रिका संस्कृति भारती का, जो अनुप्रसारित होगी हमारे दिल्ली केंद्र से। रात्रि 10:00 का समय रहेगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम का, ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं हमारे दिल्ली केंद्र से। इसी के साथ हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की सूची यहीं संपन्न होती है। मीडियम

196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरसंध्या, जिसमें आज हमने सबसे पहला गीत लिया है फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों से। आवाजें हैं सोनू निगम, सुखविंदर सिंह और साथियों की। समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है अनु मलिक ने।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म चार धाम से, हरिहरन की आवाज में। उदय शंकर पानी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है सुरेंद्र कोहली ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने दिया है फिल्म द बर्निंग ट्रेन से, सुषमा श्रेष्ठ, पद्मिनी कोल्हापुरे और साथियों की आवाज में। साहिर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन ने।

श्रोताओं, आज का कार्यक्रम सुर संध्या यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, कुछ सोच की सरगम, कुछ सपनों का सांस, कुछ उम्मीदों की धुन, कुछ विश्वास की आवाज, इन्हीं सुरों को लेकर आता है आपके साथ रोज कार्यक्रम युववाणी। और आज मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी रेडियो वाली दोस्त कनिका सिंह। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, खुश और अपनी मुस्कुराहट के साथ हमें सुन रहे होंगे। चलिए इसी मुस्कुराहट के साथ हम आपसे पूछ लेते हैं आज का सवाल। दोस्तों, आज का सवाल है, विश्व में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? सोचिए, मनन कीजिए, इसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी सी देर के बाद। वैसे दोस्तों, इन दिनों मौसम के भी कुछ अलग ही मिजाज हैं, कभी तेज़ धूप तो कभी ठंडी हवा, और फिर बादल आकर मौसम को सुहाना बना देते हैं। और ऐसे सुहाने मौसम में चाय पकौड़े साथ में मिल जाएं, फिर तो बस मज़े ही आ जाए। दोस्तों, मज़े ज़रूर कीजिएगा, लेकिन सेहत पर खास ध्यान ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इस मौसम में कई बीमारियां सक्रिय हो जाती हैं। कल ही मेरी एक सहेली ने मुझे बताया, उनकी माँ को डेंगू हो गया था, तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जब 3 दिन बाद उन्हें डिस्चार्ज मिला तो हॉस्पिटल के बिल को देखकर मन में घबराहट सी हुई, क्योंकि हम सभी जानते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में स्वास्थ्य सेवाएं महंगी होती हैं। फिर उन्होंने कहा, अच्छा है कि हमारे पास आयुष्मान कार्ड है, जिसको दिखाने से उनका बिल काफ़ी हद तक कम हो गया, यानी कि ईजी टू अफोर्ड हो गया। दोस्तों, कितनी राहत और तसल्ली होती है ना ये देखकर कि हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों के लिए आसान और सुलभ बनाने की दिशा में लगातार काम हो रहा है। आयुष्मान कार्ड ज़रूरतमंद परिवारों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा का एक बड़ा सहारा है। इसके माध्यम से पात्र लाभार्थी सूचीबद्ध यानी कि एम्पैनल्ड अस्पतालों में इलाज की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं और महंगे इलाज के खर्च से राहत पा सकते हैं। दोस्तों, आयुष्मान कार्ड की बात करें तो ये आयुष्मान भारत अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आयुष्मान भारत भारत सरकार की एक बड़ी स्वास्थ्य पहल है, जिसका उद्देश्य देश के जरूरतमंद परिवारों तक बेहतर और किफायती सेवाएं पहुंचाना है। इसी आयुष्मान भारत अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी PMJ की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई। इस योजना का उद्देश्य है कि गंभीर बीमारियों के इलाज के समय परिवारों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम हो और उन्हें समय पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। तो आइए दोस्तों, आप जानते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि PMJAY के बारे में। दोस्तों, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पात्र परिवारों को एम्पैनल्ड सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस और पेपरलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराती है। इसका मतलब है कि पात्र लाभार्थी को इलाज के समय बड़े खर्च की चिंता कम हो सकती है और वे बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकता है। PMJ की खास बात यह है कि पात्र लाभार्थी देश भर के सूचीबद्ध अस्पतालों में इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं, यानी अगर किसी व्यक्ति को अपने शहर से बाहर जाकर इलाज करवाना पड़े तो भी योजना के नियमों के अनुसार वह इसका लाभ उठा सकता है। अब सवाल आता है कि PMJ का लाभ लेने के लिए पात्रता कैसे पता की जाए? दोस्तों, ये जानना बहुत आसान है कि आपका नाम इस योजना में शामिल है या नहीं। आपके लिए आप आयुष्मान भारत PMJAY के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी दर्ज करके पात्रता की जाँच कर सकते हैं। अगर आपका नाम योजना में शामिल है तो आप आयुष्मान कार्ड बनवाकर सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी कभी भी आ सकती है, लेकिन सही जानकारी और समय पर उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाएं किसी भी मुश्किल समय को आसान बना सकती हैं। इसलिए अपनी पात्रता ज़रूर जाँचें, आयुष्मान कार्ड से जुड़ी जानकारी रखें और ज़रूरत के समय इस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का लाभ ज़रूर उठाएं। दोस्तों, ये स्वास्थ्य सेवाएं हम सभी के लिए चल रही हैं ताकि हम सभी स्वस्थ और खुशहाल रह सकें। वैसे दोस्तों, बीमारी

के वक्त, या यूं कहें कि हर कभी, हमें अपने अपनों की खैर खैरियत या सेहत के बारे में ज़रूर पूछ लेना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों, जब हम उनकी खोज खबर लेते हैं ना, तो उनके दिल को भी हम छू लेते हैं और वो हमारे अपने और भी अपने हो जाते हैं।

दोस्तों, ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपसे किया था एक सवाल। सवाल था, विश्व में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? दोस्तों, इसका जवाब है, दुनिया में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। लगभग 140 एक्टिव ज्वालामुखी वहीं पर मौजूद है। लेकिन जब हम पूरी दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र की बात करते हैं ना, तो हमारा ध्यान जाता है प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर की।

0: रिंग ऑफ फायर, जिसे परी प्रशांत बेल्ट भी कहा जाता है। प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला लगभग 40,000 किलोमीटर लंबा घोड़े की नाल के आकार का यह क्षेत्र है। ये न्यूजीलैंड से होते हुए इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, रूस, अलास्का और अमेरिका के पश्चिमी तटों तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पृथ्वी की अंदरूनी शक्तियाँ लगातार सक्रिय रहती हैं। दुनिया के लगभग 75% एक्टिव ज्वालामुखी और लगभग 90% भूकंप इसी क्षेत्र में दर्ज किए जाते हैं। यहाँ 450 से अधिक ज्वालामुखी मौजूद हैं। इनमें कई समुद्र के नीचे छुपे हुए हैं। लेकिन आखिर इस क्षेत्र में इतनी हलचल क्यों होती है? इसका कारण है पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों की गति। ये विशाल प्लेटें हमेशा धीरे धीरे खिसकती रहती हैं। जब एक प्लेट दूसरे के नीचे चली जाती है तो इसे सबडक्शन कहते हैं। इस प्रक्रिया से धरती के अंदर मैग्मा बनता है, जो ज्वालामुखी विस्फोट का कारण बनता है। वहीं प्लेटों के बीच अचानक होने वाली हलचल से भूकंप उत्पन्न होते हैं और समुद्र के भीतर आने वाले बड़े भूकंप सुनामी का रूप ले सकते हैं। रिंग ऑफ फायर केवल खतरों का क्षेत्र नहीं है दोस्तों, बल्कि पृथ्वी की संरचना को समझने के लिए एक वैज्ञानिक के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र भी है। इसी क्षेत्र में मरियाना ट्रेंच पृथ्वी की सबसे गहरी समुद्री खाई है और माउंट फूजी, क्राकाटोआ और माउंट मायोन जैसी की फेमस ज्वालामुखी भी इसकी पहचान है। तो दोस्तों, अब हम बिल्कुल समझ सकते हैं कि जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं वो तो किस कारण से होती हैं और उनका इन्फ्लुएंस क्या है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आज के दिन विशेष के बारे में। दोस्तों, आज है 11 जुलाई, यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस, और इस अवसर पर हम बात करेंगे कैसे विषय पर जो पूरी दुनिया के भविष्य से जुड़ा हुआ है। इस वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस की थीम है युवाओं की उम्मीदों और आकांक्षाओं को आज और भविष्य के लिए साकार करना। आज दुनिया की आबादी 8 अरब से अधिक हो चुकी है। ऐसे समय में युवाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, कौशल और समान अवसरों को सुनिश्चित करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए इस दिन के बारे में अधिक जानकारी हम लेते हैं हमारी आज की गेस्ट नेहा गोयल जी से, जिनसे हम बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि में बाधक।
1: भारत देश एक प्रगतिशील देश है। हमारा देश दिन प्रतिदिन हर क्षेत्र में सफलता के नए कीर्तिमान रच रहा है, चाहे वो खेल हो, व्यापार हो, कृषि हो या विज्ञान हो। हमारे देशवासी हर क्षेत्र में अपना और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारी सरकार भी देश तथा देशवासियों की प्रगति के लिए नई नई योजनाएं व नियम लागू कर रही है, मगर हमारे देश की प्रगति में कई बाधाएं हैं, जैसे प्राकृतिक आपदाएं, बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, बेकारी, रोग, अंधविश्वास, जाति पाति तथा सांप्रदायिकता जैसी समस्याएं हमारे देश के विकास में बाधक हैं। मगर इन सभी समस्याओं में सर्वोपरि जो समस्या है वो है बढ़ती हुई जनसंख्या। आज हमारे देश की जनसंख्या बहुत अधिक है। जिस देश में जनसंख्या की वृद्धि पर रोक नहीं लगाई जाती, उसकी आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर हो जाती है। उसकी जनसंख्या का अधिकांश भाग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करता है। चारों ओर आलस्य, दरिद्रता, कलह, रोग, अनाचार, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार, महंगाई, चोरी, डकैतियां, लूटपाट तथा अन्य सामाजिक एवं आर्थिक बुराइयों का बोलबाला होने लगता है। इन सब से देश का विकास अवरुद्ध और राष्ट्र के अस्तित्व को भी खतरा होने लगता है। ज्यादा संतानें होने के कारण माता पिता अपने बच्चों की मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं, जिसके कारण उनके बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, जो कि ज्यादातर बीमारियों का मूल कारण होता है। कम

0: और ज्यादा व्यय होने के कारण माता पिता अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं भेज पाते और इसी के कारण देश में अशिक्षा बढ़ती है। बढ़ती जनसंख्या के कारण लोगों के रहने के लिए जगह कम पड़ती जा रही है। ज्यादा जनसंख्या होने के कारण हर चीज के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। आज हमारे देश में नौजवान इंजीनियरों, डॉक्टरों, स्नातकों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, मगर अच्छी शिक्षा और डिग्री होने के बावजूद देश का नौजवान बेरोजगार है। इसका कारण है कम रोजगार और प्रत्येक रोजगार के लिए अनेकों दावेदार। अपने देश में अच्छा रोजगार न मिलने के कारण हमारे देश के काबिल व्यक्ति दूसरे देशों की ओर पलायन कर रहे हैं तथा अपना योगदान दूसरे देशों की तरक्की में दे रहे हैं, जिसके कारण हमारे देश का विकास दूसरे देशों की अपेक्षा कम हो रहा है। महंगाई बढ़ने का एक कारण जनसंख्या वृद्धि भी है। ज्यादा जनसंख्या होने के कारण जो सुविधाएं सरकार द्वारा आम लोगों को दी जाती हैं, वो भी सभी नागरिकों तक नहीं पहुंच पाती, जैसे मौलिक शिक्षा, चिकित्सा, अनाज आदि। छोटा परिवार ही सच्चे सुख का आधार है। परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होने से ना तो उन्हें उचित शिक्षा मिल पाती है और ना उचित रोजगार। बेरोजगारी व्यक्ति को अपराध की ओर प्रेरित करती है तथा कभी कभी भुखमरी से तंग आकर मानव अनैतिक धंधों से धन कमाना आरंभ कर देता है तथा कभी कभी तो वो तंग आकर अपने जीवन लीला ही समाप्त करने का प्रयत्न कर बैठता है। जिस तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, उस तेजी से ना तो उद्योग धंधों का विकास संभव है और ना ही कृषि तथा रोजगार के साधनों में वृद्धि। भारत में जनसंख्या वृद्धि में कमी लाने का प्रचार प्रसार तेजी से किया जा रहा है। हर्ष का विषय ये है कि भारत के लोग अब इसका महत्व समझने लगे हैं, परंतु सरकारी प्रयासों से ही जनसंख्या पर रोक नहीं लगाई जा सकती। इसके लिए जनसाधारण में चेतना लाना आवश्यक है, क्योंकि परिवार हमारा है, समाज हमारा है और देश भी हमारा है।
1: दोस्तों, अभी हमने सुनी आज के दिन पर बातचीत कर रही वार्ताकार नेहा गोयल जी को, जिनसे हमने जाना कि किस प्रकार बढ़ती जनसंख्या बाधक है हम सभी के डेवलपमेंट में। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और बीते सप्ताह पर एक नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं फीफा 2026 चल रहा है, यानी कि फीफा वर्ल्ड कप, और इस समय ये अपने नॉकआउट चरण में है। क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके अलावा नॉर्वे पहली बार दोस्तों इतिहास रचते हुए क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है। साथ ही दोस्तों, 5-मैच सीरीज भी चल रही है, जहां पर इंग्लैंड ने अपनी बढ़त बनाई हुई है और ये सीरीज चल रही है इंग्लैंड और इंडिया के बीच, जहां पर इंग्लैंड अभी जैसे कि मैंने कहा कि लीड कर रही है, क्योंकि वो 3 मैचेस जीत चुके हैं। साथ ही दोस्तों, हमारे देश में हो चुका है खेलो इंडिया गेम्स का अनाउंसमेंट, जो कि होने वाला है नवंबर 2026 में तेलंगाना स्टेट में। और अंडर 20 एशियाई कुश्ती में तो दोस्तों परचम ही परचम लहरा रहा है, जो कि हुआ थाईलैंड के पटाया में, और यहाँ पर भारतीय पहलवानों ने 4 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 20 पदक जीते हैं। और दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय अभी इंडोनेशिया के टूर पर रहे, जहां पर उन्हें इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। दोस्तों, अगली इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताने वाली हूं, ये सभी बैंकिंग एक्सपीरियंस के लिए है। यहां उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आ चुका है IBPS PO के तरफ से दोस्तों, जिसको वो चेक कर सकते हैं ऑफिशियल साइट पर, और साथ ही DSSB यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट्स

सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, काफ़ी सारी पदों पर भर्तियां निकली हुई हैं। तो आप जाएं ऑफिशियल साइट पर, जानकारी को अच्छे से पढ़ें और अप्लाई करें, क्योंकि आपका सुनहरा भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है।

दोस्तों, आपने ज़रूर सुना होगा एक और एक ग्यारह होते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि ऐसा क्यों कहा जाता है? मुझे ना एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक बार एक किसान ने अपने बेटों को लकड़ियों का एक गट्ठर दिया और कहा, इसे तोड़ कर दिखाओ। एक एक लकड़ी सभी ने आसानी से तोड़ दी, लेकिन जब वही लकड़ियाँ साथ बंधी तो कोई उन्हें नहीं तोड़ पाया। यही ताकत है दोस्तों, एकता की। अकेला इंसान बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन जब कई लोग एक अच्छे उद्देश्य के लिए साथ आते हैं तो बड़ी से बड़ी चुनौती भी आसान हो जाती है। इसलिए दोस्तों, हमेशा एक साथ मिलकर हमें चलना चाहिए। यानी कि हम देख सकते हैं हमारे आसपास कितनी अहम योजनाएं आती हैं और कितने ऐसे इनिशिएटिव्स रहते हैं जिसमें हम एक साथ मिलकर के भाग लेंगे तो जाहिर सी बात है, एक अच्छा भविष्य हम ज़रूर साकार कर पाएंगे। वैसे इन दिनों दोस्तों बात हो रही है बारिश से जुड़े हुए इनिशिएटिव की, जिसका नाम है कैच द रेन कैंपेन।

दोस्तों हम देख सकते हैं सड़कें जो है पानी से भर जाती हैं, फिर कभी कहीं जल भराव, कभी कहीं और कुछ परेशानी हमें परेशान करती हैं। लेकिन मानसून के दौरान केंद्र और राज्य सरकारें इस अभियान को लेकर के आगे बढ़ रही हैं जिसका नाम है कैच द रेन, ताकि वर्षा के पानी का अधिक से अधिक संचयन किया जा सके और भूजल स्तर में भी सुधार हो। तो आप भी सोचिए, आप कैसे इस कैच द रेन कैंपेन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो मानसून लवर्स भी हैं और वो अच्छी अच्छी अहम कोशिशें कर सकते हैं। और इस कोशिशों के साथ हम एक संकल्प जरूर लें कि बारिश की हर बूंद को बचाएं, क्योंकि हर बूंद की अपनी एक कहानी है और हर बूंद भविष्य की जिम्मेदारी भी। चलिए इसी बात पर अगला गाना मैं डेडिकेट करती हूँ हमारे सभी मानसून लवर्स को।

दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे लेना चाहूंगी आज विदा, यानी कि आपकी रेडियो वाली दोस्त कनिका सिंह को दे इजाजत। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खिलखिलाते रहें। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवावाणी। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 6 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम्यालोक।

अपना प्रिय कार्यक्रम ग्रामीण लोग। कहते हैं स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है, लेकिन जरा एक पल के लिए अपने आसपास नजर दौड़ाइए। शायद आपके गांव, मोहल्ले या रिश्तेदारी में कोई ऐसा परिवार होगा जिसने किसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए अपनी वर्षों की जमा पूंजी खर्च कर दी हो। किसी ने खेत गिरवी रख दिए, किसी ने गहने बेच दिए और किसी ने कर्ज लेकर इलाज कराया। बीमारी केवल शरीर को ही नहीं, पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति को भी बीमार कर देते हैं। लेकिन सोचिए, अगर ऐसे कठिन समय में कोई हाथ थाम कर कहे, इलाज की चिंता छोड़िए, सरकार आपके साथ है, तो यह किसी नई उम्मीद से कम नहीं होगा। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे ऐसी ही एक महत्वपूर्ण योजना की जिसने लाखों परिवारों के जीवन में विश्वास जगाया है। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे हम आयुष्मान भारत योजना के नाम से भी जानते हैं। लेकिन योजना की जानकारी देने से पहले आइए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले राम स्वरूप जी खेती किसानी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। जीवन सामान्य था। एक दिन उनकी पत्नी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। जांच हुई तो पता चला कि तुरंत ऑपरेशन कराना होगा। खर्च था लगभग 2.5 लाख रुपए। राम स्वरूप जी के सामने सबसे बड़ा सवाल था, इलाज कराएं या परिवार का भविष्य बचाएं। तभी गांव के एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने उन्हें आयुष्मान भारत योजना के बारे में बताया। पात्रता की जांच हुई, आयुष्मान कार्ड बना, सूचीबद्ध अस्पताल में उनकी पत्नी का इलाज हो पाया। सोचिए, अगर यह योजना ना होती तो शायद वह परिवार कई वर्षों तक कर्ज के बोझ तले दबा रहता। साथियों, ये कहानी केवल राम स्वरूप जी की नहीं है, हमारे देश में ऐसे लाखों परिवार हैं जिनके लिए यह योजना एक नई आशा बनकर आई है। आइए अब समझते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री जन योजना है क्या। ये भारत सरकार की एक ऐसी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवार को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जाता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, कैशलेस यानी क्या? इसका अर्थ है यदि आप योजना के पात्र हैं और किसी सूचीबद्ध अस्पताल में भर्ती होते हैं तो इलाज के लिए अस्पताल में नकद भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। आपको निर्धारित नियम के अनुसार भुगतान योजना के माध्यम से किया जाएगा। किसान साथियों, बीमारी यह नहीं देखती कि सामने अमीर है या गरीब, लेकिन इलाज का खर्च कई बार गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। यही चुनौती कम करने का प्रयास करती है यह योजना। अब एक और महत्वपूर्ण बात, क्या इस योजना का लाभ हर व्यक्ति को मिलता है? उत्तर है नहीं। इस योजना का लाभ सरकार द्वारा निर्धारित पात्र परिवारों को ही मिलता है। पात्रता सामाजिक आर्थिक मानकों के आधार पर तय की जाती है। यदि आपको यह जानना हो कि आपका नाम सूची में है या नहीं, तो आप नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, आयुष्मान मित्र या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, आज के समय में एक और शब्द बहुत ज्यादा सुनाई देता है, आयुष्मान कार्ड। आखिर यह कार्ड है क्या? आयुष्मान कार्ड आपकी पहचान है कि आप योजना के पात्र लाभार्थी हैं। अस्पताल में भर्ती होने पर यही कार्ड आपकी सहायता करता है। इसलिए यदि आपका परिवार पात्र है और अभी तक कार्ड नहीं बना है तो इसे अवश्य बनवाइए। अब जरा सोचिए, हम अपने मोबाइल का रिचार्ज समय पर करा लेते हैं, बैंक के दस्तावेज संभाल के रखते हैं, लेकिन स्वास्थ्य से जुड़े दस्तावेजों को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि बीमारी कभी भी दस्तक दे सकती है। इसलिए अपने परिवार के आवश्यक दस्तावेजों के साथ
आयुष्मान कार्ड को भी

सुरक्षित रखें। साथियों, इस योजना के अंतर्गत अनेक गंभीर बीमारियों का उपचार शामिल है। हृदय रोग, किडनी से संबंधित उपचार, कैंसर के कई उपचार, हड्डी के ऑपरेशन, न्यूरो सर्जरी, प्रसूति सेवाएं तथा अन्य कई स्वास्थ्य सेवाएं इसमें सम्मिलित हैं। इसके अलावा अस्पताल में भर्ती होने के दौरान आवश्यक जांच, दवाइयां और उपचार से जुड़ी कई सुविधाएं भी निर्धारित पैकेज के अनुसार उपलब्ध कराई जाती हैं। यह एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि यदि किसी कारणवश आपको अपने राज्य से बाहर इलाज कराना पड़े, तब भी देश भर के सूचीबद्ध अस्पतालों में योजना का लाभ लिया जा सकता है। यदि आवश्यकता पड़ने पर यह योजना आपके साथ देश के दूसरे हिस्सों में भी खड़ी रहती है। साथियों, कई बार जानकारी के अभाव में लोग कुछ भ्रांतियों का शिकार हो जाते हैं। जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए हर साल पैसे जमा करने पड़ते हैं। भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पात्र लाभार्थी को अलग से कोई प्रीमियम राशि जमा नहीं करनी पड़ती। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि केवल सरकारी अस्पतालों में सुविधा मिलेगी, जबकि अनेक सूचीबद्ध निजी अस्पताल भी इस योजना से जुड़े हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, यदि कोई व्यक्ति आपसे आयुष्मान कार्ड बनवाने या इलाज दिलाने के नाम पर अनावश्यक पैसे मांगे तो सतर्क रहिए। सही जानकारी केवल अधिकृत केंद्रों और संबंधित अधिकारियों से ही प्राप्त करें। श्रोताओं, स्वास्थ्य केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी है। यदि हम संतुलित भोजन करें, नियमित व्यायाम करें, स्वच्छता रखें और समय समय पर स्वास्थ्य जांच कराएं, तो कई बीमारियों से बचा जा सकता है। लेकिन यदि कभी गंभीर बीमारी आ भी जाए तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसे प्रयास हमारे परिवार को आर्थिक सुरक्षा देने का काम करते हैं। आज आपसे एक छोटी सी अपील भी है, अपने गांव या मोहल्ले में किसी भी ऐसे परिवार को इस योजना की जानकारी अवश्य दीजिए जो शायद अभी तक इसके बारे में नहीं जानता। हो सकता है आपकी दी हुई एक छोटी सी जानकारी किसी परिवार की सबसे बड़ी मदद बन जाए। इसी विश्वास और शुभकामना के साथ कि हमारा देश स्वस्थ हो, हर परिवार सुरक्षित हो और किसी को भी इलाज के लिए अपनी खुशियां ना बेचनी पड़े, आइए सुनते हैं सुखलेश की आवाज में ये लोकगीत।

0: किसान साथियों, बढ़ती महंगाई, बढ़ते बीज, महंगे बीज, उर्वरक, कीटनाशक और सिंचाई की बढ़ती लागत ने खेती को चुनौतीपूर्ण बना दिया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ वैज्ञानिक तकनीकें, सरकारी योजनाओं और सही कृषि प्रबंधन को अपनाकर लागत कम करते हुए भी बेहतर उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं ऐसे ही सरल और प्रभावी उपाय जो आपकी खेती को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बना सकते हैं। आज की वार्ता में वार्ता का विषय है खेती में लागत खर्च कम करने के उपाय। वार्ताकार हैं डॉक्टर धर्मवीर सिंह।
1: किसान भाइयों एवं बहनों, आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि खेती करने में किस प्रकार लागत खर्च को कम किया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दौर में खेती में लागत अधिक होने के कारण मिलने वाला जो शुद्ध लाभ है वो कम होता जा रहा है। हम कहना चाहेंगे कि खेती करने के लिए जो भी हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं उनका सही तरीके से सोच समझ कर कृषि क्रियाओं में संतुलित उपयोग यदि हम लोग करेंगे तो खेती में आने वाली लागत को कम किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि बुवाई के लिए हमारे किसान भाई बहन भूमि की तैयारी ज़्यादातर ट्रैक्टर से जुताई करके करते हैं, चाहे वह अपना ट्रैक्टर हो अथवा किराए का। जैसा कि हमारी परंपरा रही है कि यदि खेत खाली है तो उसकी जुताई करते रहना चाहिए। यह परंपरा जब हम पशुओं के द्वारा खेती करते थे तब तो कहा जा सकता है कि ठीक थी, परंतु आज के मशीनी युग में ट्रैक्टर से बार बार जुताई करना कृषि लागत को काफ़ी अधिक बढ़ाता है, क्योंकि जो भी डीजल आदि पेट्रोलियम पदार्थ हैं उनमें काफ़ी महंगाई होती जा रही है और जो कृषि लागत को सीधे प्रभावित करती है, जिसमें हमारा

लाभ है कि आवश्यक होने पर ही ट्रैक्टर से जुताई कराएं। यदि खेत में अधिक खरपतवार हैं अथवा हरी खाद बनानी है तो इसके लिए रोटावेटर से एक जुताई कराने से बार बार की जुताई से बचा जा सकता है और कृषि लागत में कटौती की जा सकती है। साथ ही समयानुसार हम अपनी खेती को बुवाई के लिए तैयार कर सकते हैं। दूसरे, अपने खेतों को लेवलिंग के द्वारा समतल रखना होगा, क्योंकि हम सभी भली भांति जानते हैं कि सिंचाई के लिए निरंतर पानी की कमी होती जा रही है और ऊंचे नीचे खेतों में सिंचाई करने पर पानी काफी बर्बाद होता है। फसल में कहीं कम और कहीं ज्यादा पानी मिलता है, जिससे उत्पादन पर भी विपरीत असर पड़ता है। साथ ही जो अधिक पानी खर्च होता है उससे कृषि लागत भी बढ़ती है। किसान भाइयों, खेती की लेवलिंग करने से पहले हमें यह भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि खेतों की लेवलिंग बुवाई करने से तुरंत पहले नहीं करें, क्योंकि लेवलिंग करने से हमारी उपजाऊ मिट्टी जो ऊपरी भाग है वो कहीं कम और कहीं ज़्यादा हो जाती है, जो उत्पादन को प्रभावित करती है। इसलिए जब खेत खाली हों उस समय खेतों का समतलीकरण करना चाहिए, जिससे कि हम सिंचाई आदि में अधिक जो हमारी लागत आ रही है उसको हम नियंत्रित कर सकें। तीसरा सुझाव हम आप लोगों को देना चाहते हैं कि आप अपनी खेती के लिए फसलों का चुनाव, भूमि की किस्म, सिंचाई के साधन, जलवायु और अन्य उपलब्ध साधनों के अनुसार ही करें, जिससे कि आप अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सकें और अधिक लाभ पा सकें। जबकि यदि हम इसके विपरीत, यदि आपने बिना अच्छी तरह समझे फसलों एवं किस्मों का चुनाव किया तो लागत तो अधिक होगी ही, उसके साथ आपको उत्पादन भी कम मिलेगा। इसलिए अपनी जलवायु के आधार पर, अपनी जो सुविधाएं हैं उनके आधार पर ही फसलों का चुनाव करना चाहिए। इसके बाद हम कहना चाहेंगे आपसे कि बीज पर आने वाली लागत खर्च को भी हमें ध्यान देना चाहिए। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि अपनी खेती में बोने के लिए अच्छी गुणवत्ता का बीज अपने पास ही उपलब्ध हो जाए। इसके लिए हमें प्रत्येक वर्ष आधारित बीज सरकारी कृषि इकाइयों अथवा संबंधित विभागों से जरूरत अनुसार खरीदना होगा और उसका उत्पादन जब हम अपने यहाँ करेंगे तो आने वाले साल के लिए हमारे पास अपनी खेती के लिए अच्छा बीज उपलब्ध रहेगा। साथ ही अन्य किसान भाइयों को अथवा सरकारी विभागों को अच्छी कीमत पर उस बीज को बेचा भी जा सकता है, जिससे हमारी लागत कम होगी, अधिक उत्पादन होगा और हमें मिलने वाला लाभ भी अधिक होगा। हमारी खेती में किसान भाइयों और एवं बहनों, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग भी कृषि लागत को काफ़ी प्रभावित करता है। कृषि लागत कम करने व अधिकतम पैदावार लेने के लिए हमें सर्वप्रथम अपने खेत की मिट्टी की जांच करानी चाहिए और जांच होने के बाद जो भी हम फसल बो रहे हैं उस फसल को कौन से तत्वों की कितनी आवश्यकता है को ध्यान में रखते हुए खाद एवं उर्वरकों की संतुलित मात्रा फसल में देनी चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सिंचाई हेतु पानी की कितनी उपलब्धता है, क्योंकि रासायनिक खादों का प्रयोग सिंचाई के पानी की उपलब्धता के अनुसार भी कम ज़्यादा होता है। यदि सिंचाई का पानी प्रचुर रूप से उपलब्ध है तो उर्वरकों का फसल की आवश्यकता अनुसार अधिकतम उपयोग कर सकते हैं और अधिकतम उत्पादन भी हम प्राप्त कर सकते हैं। यदि सिंचाई के पानी की उपलब्धता सीमित है तो हमें उर्वरकों की मात्रा में कमी करनी चाहिए, जिससे हमारी खेती पर आने वाले खर्च में कमी हो और जो भी हमारे सिंचाई के साधन हैं उनका भरपूर उपयोग करते हुए अधिकतम पैदावार ले सकें। इसके अलावा हमें खेती में उर्वरा शक्ति बढ़ाने एवं भूमि संरचना अच्छी रखने के लिए गोबर की खाद, हरी खाद आदि भी देनी चाहिए। साथ ही

उचित फसल चक्र अपनाने से भी कृषि लागत कम की जा सकती है और अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। किसान भाइयों एवं बहनों, खरपतवार नाशकों एवं कीटनाशकों को सरकारी कृषि इकाइयों से खरीदना चाहिए अथवा कृषि वैज्ञानिकों की सलाह से उचित गुणवत्ता वाली दुकान से खरीदना चाहिए, क्योंकि बाजार में कभी कभी सही दवा न मिलने से कृषि लागत तो बढ़ जाती है परंतु खेत अथवा फसल में कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए खेती के लिए दवा खरीदते समय ठीक तरह से सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। इसके अलावा किसान भाइयों, कृषि में मानव श्रम मजदूरी से भी कृषि लागत काफ़ी प्रभावित होती है। इसको कम करने के लिए कृषि क्रियाओं को

0: कभी कभी सही दवा न मिलने से कृषि लागत तो बढ़ जाती है, परंतु खेत अथवा फसल में कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए खेती के लिए दवा खरीदते समय ठीक तरह से सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। इसके अलावा किसान भाइयों, कृषि में मानव श्रम मजदूरी से भी कृषि लागत काफ़ी प्रभावित होती है। इसको कम करने के लिए कृषि क्रियाओं को सही समय पर करना चाहिए, और जो किसान भाई बहन कृषि मजदूरों के द्वारा खेती कराते हैं उन्हें अपने कुशल निरीक्षण में कार्य कराना चाहिए। किसान भाइयों एवं बहनों, अभी जो हमने आपको कृषि लागत कम करने के उपाय बताए हैं, हम आशा करते हैं कि आप इन उपायों को अपनाकर कृषि लागत कम करेंगे और खेती से अधिकतम शुद्ध लाभ प्राप्त करेंगे।
1: किसान साथियों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता जिसका विषय था खेती में लागत खर्च कम करने के उपाय। वार्ताकार थे डॉक्टर धर्मवीर सिंह।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: किसान साथियों, डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने आपको जो सुझाव दिए हैं लागत कम करने के, निश्चय ही आपके काम आएंगे। लेकिन आज खेतों में केवल मेहनत ही नहीं बल्कि तकनीक भी किसानों की साथी बन रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ड्रोन तकनीक खेती की नई पहचान बनते जा रहे हैं। ड्रोन की मदद से कुछ ही मिनटों में बड़े खेत में दवा और उर्वरक का समान रूप से छिड़काव किया जा सकता है। वहीं AI आधारित मोबाइल ऐप सेंसर फसल की स्थिति का विश्लेषण कर बताते हैं कि कब सिंचाई करनी है, कब खाद देनी है और किस रोग का खतरा है। इससे लागत कम होती है, समय बचता है और पैदावार बढ़ाने में मदद मिलती है। नई तकनीक अपनाकर किसान कम संसाधनों में भी बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए समय के साथ कदम मिलाइए, आधुनिक तकनीकों को अपनाइए और अपनी खेती को अधिक लाभदायक बनाइए।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: किसान साथियों, आप जान लेते हैं मंडी भाव। गेहूं का भाव रहा 2560 से 2610 रुपए प्रति क्विंटल। काली सरसों 6650 से 6800 रुपए। सफ़ेद सरसों का दाम रहा 6900 से 7100 रुपए। जौ 1950 से 2050 रुपए प्रति क्विंटल। आलू का दाम रहा 1800 से 2000 रुपए। प्याज 2400 से 2700 रुपए और टमाटर का दाम रहा 2200 से 2500 रुपए प्रति क्विंटल। तो ये था किसान साथियों मंडी भाव। और अब रुख करते हैं मौसम की जानकारी का। बीते 24 घंटों में आगरा व उसके आसपास के इलाकों में अधिकतम तापमान 34 डिग्री व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा में अधिक नमी की वजह से उमस ने लोगों को बहुत ही परेशान किया। आगामी 24 घंटों में अनुमान है कि अधिकतम तापमान 35 डिग्री व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री के आसपास ही रहेगा। आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। दोपहर या शाम के समय बारिश की भी संभावना है। किसानों के लिए सलाह है कि दवा या उर्वरकों का छिड़काव मौसम साफ होने पर ही करें। खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें और पशुओं की साफ सफाई का भी ख्याल रखें। और साथियों, कार्यक्रम में अब वक्त है एक और लोकगीत का। सुनते हैं पोप सिंह और साथियों की आवाज़ में ये लोकगीत।

इस उम्मीद में कि बादल गरजेंगे, बिजली चमकेगी। अपनी दोस्त उमा अली को आज का ग्रामीण लोक कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की अनुमति दीजिए। राम राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम्यालोक मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मजदूर मंडल।

मजदूर मंडल सुनने वाले सभी श्रोताओं को रेडियो साथी खालिद तनवीर का नमस्कार। लीजिए साथी, रोजाना की तरह आज फिर हाजिर है आप सभी का मनपसंद कार्यक्रम। स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का। साथियों, दुनिया के लगभग सभी देशों में श्रमिकों के बेहतर जीवन और कल्याण के लिए कई कानून बनाए गए हैं। इसी तरह हमारे देश में भी केंद्र और राज्य सरकारों ने कार्यस्थल पर श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई हितकारी कानून बनाए हैं।

उनको लाभ पहुंचाने के लिए कई योजनाएं भी हैं। श्रमिक वर्ग हमारे समाज का महत्वपूर्ण अंग है। किसी भी राष्ट्र के निर्माण, विकास और वहाँ की अर्थव्यवस्था में श्रमिकों का महत्वपूर्ण योगदान होता ही है। देश की विकसित अर्थव्यवस्था श्रमिकों की अच्छी स्थिति पर ही निर्भर करती है। साथियों, श्रमिकों की बातें आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे पूछते हैं एक सवाल। साथियों, ये आज का प्रश्न आज के दिवस से जुड़ा हुआ है और आज का प्रश्न है कि अपने देश भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी। तो श्रोताओं, प्रश्न एक बार फिर सुन लें कि हमारे देश में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी, और इस प्रश्न का उत्तर हम आपको देंगे इसी कार्यक्रम में। तो इसका इंतजार करें और इसका जवाब सोचकर रखें जिसे आप उससे मिला सकें। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, देश की विकसित अर्थव्यवस्था श्रमिकों की अच्छी स्थिति पर ही निर्भर करती है। एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण हर श्रमिक का मूल अधिकार है। हालांकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो इस अधिकार का हनन एक आम बात हो गई है। ILO के आंकड़े बताते हैं कि विश्व स्तर पर एक वर्ष में 125 मिलियन से अधिक श्रमिक व्यावसायिक दुर्घटनाओं और बीमारियों के शिकार होते हैं, जिनमें से लगभग 2.5 लाख श्रमिकों की मौत हो जाती है और अन्य लाखों मजदूर पूर्णतः अक्षम हो जाते हैं। श्रमिक वर्ग के लोग अपने अपने कार्यस्थल पर कई प्रकार के उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं और मशीनों के साथ ही ट्रक, बुलडोजर और क्रेनों जैसे भारी वाहनों का काम भी करते हैं। बहुत से श्रमिकों का काम खतरों से भरा हो सकता है, जैसे कि ऊपर से श्रमिक का गिर जाना या श्रमिकों के ऊपर भारी वस्तु गिर जाना या किसी दुर्घटना के बाद किसी तरह की अपंगता हो जाना या किसी मजदूर का गंभीर और लाइलाज बीमारी से पीड़ित हो जाना। ये सब ऐसे कारण हैं कि जिनके बाद एक श्रमिक का परिवार भूखों मरने की नौबत से दो चार हो सकता है। ऐसी स्थिति में यही कहा जा सकता है कि अगर हम अपने कार्यस्थल पर सावधानी से काम करें तो काफी हद तक दुर्घटना से बच सकते हैं। अपने देश में मजबूत विकास के बावजूद व्यावसायिक और औद्योगिक सुरक्षा को प्रोत्साहन देने के संबंध में बहुत से नियोक्ताओं का रिकॉर्ड भी काफी अच्छा नहीं है। साथियों, अगर हम कार्यस्थल पर स्वास्थ्य के नजरिए से बात करते हैं तो पता चलता है कि खुली साइट या बंद कारखानों में सफाई की उचित व्यवस्था न होने पर श्रमिकों को गंदगी में बैठकर काम करना पड़ता है, जिससे वो बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए प्रबंधन को चाहिए कि साफ सफाई और अपशिष्ट को नष्ट करने की उचित व्यवस्था को सुनिश्चित करें। कारखानों में वायु संचालन के साथ साथ धूल धुएं के निष्कासन के लिए पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। सभी शिफ्टों के श्रमिकों के लिए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था के साथ साथ खाना खाने और आराम के लिए साफ सुथरी जगह भी होनी चाहिए। भारी भरकम और मॉडर्न मशीनों का रखरखाव अच्छा हो ताकि किसी भी श्रमिक को किसी मशीनी दुर्घटना का सामना न करना पड़े। किसी भी श्रमिक से उसकी शारीरिक क्षमता के मुताबिक काम करवाया जाना चाहिए। आपातकाल के लिए सभी प्रकार के उपाय हर कामगार को बता दिए जाने चाहिए, जिससे किसी भी स्थिति में वे अपना बचाव कर सकें। साथियों, हमें यह जरूर ध्यान रखना है कि उत्पादकता और आर्थिक क्षमता बढ़ाना फैक्ट्रियों में एक प्रमुख उद्देश्य होता है, लेकिन मजदूरों को स्वास्थ्य और कार्यस्थल पर प्रदान की जाने वाली सुविधाएं भी इसका ही हिस्सा हैं। स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुविधा उपायों से खर्च में कमी आती है, उत्पादकता बढ़ती है, मजदूरों की भलाई सुनिश्चित होती है और संस्थान को मानवीय बनाती है। कार्यस्थल पर यौन हिंसा सभी उद्योगों और सेक्टरों में कार्यरत महिलाओं और अन्य लोगों के लिए एक विकट समस्या है। नियोक्ता ये जरूर सुनिश्चित करें कि उनके यहाँ इस प्रकार की कोई भी हरकत ना हो, क्योंकि इस समस्या का निराकरण करना सभी उद्योगों और कार्यालयों में अनेक कारणों से चुनौतीपूर्ण रहा है। नियोक्ता ये व्यवस्था करें कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम की जाए, जिससे महिला कामगार खुद को सहज महसूस करें। बातें आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन अभी करते हैं मनोरंजन और सुनते हैं यह मधुर गीत।

0: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1-800-1805-145 पर कॉल करें।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: साथियों, आजकल मोबाइल का ज़माना है, हर काम मोबाइल से हो रहा है, चाहे वो ख़रीदारी हो या ऑनलाइन शॉपिंग, कहीं बाज़ार में जाना हो या रेलवे का टिकट बुक कराना। लेकिन हम सभी को इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि मोबाइल से पैसों का जो भी लेन देन करें बिल्कुल सावधानी से करें। आइए इसी बारे में कुछ अधिक जानकारी करते हैं। आज की वार्ता के माध्यम से विषय है मोबाइल से लेनदेन में सावधानी। वार्ताकार हैं कौस्तुभ सिंह राणा।
3: श्रोताओं, आजकल हर एक के हाथ में मोबाइल रहता है। इससे हम बहुत सारे काम करते हैं। हम बातचीत करते हैं, अपने घर परिवार मित्रों को आमने सामने देखकर नजदीकी का एहसास करते हैं, देश दुनिया के समाचार लेते हैं, मनोरंजन करते हैं और सबसे बड़ी बात, पैसे का लेनदेन भी करते हैं। चाहे रेलवे रिजर्वेशन हो, बीमा की किश्त जमा करनी हो या कोई और काम, मोबाइल के जरिए आसानी से पैसों का भुगतान हो जाता है। मोबाइल के जरिए पैसों का लेन देन जितना आसान है उतना ही इसमें समस्या भी हो सकती है। जरा सी सावधानी से हमें नुकसान भी हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि पैसों के लेन देन में पूरी सतर्कता के साथ मोबाइल का उपयोग करें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि आप बिना बटुआ या पर्स ले जाए भी भुगतान कर सकते हैं? आज भी विश्व के अधिकतम देशों में कैश से अधिकतर भुगतान होता है। भारत में सरकार की दूरदर्शिता और निजी कंपनियों के योगदान से डिजिटल इकोनॉमी का सपना साकार हुआ और आज भारत डिजिटल इकोनॉमी में विश्व में सबसे आगे है। नोटबंदी के समय मोबाइल से लेन देन काफ़ी प्रचलित हुआ। पेटीएम, मोबीक्विक, फ्रीचार्ज इत्यादि कंपनी उस समय सबके जुबान पर थी। इसके पश्चात NPCI द्वारा UPI की स्थापना की गई। आज UPI से महीने में करीब 1400 करोड़ भुगतान होते हैं। डिजिटल लेन देन के मामले में UPI ने कार्ड द्वारा लेन देन को भी पीछे छोड़ दिया है। भारत में मोबाइल से भुगतान आसानी के साथ साथ सुरक्षित भी है। इसके लिए पेमेंट करने से पहले आप मोबाइल ऐप में लॉगिन करते हैं या फेस रिकग्निशन से लॉगिन होता है, फिर भुगतान से पहले पिन डालते हैं। पेमेंट से पहले हुए 2 स्तर पर प्रमाणीकरण के बाद ही भुगतान होता है। इससे आपके द्वारा कोई भी भुगतान काफी सुरक्षित होता है। इस प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए UPI ने UPI लाइट नामक सुविधा भी शुरू की है, जिसमें आप 2000 तक का भुगतान बिना पिन के भी कर सकते हैं। UPI लाइट का एक अन्य लाभ यह भी है कि भुगतान करते समय आपका अकाउंट और भी ज्यादा सुरक्षित रहता है, क्योंकि UPI लाइट में 2000 तक की ही भुगतान कर सकते हैं। दोस्तों, भुगतान की प्रक्रिया जितनी आसान होती जा रही है उतने ही इसमें धोखाधड़ी करने वाले लोग बढ़ गए हैं। इसलिए ऑनलाइन या डिजिटल भुगतान करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे कि यदि आपके पास कॉल आता है कि आपके KYC की अवधि समाप्त हो गई है या इसे रिन्यू कराना पड़ेगा वरना आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, तो आपको घबरा कर सामने वाले की बात नहीं माननी है। आप अपनी बैंक ब्रांच जाकर या कंपनी के ट्विटर हैंडल पर मैसेज करके इसकी सही जानकारी लीजिए। कोई भी बैंक या पेटीएम, फोन पे, गूगल पे इत्यादि कंपनी कभी भी फोन पर KYC के लिए कॉल नहीं कराती। आजकल AI का काफी प्रचलन है और ये भी हमारा काम

0: आसान करने के लिए है, किंतु फ्रॉड करने वाले लोग एआई की मदद से आपके किसी निकट जन की आवाज में या उनका अकाउंट हैक करके भी आपसे पैसे मांग सकते हैं। ऐसे में आपको धैर्य रखकर समझदारी से काम लेना है। पैसे या अकाउंट डिटेल फोन पर न दें। यदि मदद करनी है तो उस व्यक्ति से मिलकर बात करें और उचित कदम उठाएं। कई बार आपको पेमेंट या केवाईसी इत्यादि करने के लिए आपसे ओटीपी मांगा जाता है, पर असल में वो आपके अकाउंट से पैसे निकालने का ओटीपी होता है। इसलिए कभी भी किसी और को ओटीपी शेयर ना करें। इसके साथ ही कई बार आपको लुभावने ऑफर दिखाकर लिंक भेजा जाता है। ऐसे किसी भी लिंक पर कभी क्लिक ना करें। ऐसे ही कभी भी कोई अनजान ऐप डाउनलोड करने से पहले ध्यान दें कि वह सही है या नहीं। ऐप डाउनलोड सदैव गूगल या एप्पल स्टोर की ऐप से ही करें। कुछ लोग आपको QR भेजकर ₹1 का टेस्ट पेमेंट करने को बोलते हैं। ऐसे में कभी भी किसी अनजान QR को स्कैन ना करें, इससे आपका अकाउंट भी हैक हो सकता है। ऐसे अनगिनत कॉल हम सभी पर आते हैं। इसमें हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि कभी भी किसी को भी अपने अकाउंट की कोई डिटेल नहीं देनी है। अगर जरा भी शंका है तो तुरंत अपने बैंक जाकर या बैंक के आधिकारिक टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें और जानकारी लें। QR स्कैन करके हमेशा पेमेंट के अमाउंट की जांच करें कि वो उतना ही है जितना आपको देना है। किसी के भी मांगने पर OTP शेयर ना करें। किसी भी नई वेबसाइट या ऐप पर कोई बैंकिंग डिटेल ना दें। अपने मोबाइल को हमेशा पासवर्ड प्रोटेक्ट करके रखें। अपने द्वारा डाउनलोड की गई पेमेंट्स और बैंकिंग ऐप्स को भी पासवर्ड प्रोटेक्ट करके रखें। भारतीय रिजर्व बैंक समय समय पर आपको सावधान करने के लिए कई विज्ञापन जारी करता है। इन्हें ध्यान से देखें और समझें। यदि फिर भी कभी आप किसी धोखाधड़ी का शिकार होते हैं तो तुरंत अपने बैंक को इसकी जानकारी दें। बैंक ब्रांच जाकर या टोल फ्री नंबर पर तुरंत अपने अकाउंट को ब्लॉक कराएं। मोबाइल पेमेंट या अन्य कोई भी टेक्नोलॉजी हमारे फायदे के लिए है, किंतु इसे सावधानी से इस्तेमाल करना भी हमारी जिम्मेदारी है। आप खुद भी समझदारी से इनका प्रयोग करें और अपने आसपास घर परिवार मित्रों को भी इसके सही इस्तेमाल में सहयोग करें।
1: श्रोता अभी सुन रहे थे आज की वार्ता, मोबाइल से लेन देन में सावधानी। वार्ताकार थे कौस्तुभ सिंह राणा। और साथियों अब लेते हैं कंत्राल।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: और साथियों, कार्यक्रम में अब समय हो चला है ज्ञान सागर का, जिसमें आज बात करेंगे भारत के पहले सहकारी बैंक की, अन्योन्या सहकारी बैंक लिमिटेड यानी ACBL, जो अब बंद हो चुका है। इससे पहले जान लेते हैं कि सहकारिता आखिर है क्या। दोस्तों, सहकारिता एक ऐसी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था या कहें संगठन है, जिसमें समान हित वाले व्यक्ति एक साथ मिलकर किसी काम को करते हैं और इसका मूल उद्देश्य किसी एक व्यक्ति के लाभ के बजाय सभी सदस्यों के सामूहिक विकास और आर्थिक कल्याण को प्राप्त करना होता है। असल में सहकारिता सब प्रत्येक के लिए और प्रत्येक सब के लिए की भावना पर काम करती है। सहकारिता में कोई भी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के शामिल हो सकता है। इसके माध्यम से छोटे और सीमित संसाधनों वाले लोग भी बड़े स्तर पर व्यापार करने में कामयाब हो सकते हैं। इससे सदस्यों की आर्थिक स्थिति तो मजबूत होती ही है, इसके साथ साथ वे सभी आत्मनिर्भर भी

दोस्तों, ACBL गुजरात राज्य के वडोदरा शहर में स्थित एक भारतीय सहकारी बैंक था। यही वो बैंक था जिसे भारत में स्थापित पहले सहकारी बैंक का गौरव प्राप्त है। कुछ अनियमितताओं के चलते भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश अनुसार इसे वर्ष 2013 में बंद कर दिया गया। ACBL यानी अन्योन्या सहकारी बैंक लिमिटेड की स्थापना सन 1889 में अन्योन्या सहायक मंडली सहकारी बैंक लिमिटेड के नाम से हुई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य बड़ौदा क्षेत्र के निवासियों के लिए साहूकारों द्वारा शोषण का विकल्प प्रदान करना था। यह भारत में स्थापित होने वाला पहला सहकारी बैंक था। सन 1889 में जब इसकी शुरुआत हुई थी, तब इसमें केवल 23 सदस्य और 76 भारतीय रुपए की पूंजी थी, जो मुख्य रूप से बड़ौदा शहर और उसके आसपास के कुछ छोटे कस्बों में ही था। कुछ वित्तीय अनियमितताओं के चलते सन 2013 में रिजर्व बैंक के आदेश के मुताबिक भारत के इस पहले सहकारी बैंक को बंद कर दिया गया। और अब अपने श्रोताओं को देते हैं आज पूछे गए प्रश्न का उत्तर। तो आज हमारे श्रोताओं को बताना था कि स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में जनसंख्या को गिनती करने के लिए पहली जनगणना कब हुई थी, और इसका जवाब है सन 1951। जी हाँ दोस्तों, आज़ादी के बाद सबसे पहले हमारे देश में जनगणना 1951 में हुई थी, जो 9 फरवरी से 28 फरवरी के बीच आयोजित हुई थी। अगर पुराने समय की बात करें तो संपूर्ण भारत में पहली बार जनगणना का काम अंग्रेजी शासनकाल में वर्ष 1872 में किया गया था, लेकिन यह एक व्यवस्थित जनगणना नहीं थी। अपने देश में हर 10 साल के अंतराल पर होने वाली नियमित जनगणना की शुरुआत सन 1881 में अंग्रेजी शासन अधिकारी रिप्पन के कार्यकाल में हुई थी। और अब बातें कुछ सेहत की। साथियों, आजकल बरसात के मौसम में घर का बना ताजा खाना खाएं। ज्यादा नमी की वजह से बाहर का खाना जल्दी खराब हो जाता है। आजकल मौसम ठंडा होने की वजह से कम प्यास लगती है, लेकिन फिर भी पर्याप्त मात्रा में पानी पीना ही चाहिए। बरसात में बासी खाना, ज्यादा तली भुनी हुई चीजें, बाहर के स्ट्रीट फूड से पूरी तरह परहेज करना चाहिए। इस मौसम में गुनगुना पानी, अदरक तुलसी की चाय या हल्दी वाला दूध पीने से शरीर को गर्माहट भी मिलती है और गले में इन्फेक्शन का खतरा नहीं होता। डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया से बचने के लिए पूरी आस्तीन के कपड़े पहने और मच्छर भगाने वाली क्रीम का इस्तेमाल भी करें। इसके अलावा मच्छरों से बचने के लिए कूलर, गमलों या घर के आसपास छोटे मोटे गड्ढों में पानी इकट्ठा ना होने दें। और अब हमारे श्रमिक भाई बहनों के बच्चों के लिए बातें कुछ नई खोजों की। तो दोस्तों, हाल ही में विज्ञान, अंतरिक्ष और तकनीक के क्षेत्र में कई अद्भुत खोजें हुई हैं। खगोलविदों ने दूर अंतरिक्ष में छुपी विशालकाय आकाश गंगाओं को खोजा है। नासा ने ब्रह्मांड की प्राचीन उल्का पिंडों में जीवन की उत्पत्ति से जुड़े अमीनो एसिड खोजे हैं। इसके अलावा हमारे देश भारत ने क्वांटम कंप्यूटर और नैनो सेंसर के निर्माण में भी बड़ी कामयाबी हासिल की है। और अब करते हैं मनोरंजन और सुनते हैं यह मधुर गीत, जिसकी फरमाइश हमें भेजी है किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान से माही नली, हबीबा अली, कशफ, तैयबा और सना ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मजदूर मंडल मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 7 बजने को है। प्रस्तुत है हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की अपनी दो दिन की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न कर स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। चार दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा थी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत की। दोनों नेताओं ने रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और दुग्ध तथा पशुपालन सहित विभिन्न क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा का प्रमुख आकर्षण ऑकलैंड के स्पार्क एरिना में आयोजित सामुदायिक कार्यक्रम था, जिसमें भारतीय प्रवासी समुदाय के 10,000 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री लक्सन ने सभा को संबोधित करते हुए भारत को विश्वसनीय मित्र बताया, न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन को उनके गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए धन्यवाद

0: धन्यवाद दिया और कहा कि इस यात्रा ने भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय खोल दिया है।
1: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम हैं। यहां रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। नई दिल्ली में आज जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण महान स्वतंत्रता सेनानी, विचारक और राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने देश के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने देश भर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए। नई दिल्ली में आज विशेष कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये योजना भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए मजबूत आधार है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि लोकतंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन संविधान और जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता सर्वोपरि रहनी चाहिए। उन्होंने बिहार में गयाजी में राज्य के लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में 18वीं विधानसभा के सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट आज वियतनाम के फूकवोक द्वीप के पास पलट गई। स्थानीय खबरों के अनुसार 15 लोगों के मारे जाने की आशंका है, जबकि 21 लोगों को बचा लिया गया है। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रथिका प्रदीप और चिकित्सा तनिपार्थी की तिकड़ी ने आज तीरंदाजी विश्व कप के 4थे चरण में रजत पदक अपने नाम किया। टीम को महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा के फाइनल में कोलंबिया से 228-232 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं प्रथिका प्रदीप ने व्यक्तिगत महिला कंपाउंड में कांस्य पदक अपने नाम किया। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। Prime Minister Narendra Modi has concluded his historic 2-day visit to New Zealand and departed for India. The visit, the first by an Indian Prime Minister to New Zealand in over 4 decades, gave a major boost to bilateral ties. During the visit, Prime Minister Modi held talks with his New Zealand counterpart, Christopher Luxon. They witnessed the exchange of 5 memoranda of understanding in areas including defence, tourism, sports, disaster management and dairy and animal husbandry. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Addressing the gathering, Prime Minister Luxon described India as a trusted friend, praised the contribution of the Indian community to New Zealand's progress, and appreciated Prime Minister Modi's leadership. Prime Minister Modi thanked Prime Minister Liu

0: Jackson for his warm hospitality and said the visit had opened a new chapter in India-New Zealand relations, referring to the 40-year gap since the last visit by an Indian Prime Minister. He said the next visit would not take so long.
1: 40 साल के बाद कोई भारतीय पीएम न्यूजीलैंड की धरती पर आया है ये मेरा सौभाग्य है मैं न्यूजीलैंड के सभी निवासियों के लिए आप सभी लोगों के लिए 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं लेकर आया हूं साथियों प्रधानमंत्री के रूप में भले ही मेरा पहला न्यूजीलैंड दौरा है लेकिन 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था तब भी मुझे यहाँ न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था
0: The Pradhan Mantri formalization of micro food processing enterprises scheme has crossed the milestone of sanctioning loans to more than 2 lakh micro food processing enterprises across the country. The scheme has leveraged project investments of over 20,300 crore rupees and generated nearly 11 lakh direct and indirect employment opportunities. Addressing a special event in New Delhi today, Union Minister for Food Processing Industries, Chirag Paswan, said that the achievement is not merely a milestone to celebrate, but a strong foundation for the next phase of India's food processing growth story. Mr. Paswan also underlined the participation of women entrepreneurs at nearly 44% of all beneficiaries reflects the true spirit of women-led development, a cornerstone of Viksit Bharat. A speedboat carrying Indian tourists capsized near Vietnam's Phu Quoc Island today. According to local media reports, 15 people are feared dead, while 21 people rescued. The boat carrying 32 Indian tourists and 4 crew members overturned about 400 meters off Hon Mai Ruot Ngoi Island, triggering a rescue operation. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed condolence at the tragic boat accident involving Indian nationals near Phu Quoc Island, Vietnam. In his message, the Vice President prayed for the swift and complete recovery of those injured. He wished strength and courage to all those affected by this tragic incident. Prime Minister Modi extended condolences to the families who lost their loved ones and hoped for the early recovery of the injured survivors. He said Indian Embassy and Consulate in Vietnam are providing all possible assistance and are in close contact with the Vietnamese authorities. The Indian women's compound team of Jyoti Surekha Venam, Prithika Pradeep and Chikitha Taniparthi clinched the silver medal at the Archery World Cup Stage 4 in Madrid, Spain today. The Indian trio went down 228-232 to Colombia in the final. In the FIFA World Cup, Norway will take on England while defending champions Argentina will clash with Switzerland in the quarterfinals to determine the remaining semi-finalists. And that is the end of this news bulletin.
2: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है. स्टूडियो की घड़ी में 7:10 हुए हैं. प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा, जिसमें आज की वार्ता का विषय है मानवीय विस्तार में संतुलन तलाशती प्रकृति. आज की वार्ताकार हैं मिथिलेश कुमार शर्मा.
3: प्रकृति महज एक शब्द नहीं है बल्कि जीवन का आधार है. हम जो हवा और सांस लेते हैं, जो जल पीते हैं और जिस अन्न से हमारा जीवन चलता है, इतना ही नहीं जिस धरती पर हमारा अस्तित्व टिका है, वो सब इस प्रकृति की ही देन है. लेकिन जैसे जैसे मानव सभ्यता ने विकास की नई ऊंचाइयां छुई हैं, वैसे वैसे प्रकृति और विकास के बीच संतुलन का प्रश्न गहराता गया है. क्योंकि मानव अपने स्वभाव से जिज्ञासु और सृजनशील है. उसने जंगलों को काटकर नगर बसा

आए जो अब महानगरों तक परिवर्तित हो गए हैं। पगडंडियों को राजमार्गों में बदल दिया, नदियों पर बड़े से बड़े पुल और गगनचुंबी इमारतें तक खड़ी कर दी। निसंदेह ये विकास मानव बुद्धि और मेहनत का अद्भुत उदाहरण है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या विकास की इस यात्रा में हमने प्रकृति को अपना सहभागी बनाया है या फिर केवल संसाधन मानकर उसका दोहन ही किया है। प्रकृति को हम हमेशा अपने साथ लेकर चलें, तभी प्रकृति भी हमारा साथ देगी। प्रकृति की अपनी एक लय होती है, वो संतुलन में भरोसा करती है। जंगल केवल लकड़ी का स्रोत नहीं होते, वे वर्षा चक्र को बनाए रखते हैं। ऐसे ही नदियां महज जलधाराएं नहीं होती, वो तो संपूर्ण सभ्यताओं की जीवन रेखा है। इसी तरह पहाड़ सिर्फ पत्थरों के ढेर नहीं है बल्कि जलवायु और जैव विविधता के संरक्षक हैं। जब इस प्राकृतिक व्यवस्था से हद से ज्यादा छेड़छाड़ होती है तब उसका प्रभाव केवल पर्यावरण पर नहीं बल्कि समूचे मानव जीवन पर दिखाई देता है। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना कर रही है। कहीं भीषण गर्मी है, कहीं असामान्य वर्षा, तो कहीं अचानक आने वाली बाढ़। हमारे वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग न किया गया तो भविष्य की पीढ़ियों को इसका गंभीर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये चुनौती हमारे भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में तो और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। एक ओर बढ़ती आबादी की आवश्यकताएं तो दूसरी ओर सीमित प्राकृतिक संसाधन। ऐसे में विकास भी जरूरी है और पर्यावरण संरक्षण भी। लेकिन अच्छी बात यह है कि दुनिया की सोच बदल रही है, जो अब भौतिक विकास के इतर प्रकृति को अपने साथ लेकर चलने का रास्ता अख्तियार करने की ओर प्रयासरत है। सही भी है, सतत विकास का सीधा सा अर्थ है कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति इस तरह करना कि आने वाली पीढ़ियां हमें कोस न पाएं। भारत ने इस ओर तमाम सकारात्मक कदम उठाए हैं, जिनमें नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का विस्तार हो रहा है, जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, नदियों का पुनर्जीवन, वृक्षारोपण और जैव विविधता संरक्षण सरीखे तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। ये प्रयास महज सरकारी योजनाएं नहीं बल्कि भविष्य को सुरक्षित बनाने को महत्वपूर्ण कदम हैं। लेकिन सिर्फ सरकार की नीतियां ही काफी नहीं होती। सकारात्मक परिवर्तन तो तब दिखाई देता है जब समाज खुद उस ओर आगे बढ़ता है। अगर हर एक नागरिक प्रकृति को संभालने के लिए जीवन में छोटे छोटे संकल्प ले, जैसे पानी की बचत करना, बिजली की फिजूल खर्ची रोकना, एकल उपयोग प्लास्टिक से बचना, पेड़ पौधे रोपित करना, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ाना और खासतौर से अपने आसपास साफ सफाई रखना और हरियाली को बढ़ावा देना, तो हम देखेंगे कि इन छोटे छोटे प्रयासों का सामूहिक प्रभाव इतना व्यापक होगा कि प्रकृति का सौंदर्य अपने आप निखरा हुआ नजर आने लगेगा। और वैसे भी हमारी संस्कृति में तो प्रकृति को परिवार का सदस्य माना जाता है। हमारी परंपराएं पृथ्वी को माता, नदियों को देवी और पेड़ पौधों को जीवनदाता कहती आई हैं। ये हमारी महज आस्था नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति उत्तरदायित्व का संदेश भी है। स्मार्ट शहर तभी सफल होंगे जब आधुनिक विज्ञान और अपनी सांस्कृतिक विरासत दोनों को हम साथ लेकर चलेंगे। जहां हरियाली बिखेरते वन भी नजर आएंगे और बड़े बड़े कल कारखाने भी। कृषि भी तभी टिकाऊ होगी जब मिट्टी, जल और जैव विविधता का संरक्षण भी साथ साथ होगा। याद रखिए, प्रकृति कभी प्रतिशोध नहीं लेती, वो केवल अपना संतुलन स्थापित करती है। अगर हम उसके नियमों का सम्मान करेंगे तो वो हमें समृद्धि, सुरक्षा और स्वस्थ जीवन देगी, और अगर हम उसकी सीमाओं को लांघेंगे तो अंततः हमें उसका प्रभाव भुगतना ही पड़ेगा। आज के समय की सबसे बड़ी मांग विकास और पर्यावरण में से एक को चुनने की नहीं है बल्कि दोनों के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। महात्मा गांधी का एक कथन है कि पृथ्वी प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता पूरी कर सकती है लेकिन किसी एक के लालच को नहीं। इसलिए हम सभी संकल्प लें कि विकास की हर नई राह पर प्रकृति को अपना साथी बनाएंगे, क्योंकि जब प्रकृति सुरक्षित होगी तभी मानवता का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। हम देखते हैं कि विश्व स्तर पर भी आज ग्रीन इकोनॉमी और सर्कुलर इकोनॉमी जैसी अवधारणा

0: संस्थाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इनका एक ही उद्देश्य है और वो है प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, अपशिष्ट को कम करना, पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना और आर्थिक विकास को पर्यावरण के अनुकूल बनाना। ये केवल पर्यावरण की रक्षा का उपाय नहीं बल्कि भविष्य की अर्थव्यवस्था का आधार बनता जा रहा है। आज एक महत्वपूर्ण बात और है, वो है युवाओं की भूमिका, जो इस परिवर्तन में सबसे महत्वपूर्ण है। देखने में आता है कि आज का युवा इस परिवर्तन में यानी कि पर्यावरण के प्रति पहले से कहीं ज्यादा जागरूक है। स्कूल, कॉलेजों, स्वयंसेवी संगठनों और सामाजिक अभियानों के माध्यम से लाखों युवा वृक्षारोपण, स्वच्छता, जल संरक्षण और प्लास्टिक मुक्त वातावरण के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। अगर यही चेतना आने वाले सालों में जन चेतना का रूप लेती है तो भारत का सतत विकास में विश्व के लिए एक प्रेरक उदाहरण होगा। इसी तरह ग्रामीण अंचलों में रहने वाले लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान हो सकता है और वो भी अमूल चूल बदलाव से। जैसे जो लोग खेती किसानी से जुड़े हैं उन्हें पर्यावरण और भूमि की उर्वरा शक्ति को बचाने के लिए कुछ खास नहीं करना है, बस खेती के तरीकों में थोड़ा सा बदलाव करके उसे केमिकल से मुक्त करके यानी कि प्राकृतिक तरीकों से खेती करना है। इसमें दोनों ओर से मुनाफा है, एक ओर तो रासायनिक खेती छोड़ने से खर्च घटेगा और दूसरी ओर प्राकृतिक खेती करने पर सरकार की ओर से आर्थिक और विभागीय मदद भी मिलेगी, जिसमें सबसे बड़ा फायदा पर्यावरण और मृदा की गुणवत्ता का होगा। और दूसरा सबसे बड़ा लाभ जो होगा वो ये कि रासायन मुक्त अन्न इंसानी शरीर को रोग मुक्त रखेगा, जिससे कि दवाओं पर होने वाला अनावश्यक खर्चा भी बचेगा। यानी कि ये तभी संभव है जब आप प्रकृति के साथ चलेंगे। प्रकृति हमसे कुछ नहीं मांगती, बस हमें उसे अपने साथ लेकर चलना है, फिर वो हमें अपने आशीर्वाद से मालामाल कर देगी।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मिथिलेश कुमार शर्मा की वार्ता, जिसका विषय था मानवीय विस्तार में संतुलन तलाशती प्रकृति। इसी के साथ हमारा आज का विविधा कार्यक्रम यही संपन्न होता है। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से बस कुछ ही देर में।

0: गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विचार है, समुद्र को किनारे खड़े रहकर उसे देखते रहने भर से तुम समुद्र के पार नहीं जा सकते।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।
2: अच्छी होती है प्रगति उतनी ही।
1: मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 757 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 24 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कुशीनगर को दी 525 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। अयोध्या में आज हुई श्री राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक। 30 जुलाई तक सभी प्रमुख निर्माण कार्य पूरे करने का लक्ष्य। समिति अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने चढ़ावा गबन मामले पर कहा, भविष्य में नहीं होगी ऐसी पुनरावृत्ति। राज्य में कल मनाया जाएगा पौधरोपण अभियान। एक दिन में लगाए जाएंगे 35 करोड़ पौधे। और प्रदेश में कई जनपदों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए जारी की भारी वर्षा की चेतावनी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर के पिपराइच विधानसभा क्षेत्र में 757 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 24 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न सरकारी

0: योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र में विकास होगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी से प्रगति होगी और इससे देश में समृद्धि आएगी।
1: स्पीड जितनी अच्छी होती है कनेक्टिविटी के लिए, प्रगति उतनी ही तेज होगी, और प्रगति होगी तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति की भी, समाज की भी और देश की भी समृद्धि होगी। समृद्धि होगी तो खुशहाली होगी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर जिले के रामकोला विकासखंड के टिकुआटार में आयोजित एक कार्यक्रम में कुशीनगर, रामकोला और हाटा विधानसभा क्षेत्रों की 525 करोड़ रुपए की लागत वाली 464 विभिन्न विकास परियोजनाओं

0: रूपये की लागत वाली 464 विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार आने के बाद कुशीनगर जिले की तस्वीर बदल गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कुशीनगर को इंसेफेलाइटिस से मुक्त कर बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया है, साथ ही मुसहर जाति के लोगों को आवास के साथ सरकारी योजनाओं का लाभ देकर जीवन को बेहतर बनाया है। श्री योगी ने कहा कि कुशीनगर भी बाकी जनपदों के साथ विकास की यात्रा में सहभागी बन रहा है। जल्द ही कुशीनगर को एयर कनेक्टिविटी के जरिए जेवर एयरपोर्ट समेत अन्य राज्यों से जोड़ा जाएगा।
1: कुशीनगर को बेहतरीन सेवा हम देने जा रहे हैं और हम तो जेवर के साथ भी कुशीनगर को जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, गया के साथ जोड़ने जा रहे हैं। अच्छे और नए एयरक्राफ्ट कुशीनगर की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे। अब हमारे कुशीनगर के नौजवानों को अपनी खेती को आधुनिकता के साथ जोड़ने के लिए इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं, कुशीनगर में ही हम लोग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दे चुके हैं, कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर में ही बन रहा।
0: अयोध्या में आज श्री राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में मंदिर निर्माण से जुड़े विभिन्न कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में बाउंड्री वॉल, ट्रस्ट भवन, गेट नंबर 3, अतिथि गृह, ऑडिटोरियम समेत अन्य निर्माण कार्यों की स्थिति पर चर्चा हुई। इन सभी परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए उनकी टाइमलाइन भी तय की गई। वहीं कल होने वाली बैठक में 20 दीर्घाओं वाले राम कथा संग्रहालय के तकनीकी पहलुओं और वीडियो प्रस्तुतियों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बैठक से पूर्व श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि 30 जुलाई तक राम मंदिर के सभी प्रमुख निर्माण कार्य पूरे होने का लक्ष्य है। उन्होंने मंदिर चढ़ावा गबन मामले पर कहा कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी, आने वाले दिनों में व्यवस्थाओं में सुधार होगा।
2: यह अपने में एक तरीके का कलंक है, एक तरीके से राम मंदिर में यह घटना घट गई, इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं, एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं। तो यह व्यवस्था का एक प्रश्न है, व्यवस्था में सुधार होगा मुझे पूरा विश्वास है और इस प्रकार की घटनाएं दोहराई नहीं जाएंगी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर से प्रदेशव्यापी पौधरोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। श्री योगी गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के समीप और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधा लगाएंगे। पौधरोपण महाअभियान के जरिए प्रदेश सरकार ने इस बार 35 करोड़ पौधरोपण करने का लक्ष्य तय किया है। इस अवसर पर जनसभा कर वो प्रदेशवासियों से पौधरोपण महायज्ञ में हिस्सेदारी करने का आह्वान करेंगे। अभियान में प्रदेश के सभी विभाग, स्कूल, कॉलेज और संस्थान हिस्सा लेंगे। पौधरोपण महायज्ञ के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश के वन और पर्यावरण मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम को लेकर गोरखपुर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
3: पौधरोपण के इस लक्ष्य में गोरखपुर को 55,28,600 पौधरोपण की जिम्मेदारी मिली है। सभी पौधशालाओं में गुणवत्ता युक्त पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गई है। पौधों के बेहतर विकास एवं उत्तर जीवित के लिए चिन्हित रोपण स्थलों पर एडवांस सॉइल वर्क के अंतर्गत गड्ढा खुदाई, टॉप सॉइल की व्यवस्था, पौधरोपण के स्थलों का विकास, पौध संरक्षण के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं तथा अन्य तैयारियां पूरी है। कुल 27 विभागों के सामंजस्य से यह पौधरोपण किया जाएगा। इसमें गोरखपुर के वन विभाग, ग्राम विकास विभाग, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, पर्यावरण विभाग, पंचायती राज विभाग व राजस्व विभाग को जिम्मेदारी दी गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए जीएन चौबे, गोरखपुर।
0: वहीं उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि इस अभियान में उच्च शिक्षा विभाग की ओर से 20,00,000 पौधों का रोपण किया जाएगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर लखनऊ आएंगे। भाजपा लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने बताया कि श्री सिंह किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय KGMU के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के लोकार्पण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाने वाला ये दिन बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है।

0: है। इस अवसर पर प्रदेश के कई जिलों में विविध कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर कहा कि जनसंख्या में संतुलन ही समृद्ध समाज का आधार है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उन्होंने लोगों से जनसंख्या संतुलन और परिवार कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संकल्प लेने की अपील की। इसी क्रम में पीलीभीत जिले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ बीसी पंत ने एक जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आगामी श्रावण मास के दौरान होने वाली कांवड़ यात्रा को सकुशल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से विभिन्न जिलों में प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। वाराणसी जनपद में पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल और जिलाधिकारी सतेंद्र कुमार ने आज संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मार्ग पर की जा रही तैयारियों को बारीकी से देखा और श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा से जुड़े सभी बिंदुओं की समीक्षा की। अधिकारियों ने निर्देशित किया कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। सिद्धार्थनगर जिले में आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 146 नवजोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। इस अवसर पर डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि सरकार जनता के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए संकल्पित है। रामपुर जिले में आज एक ट्रक और कार की टक्कर में चार व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा तब हुआ जब टांडा क्षेत्र में एक कार मक्के से भरे ट्रक में पीछे से टकरा गई। कार में सात व्यक्ति सवार थे, जिनमें से चार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जौनपुर और सोनभद्र में 10 से 12 जुलाई 2026 तक आयोजित हो रही 43वीं उत्तर प्रदेश पुलिस वाराणसी जोनल बैडमिंटन और टेबल टेनिस क्लस्टर प्रतियोगिता में जौनपुर पुलिस ने शानदार प्रदर्शन किया है। जौनपुर के अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आतिश कुमार ने टेबल टेनिस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई जनपदों में हुई भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। लखीमपुर खीरी के पलियाकला में शारदा नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 757 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 24 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कुशीनगर को दी 525 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। अयोध्या में आज हुई श्रीराम मंदिर निर्माण समिति की बैठक। 30 जुलाई तक सभी प्रमुख निर्माण कार्य पूरे करने का लक्ष्य। समिति अध्यक्ष नृपेन्द्र मिश्रा ने चढ़ावा गबन मामले पर कहा, भविष्य में नहीं होगी ऐसी पुनरावृत्ति। राज्य में कल मनाया जाएगा पौधरोपण महाअभियान। एक दिन में लगाए जाएंगे 35 करोड़ पौधे। और प्रदेश के कई जनपदों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए जारी की भारी बारिश की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: स्वामी विवेकानंद के अनुसार, तुम ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं कर सकते जब तक स्वयं में विश्वास न कर लो।
2: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आगरा केंद्र। स्टूडियो की घड़ी में 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। आज विश्व जनसंख्या दिवस पर केंद्रित आज हम आपके लिए लाए हैं काव्य गोष्ठी, जिसका विषय है संख्या संवाद, जिसमें प्रतिभागी हैं डॉक्टर शेषपाल सिंह शेष, सुरेंद्र सिंह वर्मा सजग, सतेंद्र सिंह निर्झर, वेद प्रकाश एजमणि, मुकेश कुमार उपाध्याय के संचालन में। आइए सुनते हैं काव्य गोष्ठी, जिसका विषय है संख्या संवाद।
3: आकाशवाणी आगरा के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आज विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जन जन में चेतना जागृत करने के लिए कवियों की संगोष्ठी के आयोजन में पधारे हुए हमारे देश के विभिन्न स्थानों से आए हुए कवियों डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा सजग जी, डॉक्टर शेषपाल सिंह शेष जी, श्री सत्येंद्र सिंह निर्झर जी, श्री वेद प्रकाश मणि जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर मुकेश मणिकांचन आज के इस कार्यक्रम

0: कार्यक्रम का संगोष्ठी का संचालन करते हुए आप सबसे निवेदन करता हूं कि कविता का वह मूल गुण जो जन जागृति के लिए सदैव से जाना जाता है, आप सब बारी बारी से एक जन जागरण की पंक्तियां रखते हुए आप सबसे निवेदन करूंगा कि आज विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर अपनी कविताओं से जन जागरण एक नई दृष्टि और चेतना देने का प्रयास करें। फिर नया सूरज सुबह का साथ लेकर आ गए हैं, फिर नए कुछ कीमती जज्बात लेकर आ गए हैं। ऐ चिरागो, अब किसी उम्मीद को बुझने न देंगे, हम उजालों की नई सौगात लेकर आ गए हैं। आइए, मैं निवेदन कर रहा हूं अपने काव्य को छंदों के माध्यम से प्रस्तुत करने वाले एटा से पधारे श्री सत्येंद्र सिंह निर्जर जी से। आए,
1: बहुत बहुत धन्यवाद संचालक जी। विश्व जनसंख्या दिवस पर इस कार्यक्रम, इस गोष्ठी में सभी का अभिनंदन करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए विश्व जनसंख्या दिवस पर एक घनाक्षरी छंद दे रहा हूँ, सुनेगा
2: जी। स्वागत भाई।
1: की बढ़ती जनसंख्या आज उन्नति में बाधक है, आप जान जाइए जी औरों को जनाइए। बड़े बड़े परिवार कष्टों की भरमार, मानो मेरी बात आप स्वयं देखवाइए। छोटा हो जो परिवार खुशियां मिले हजार, खुशहाल जिंदगी का रास्ता बनाइए। और खान पान रहन सहन स्वास्थ्य जो जाओ ठीक, छोटे परिवार वाली नीत अपनाई। छोटे परिवार। और इसी संबंध में दूसरा घनाक्षरी देखें कि बाग बगीचे खेत खलिहान घट रहे, बढ़ती ही जा रही हैं रोज नई बस्तियां, और सूखते ही जा रहे हैं नदी नाले ताल कूप, पेड़ों से झर रही हरी हरी पत्तियां, लुप्त तो होते जा रहे हैं पर्वत पहाड़ियां, बढ़ रहे हैं कारखाने जल रही हैं भट्टियां, और जनसंख्या वृद्धि यदि यूं ही बढ़ती रही तो निर्झर मिट जाएंगी तेरी सब बस्तियां, निर्झर मिट जाएंगी तेरी सब हस्तियां। जैसा कि अभी वर्षा का मौसम चल रहा है तो एक सवैया छंद देखिएगा।
2: स्वागत है भाई, स्वागत।
1: कि मन भावन सावन माए सखी, बरसात स्नेह लगे यतिनी को, मन भावन सावन माह सखी, बरसात स्नेह लगे यतिनी को, मधु गीत सुनावत कोयलिया, सुच रूप भयो रमणीक मही को, परदेश पिया सुदे आए रही, तन बूंद गिरे हुलसावती जी को, सकी साजन साथ नहीं अब के, बिन साजन सावन लागत फीको, बिन साजन सावन लागत फीको। और एक और छवैया छंद देखें साहब बरसात पर, के स्वर गूंज तनाई मलारन के, कजरी बिन गीत को गावन कैसो, स्वर गूंज तनाई मलारन के, कजरी बिन गीत को गावन कैसो, सखी पीपल डाल ही डोले नहीं, करियावद रामन भावन कैसो, भैया नहीं आयो बुलान हमें, सखी बाबुल को घर आंगन कैसो, बरसात वही द्रग भीज गए, मन भावन ये सखी सावन कैसो, मन भावन ये सखी सावन कैसो। और एक छोटा सा गीत निवेदित कर रहा हूं आप सभी की सेवा में कि यार।

0: वाह वाह।
1: और दूसरा बन देखिएगा
2: के रूह रूह का मन का मन से जब रिश्ता हो जाता है एहसासों का।

0: हो जाएगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ये थे भाई सत्येंद्र सिंह निर्झर, आपने जो विषय था उस पर बहुत सुंदर छंद प्रस्तुत किए। उसके अतिरिक्त श्रावण मास आसन्न है तो एक वह फुहार भी आपने एक गीत के माध्यम से रखी, धन्यवाद। आइए चलते हैं एक दूसरा स्वर, एक बड़ा स्वर गीत का हमारे मध्य, डॉक्टर शेषपाल सिंह शेष जी के रूप में उपस्थित है। मैं उनसे आग्रह कर रहा हूँ कृपया अपना रचना पाठ प्रस्तुत करें।
3: जी, आज हम संवाद कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं विश्व जनसंख्या के ऊपर। जनसंख्या से ही पृथ्वी प्रभावित है, हम उसको किस ओर ले जाएं, अच्छाई की ओर ले जाएं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं और हैं जो बुराई की ओर ले जा रहे हैं। तो मैं इस संबंध में एक गीत प्रस्तुत करता हूं, शीर्षक है जनसंख्या।
2: स्वागत है।
3: जनसंख्या पर करें विचार, जनसंख्या पर करें विचार, जागृत हो जाए संसार। जनसंख्या पर करें विचार, जागृत

हुआ प्रदूषण का विस्तार, हुआ प्रदूषण का विस्तार, जागृत हो जाए संसार, जनसंख्या पर करें विचार, जागृत हो जाए संसार। पर्यावरण प्रभावित है, जीव शुद्धता आश्रित है, घटने लगी वनस्पतियां, घटने लगी वनस्पतियां, रोग धोग संभावित है, रोग धोग संभावित है, कुदरत है।

0: विचार,
1: क्या बात है,
0: उपजे नहीं विभिन्न विकार, जागृत हो जाए संसार, जनसंख्या पर करें विचार, जागृत हो जाए संसार, नहीं अंध विश्वास करें, नहीं अंध विश्वास करें, सुखद भविष्यत आस करें, सुखद भविष्यत आस करें, सजग रहे संभले दुनिया, सजग रहे संभले दुनिया, शुद्धिकरण विकास करें, शुद्धिकरण विकास करें, रोकें जो कुछ है बेकार, रोकें

संसार जनसंख्या पर करें विचार, जागृत हो जाए संसार। और अंत में इसका कि जनसांख्यिकी न बढ़ पाए, जनसांख्यिकी न बढ़ पाए, जग उन्नति पर चढ़ पाए। शिक्षित हों विज्ञान पढ़ें, शिक्षित हों

0: संसार
1: बढ़िया बढ़िया
0: जनसंख्या पर करें विचार, जागृत हो जाए संसार।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर शेषपाल सिंह शेष जी। जनसंख्या पर विचार से संबंधित रचना आपने पूरी गहराई से पड़ताल प्रस्तुत की इस समस्या की, और ये मनुष्य के अंतर चेतना को झकझोरने का एक तरह से प्रयास किया आपकी कविता के भावों ने, आपको बहुत धन्यवाद। आइए गीत और छंद की इस विधा के उपरांत काव्य की एक सशक्त विधा जो आज के समय में सर्वाधिक प्रासंगिक है, और वह है व्यंग। एक व्यंगकार के रूप में अलीगढ़ से चलकर आए भाई वेद प्रकाश मणि जी हमारे मध्य हैं। आइए सुनते हैं कि वो अपने व्यंग के माध्यम से आज के विषय पर क्या कहते हैं। आए भाई वेद प्रकाश मणि जी।
3: नमस्कार साथियों। भौतिकवादी युग में बढ़ती हुई जनसंख्या का प्रभाव निसंदेह देश, समाज एवं परिवार में कुछ विसंगतियों के रूप में अवश्य ही पड़ता है, ये मेरा अपना मानना है। इसलिए नियंत्रण एवं संतुलन बनाए रखना भी बहुत जरूरी। तो कुछ विसंगतियां पारिवारिक स्थिति के रूप में आपके समक्ष रखने का प्रयास और कुछ सुझाव भी। विश्व में जनसंख्या बढ़ रही है, विश्व में जनसंख्या बढ़ रही है, नए नए आयाम गढ़ रही है। विश्व में जनसंख्या बढ़ रही है, नए नए आयाम गढ़ रही है। चांद पर पहुंच रहे हैं लोग, किंतु मानवता सिकुड़ रही है, किंतु मानवता सिकुड़ रही है। वैसे तो दो और दो चार होते हैं, चूंकि संख्या संवाद विषय सामिक गोष्ठी कि वैसे तो दो और दो चार होते हैं, मिलने पर मधुर व्यवहार होते हैं। वैसे तो दो और दो चार होते हैं, मिलने पर मधुर व्यवहार होते हैं। वहाँ संख्या बल मायने नहीं रखती, जहाँ पर संगठित परिवार होते हैं, जहाँ पर संगठित परिवार होते हैं। और कुछ दृश्य मैं आपके समक्ष और रखना चाहता हूँ। पारिवारिक स्थिति देखिए कि यदि इच्छाओं की भूख सिर चढ़ने लगी है, यदि इच्छाओं की भूख सिर चढ़ने लगी है और स्थिति

वाहेरी हस्तक्षेप समझो बढ़ने लगी है, वाहेरी हस्तक्षेप समझो बढ़ने लगी है। और जब से घर में मतभेद बढ़ने लगे हैं, कि जब से घर

0: बजे यही कि लोग फिर बिछुड़ने लगे हैं, बजे यही कि लोग फिर बिछुड़ने लगे हैं।
1: वाह
0: और परिवार का एक दृश्य और देखिए कि घर
1: स्वागत
0: में चार बहू बेटे और बेटियां, एक आप अनुमान लगाइए कि परिवार में कितने सदस्य हैं, फिर भी ये स्थिति क्यों कि घर में चार बहू बेटे और बेटियां, फिर भी मात पिता को कम है रोटियां,
1: रोटियां। वाह
0: कि घर में चार

है बोटियां, बटवारे के संग खुलती लंगोटियां, बटवारे के संग खुलती लंगोटियां। और आज जो हमारे परिवार में कुछ ऐसे वृद्ध जनों की स्थिति उत्पन्न हुई है कि जिनको वृद्ध आश्रम में रहने का भी एक दुर्भाग्य

ये बस कारण रहता है। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं कहना चाहता हूं कि माँ बाप कितने लाचार हो जाते हैं, तब वो कहते हैं कि बेवजह लबों पे जिनके फिर से पहरे हैं, कि बेवजह लबों पे जिनके फिर से पहरे हैं, मत पूछिए कि घाव और कितने गहरे हैं, कि बेवजह लबों पे जिनके फिर से पहरे हैं, मत पूछिए कि घाव और कितने गहरे हैं, कि वेदना वो अपनी क्या सुनाए साथियों, वेदना

ठहरे हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि अपेक्षा व उपेक्षा से कुछ हार जाते हैं, अपेक्षा व उपेक्षा से कुछ हार जाते हैं, इसीलिए विरोधी बाजी मार जाते हैं। अपेक्षा व उपेक्षा से कुछ हार जाते हैं, इसीलिए विरोधी बाजी मार जाते हैं। गुरु मात पिता अन्य का जो प्यार पाते हैं, वो सबका साथ पाके लक्ष्य पार जाते हैं, वो सबका साथ पाके लक्ष्य पार जाते हैं। और जो आज कुछ विसंगति है समाज में, देश में, उसको मैं व्यंगात्मक रूप से भी कहना चाहता हूं कि फिर से शिकारी आए हैं एक नाव में, कि फिर से शिकारी आए हैं एक नाव में, जाने कितनी मछली फंसेंगी दाव में। कि फिर से शिकारी आए हैं एक नाव में, जाने कितनी मछली फंसेंगी दाव में। रूप बदल के आए हैं फिर से गांव में, खलल पड़ेगी गांव की ठंडी छाँव में, खलल पड़ेगी गांव की ठंडी छाँव में। और एक मन गीत के माध्यम से मेरा मन है कि आप तक मैं वो बात पहुंचाऊं कि मन गंगा है तन पावन है, धरती पर सब मन भावन है। मन

0: वृंदावन है। और
1: स्वागत
0: अंतिम बंद देखिए,
1: है।
0: मन ने संयम यदि तोड़ा है, पर्याप्त न लगता थोड़ा है। मन ने संयम यदि तोड़ा है, पर्याप्त न लगता थोड़ा है। यदि संतुष्टि चादर ओढ़ा है, सुख ने दामन ना छोड़ा है। यदि संतुष्टि

0: नाम है।
1: बहुत सुंदर भाई वेद
0: बहुत
1: प्रकाश
0: बढ़िया।
1: मणि जी।
0: और इसी गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए आज जो इस गोष्ठी का श्रेष्ठ संचालन कर रहे हैं हमारे भाई डॉक्टर मुकेश मणकांचन जी, जो कि सिरसागंज की माटी से यहाँ हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। हम चाहते हैं कि इस काव्य गोष्ठी में भी उनकी भी अपनी काव्य वाणी के माध्यम से अपना योगदान दें। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं श्री मुकेश मणकांचन जी।
1: बहुत धन्यवाद भाई मणि जी, बहुत सुंदर गोष्ठी, संदेश प्रद रचनाओं का वाचन।

0: गीत, छंद और व्यंग, ये विभिन्न विधाएं यहाँ हमने देखी। मैं चाहता हूँ कि आगरा आकाशवाणी के क्षेत्र में ब्रजभाषा के प्रति लोगों का जो प्रेम है, एक ब्रजभाषा का छोटा सा लोकगीत, समय की अपनी सीमा है और इसी विषय पर यद्यपि बातें वो पूर्व की कविताओं में वही हैं, लेकिन थोड़ा सा स्वरूप बदला हुआ है, सुनिएगा।
1: स्वागत।

दबी बिचारी, सुनो तुम भैया बात हमारी, संसाधन छोटे पड़ गए हैं, आश्वासन झूठे पड़ गए हैं।

हाल बिगारी। सुनो तुम भैया बात हमारी, धरा पर संकट आयो भारी, धरा पर संकट आयो भारी। और क्या स्थितियां हैं, बढ़ती जनसंख्या का क्या दुष्प्रभाव है कि खेत मढ़ैया बट बट कट गए, खेत मढ़ैया बट बट कट गए, रही बची पटवारी चट गए, रही बची पटवारी चट गए। मुश्किल गुजर चल रही घर की,

0: रात हमारी, धरा पर संकट आयो भारी। अब ये गलतियां क्यों हुई कि भूल गयो परिवार नियोजन, भूल गयो परिवार नियोजन, कठिन भयो पेट भर भोजन, कठिन भयो पेट भर भोजन, खर्चा बहुत कमाई कम है, खर्चा बहुत कमाई कम है, बढ़ती जाए उधारी, सुनो तुम भैया बात हमारी, सुनो तुम भैया बात हमारी। और अंत में निवेदन एक कवि करता है आप सब श्रोताओं से, मत बदहाली गले लगाओ, मत बदहाली गले लगाओ, फैमिली प्लानिंग को अपनाओ, फैमिली प्लानिंग को अपनाओ, बच्चे दो ही तो अच्छे हैं, बच्चे दो ही तो अच्छे हैं, महके जीवन फुलवारी, सुनो तुम भैया बात हमारी, सुनो तुम भैया बात हमारी, धरा पर संकट आयो भारी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब ने सराहा। और आइए चलते हैं अब गोष्ठी के शीर्ष की ओर। एक ऐसे काव्य के व्यक्तित्व जिनके पास गहन जीवन अनुभव है, वे कभी एक किसान के रूप में काम करते हैं, कभी एक अधिवक्ता के रूप में काम करते हैं, कभी वो एक राजनीतिक नेतृत्वकर्ता के रूप में काम करते हैं। अपने जीवन में विभिन्न अनुभव और दृष्टिकोण समेटे हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा सजग जी को। कृपया अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें।
1: धन्यवाद संचालक जी, बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनी। जनसंख्या दिवस का आयोजन है, बिल्कुल मैं इसको मानता हूँ, जनसंख्या का नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें थोड़ा ध्यान ये भी रखना चाहिए कि जनसंख्या का नियंत्रण ऐसा न हो कि जो हमारे रिश्तों को ही खत्म कर दे।
2: क्या बात, बिल्कुल।
1: तो मेरी ये जो रचना है उसको मैंने शीर्षक दिया है कि रिश्तों का क्या होगा। तो एक मिशन बहुत पहले आप लोगों को पता होगा चलाया था सरकार ने कि भाई हम दो हमारी दो, लेकिन अब स्थिति उससे भी और आगे चली गई है, तो मैंने उस पर ही अपने विचार रखे हैं। सुने कि अब तक दो के दो माने थे, आगे जाने क्या होगा, दो के बीच अकेला।

0: वो है परिवारों का क्या होगा, चाचा चाची ताऊ ताई कौन इन्हें पहचानेगा, जीजा जीजी फूफा फूफी कैसे कोई जानेगा, होगी मात अकेली जिसकी मौसी किसे बताएगा, होगा अगर अकेला बालक यह जग बहुत सताएगा। वह भी जाने कहाँ बसेगा, वो अकेला है उसका क्या पता वो कहाँ बस जाएगा, वह भी जाने कहाँ बसेगा, घर वालों का क्या होगा, अब तक दो के दो माने थे आगे जाने क्या होगा, खड़े रहेंगे महल तिवारे सुने सब रह जाएंगे, बाहर जाने पर निगरानी तुम किसको कह जाएंगे, दुख में सुख में सदा अकेला कैसे मन लग पाएगा, चारों ओर लगेगा सूना अपना नजर न आएगा, रह जाएंगे माता पिता ही फिर रिश्तों का क्या होगा, अब तक दो के दो माने थे आगे जाने क्या होगा, देवर भाभी जेठ जेठानी कहने भर की बातें होंगी, नेग टेक के गीतन होंगे नहीं जगानी रातें होंगी, बिना बहन कब राखी होगी भैया दूज कहाँ होगी, देवर भाभी की होली जी घर घर धूम कहाँ होगी, भाई चारा मिट जाएगा बंधु प्रेम का क्या होगा, अब तक दो के दो माने थे आगे जाने क्या हुआ, दुनिया की इस चकाचौंध में कितने लोग सफल होंगे, माता पिता से अलग लाडले आज नहीं तो कल होंगे, शिक्षा पाने पुत्र अकेला परदेशी बन जाएगा, माता पिता का जीवन दुष्कर एकाकी बन जाएगा, बेटा अगर नहीं लौटा परदेश चला गया पढ़ने के लिए और नहीं लौटा क्या होगा, बेटा अगर नहीं लौटा तो माता पिता का क्या होगा, अब तक दो के दो माने थे आगे जाने क्या होगा। एक कहावत है कि मूल से ब्याज ज्यादा प्यारी होती है, ब्याज मूल से प्यारी जाता समझो दादा दादी से, इसीलिए तो पोता पोती सदा लिपटते दादी से, मधुर तोतली बोली सुनकर फूले नहीं समाते हैं, तनिक चोट लग जाए उनको आंसू बहुत बहाते हैं, ख्वार बुढ़ापा बिना उन्हीं के ख्वार बुढ़ापा बिना उन्हीं के अंतर जाने क्या होगा, अब तक तो के दो माने थे आगे जाने क्या होगा, सदियों की प्राचीन रिवाजें कैसे कौन निभाएगा, परिवारों की बिगड़ी बातें कैसे कौन बनाएगा, अब तक एक परिवार में कहीं कोई बात बिगड़ गई तो परिवार इकट्ठा हुआ तो मिलकर उस बात को बना लेते, लेकिन अब क्या होगा कि परिवारों की बिगड़ी बातें कैसे कौन बनाएगा, माता पिता को कंधा देने पासन कोई परिवारी, माता पिता को कंधा देने पासन कोई परिवारी, तब बेटे को वर्थी तक भी हो जाएगी अति भारी, तो बेटे को वर्थी तक भी हो जाएगी अति भारी, बस पछतावा रह जाएगा, बस पछतावा रह जाएगा, हाथ हमारे क्या होगा, अब तक दो के दो माने थे आगे जाने क्या होगा, अब तक दो के दो माने थे आगे जाने क्या होगा। धन्यवाद,
1: बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, आपने एक और पहलू एक नया आयाम रिश्तों की तरफ आपने संकेत किया कविता के माध्यम से। आज की इस काव्य गोष्ठी में हम सब ने विश्व जनसंख्या दिवस के जो उद्देश्य हैं, जो चिंताएं हैं पूरी दुनिया की, उन चिंताओं के संबंध में अपनी अपनी राय कविता के माध्यम से रखी, और हम आशा करते हैं कि इन विचारों से प्रेरित होकर हम समस्या के समाधान के लिए हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कदम बढ़ाएगा। आज की काव्य गोष्ठी के लिए मैं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा जी सजग, डॉक्टर शेषपाल सिंह शेष जी, श्री सत्येंद्र सिंह निर्जर जी, श्री वेद प्रकाश मणि जी, सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। नमस्कार।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विश्व जनसंख्या दिवस पर केंद्रित काव्य गोष्ठी संख्या संवाद, जिसका संचालन किया था मुकेश कुमार उपाध्याय ने। इसमें प्रतिभागी थे डॉक्टर शेषपाल सिंह, सुरेंद्र सिंह वर्मा, सत्येंद्र सिंह, वेद प्रकाश। और इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है।

स्टूडियो की घड़ी में 8:02 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्मों से भजनों का कार्यक्रम भजन संध्या। इस कार्यक्रम में आज हमने पहला गीत लिया है फिल्म राम तेरी गंगा मैली से। लता मंगेशकर की आवाज़ ने रविंद्र जैन के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है, रविंद्र जैन ने ही।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से लता मंगेशकर की आवाज में। पंडित नरेंद्र शर्मा के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म जोधा अकबर से बेला शिंदे की आवाज में। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था ए आर रहमान ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म लगान से। आशा भोसले, उदित नारायण, वैशाली और साथियों की आवाज में। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है ए आर रहमान ने।

राधा कृष्ण। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म किसना से, सुखविंदर सिंह, इस्माइल दरबार और आयशा दरबार की आवाज़ में। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है AR रहमान और इस्माइल दरबार ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम गीत लिया है फिल्म ओ माय गॉड से कीर्ति सगाठिया और साथियों की आवाज में। स्वानंद किरकिरे के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है सचिन जिगर ने।

श्रोताओं, फिल्म ओ माय गॉड के इस गीत के साथ ही हमारा आज का भक्ति फिल्मों से भजनों का कार्यक्रम भजन संध्या यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म वीर जारा से उदित नारायण की आवाज में। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है मदन मोहन ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म खट्टा मीठा से, के और सुनिधि चौहान की आवाज में। इरशाद कामिल के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने।

0: श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म सिंघम से कुणाल गांजावाला, ऋचा शर्मा और साथियों की आवाज़ में। स्वानंद किरकिरे के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था अजय अतुल ने। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम चित्रपट संगीत यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने को है। हमारा अगला प्रसारण समाचार संध्या दिल्ली केंद्र से बस कुछ ही देर में।
1: 8:30

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान। फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। और तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ऐतिहासिक 2 दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत

0: बात है।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूँ हम सफल होंगे।
0: मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसके अध्यक्ष होंगे। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फुक्वोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश से और 2 केरलम से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटकों, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। 17 यात्रियों और चालक दल के 4 सदस्यों सहित 21 लोगों को बचा लिया गया और अस्पतालों में भर्ती कराया गया। 2 जीवित बचे लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें गहन चिकित्सा देखभाल दी जा रही है। एक रिपोर्ट।
3: 32 भारतीय पर्यटकों और 4 चालक दल के सदस्यों को ले जा रही यह नाव होन में रूत नगोई द्वीप से लगभग 400 मीटर दूर पलट गई, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। कुछ घंटे पहले हुई इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं प्रभावित परिवारों को जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए हो ची मिन्ह सिटी स्थित भारतीय दूतावास में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यहां 8436789154915237141 और 8433452414 नंबरों से संपर्क किया जा सकता है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई इस दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने राष्ट्र निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका का उल्लेख किया और कहा कि वे आधुनिक शिक्षा के साथ साथ जन समुदाय में देश की संस्कृति और ज्ञान के प्रसार का सशक्त माध्यम है। एक रिपोर्ट।
4: केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय में 32,000 से अधिक पुस्तकों का संग्रह है। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय में शोधकर्ताओं के लिए समर्पित सुविधाएं, एक आधुनिक बहुउद्देशीय सभागार, समकालीन पाठन क्षेत्र, बाल क्षेत्र, एक शोध केंद्र और 1 करोड़ ऑनलाइन पुस्तकों तक पहुंच प्रदान करने वाला एक ई पुस्तकालय मौजूद है। पुस्तकालय में हर स्थान पर मुफ्त वाईफाई उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि कई मॉनिटर भी लगाए गए हैं, जिससे आगंतुक अध्ययन के दौरान नोट्स ले सकते हैं, सामग्री डाउनलोड कर सकते हैं तथा अपने विचारों को और विकसित कर सकते हैं। पुस्तकालय अत्याधुनिक RFID आधारित पुस्तक प्रबंधन प्रणाली से सुसज्जित।

0: संबंधित है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने देशभर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नई दिल्ली में आज विशेष कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये उपलब्धि भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए मजबूत आधार है। श्री पासवान ने योजना के तहत मिलने वाली सीड कैपिटल की सहायता का भी उल्लेख किया। इसके माध्यम से 4,18,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की मदद की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय है मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व जनसंख्या दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सर्वोत्तम पद्धतियों पर मासिक वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्वास्थ्य सेवा नवाचारों को साझा करना और उनका विस्तार करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 भी अपनाई गई।
2: ट्रांसपोर्ट सेक्टर में विशेष रूप से हमारी रोड सेक्टर, रेलवे, जलमार्ग और एविएशन, इस क्षेत्र में कार्बन न्यूट्रल हम कैसे बने, अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल का भी उपयोग कैसे करें और प्रदूषण से तो मुक्ति मिलेगी भी, और उसके साथ साथ जो नई नई टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, रिसर्च है, अलग अलग ब्रिक्स देशों में एक दूसरे में कैसे कोऑपरेशन करें, कोऑर्डिनेशन निर्माण करें, इसके बारे में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है और उसमें आगे की नीति भी तय हुई है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इन इलाकों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा शामिल हैं। इस बीच विभाग ने कल असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम और बिहार में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिनों में बारिश वाले इलाकों के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश में कल लू की स्थिति हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से सक्रिय होने के बाद महाराष्ट्र में खरीफ फसल की बुआई में तेजी आई है। कृषि आयुक्त कार्यालय के अनुसार 6.51 हेक्टेयर पर बुआई पूरी हो चुकी है। इस बुवाई में 7 जुलाई तक गन्ने को छोड़कर राज्य के 14.44 करोड़ हेक्टेयर औसत क्षेत्र के 45% हिस्से को सम्मिलित किया गया है। गन्ने की खेती सहित 6.58 करोड़ हेक्टेयर में बुवाई और रोपाई का काम पूरा हो चुका है। ये कुल क्षेत्र का 42% है। तूफान बावी के चीन के पूर्वी तट की ओर बढ़ने के कारण चीन में एहतियातन 6 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ये तूफान जापान के साकिशिमा द्वीपों और उत्तरी ताइवान से गुजरने के बाद अब चीन के लिए खतरा बना हुआ है। मेघालय अनानास महोत्सव 2026 का 4th संस्करण नई दिल्ली के दिल्ली हाट में शुरू हो गया है। इसमें बाजार संपर्क को बढ़ावा देने के

0: लिए राज्य के अनानास उत्पादकों को प्रदर्शित किया जा रहा है। और अब खेल खबरें। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। फ्रांस और स्पेन पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रीतिका प्रदीप और चिकिता तनिपार्थी की टुकड़ी ने आज तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में रजत पदक अपने नाम किया। टीम को महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा के फाइनल में कोलंबिया से हार का सामना करना पड़ा। वहीं प्रीतिका प्रदीप ने व्यक्तिगत महिला कंपाउंड में कांस्य पदक जीता। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में चेकिया की कैरोलिना मुखोवा और लिंडा नोस्कोवा आमने सामने हैं। वहीं पुरुष डबल्स के फाइनल में ब्रिटेन के हेनरी पैटन और फिनलैंड के हैरी हेलियावारा ने क्रोएशिया के मटे पाविक और अल साल्वाडोर के मार्सेलो अरेवालो की जोड़ी को 7-6, 7-6 से हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया है। भारत ने इंग्लैंड के साथ 5 T20 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला साउथहैम्पटन में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 16 ओवर में 1 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर रखी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेला जा रहा है। दूसरे दिन आज भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक बिना विकेट गवाए 42 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी 170 रन पर सिमट गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi departs for home after concluding landmark New Zealand visit. Says bilateral trade agreement between two countries will accelerate India's journey towards a developed nation. 15 Indians killed in a boat mishap in Vietnam. President, Vice President and Prime Minister express condolence. West Bengal government forms 9-member committee headed by a retired judge to examine draft bill of uniform civil code. Legendary singer S. Janki, known as Nightingale of South India, passes away. IMD forecast heavy rainfall across northern and eastern parts of the country for next 4 to 5 days. In FIFA World Cup, Norway to take on England, while defending champions Argentina to clash with Switzerland in quarterfinals. And Indian women's compound team clinches silver medal at Archery World Cup Stage 4 in Madrid. Prime Minister Narendra Modi has concluded his historic 2-day visit to New Zealand and departed for India. The visit, the first by an Indian Prime Minister to New Zealand in over 4 decades, gave a major boost to bilateral ties. During the visit, Prime Minister Modi held talks with his New Zealand counterpart Christopher Luxon. The two leaders witnessed the exchange of 5 memoranda of understanding in areas including defence, tourism, sports, disaster management and dairy and animal husbandry. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Addressing the gathering, Mr. Modi stated that the future of India and New Zealand is intertwined and the bilateral trade agreement will accelerate India's journey towards a developed nation.
2: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी हैं, वैल्यूज भी हैं और एक कमिटमेंट भी है।

0: The City Stadium at 6:30 a.m. Indian Standard Time. The Indian women's compound team of Jyoti Surekha Venom, Preetika Pradeep and Chikita Taniparthi clinched the silver medal at the Archery World Cup Stage 4 in Madrid, Spain today. The Indian trio went down 228-232 to Colombia in the final. Meanwhile, in women's individual compound event, teenage archer Preetika Pradeep produced a stunning turnaround to beat world number 11 Hazel Borun of Turkey 145-142, clinching her maiden World Cup bronze. In the historic one-off women's test at Lord's Cricket Ground in London, India was 63 for no loss in their second innings on day two when reports last came in. Earlier, England were bowled out for 170 runs in their first innings today. Amy Jones was the top scorer with 53 runs for India. Kranti Gaur took a five-wicket haul while Sayali Satkare and Sneh Rana scalped two wickets each. In men's cricket, England were 241 for 1 in 18.3 overs against India in the fifth and final T20 international of the series in Southampton when reports last came in. Earlier, India won the toss and elected to field. England has already clinched the series with a 3-0 lead, while India will be aiming to register a consolation victory before the teams move on to the ODI series. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi departs for home after concluding landmark New Zealand visit, says bilateral trade agreement between two countries will accelerate India's journey towards a developed nation. 15 Indians killed in a boat mishap in Vietnam, President, Vice President and Prime Minister expressed condolence. West Bengal government forms 9-member committee headed by a retired judge to examine draft bill of Uniform Civil Code. Legendary singer S. Janki, known as Nightingale of South India, passes away. IMD forecasts heavy rainfall across northern and eastern parts of the country for next 4 to 5 days. In FIFA World Cup, Norway to take on England, while defending champions Argentina to clash with Switzerland in quarterfinals. And Indian women's compound team clinches silver medal at Archery World Cup Stage 4 in Madrid. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदा, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड का तारीखी दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस आने के लिए रवाना हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान दोतरफा तिजारती समझौते से एक तरक्की याफ्ता मुल्क की समत भारत के सफर में तेजी आएगी। वियतनाम में कश्ती के एक हादसे में 15 भारतीय अफराद की मौत हो गई है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने ताजियत का इजहार किया है। मगरबी बंगाल सरकार ने यकसां सिविल कोड के बिल के मुसवदे का जायजा लेने के लिए एक रिटायर्ड जज की सरबराही में 9 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी है। जुनूबी भारत की सरकर्दा गुलकारा एस जानकी का इंतकाल हो गया है। भारतीय महकमे मौसमियात ने अगले 4-5 दिन के दौरान मुल्क के शिमाली और मशरकी हिस्सों में तेज बारिश होने की पेशगोई की है। फीफा वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा, जबकि मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। और मैड्रिड में तीरंदाजी वर्ल्ड कप के चौथे मरहले में भारतीय खवातीन की कंपाउंड टीम ने चांदी का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड का 2 दिन का तारीखी दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस आने के लिए रवाना हो गए हैं। पिछले 40 साल में किसी भारतीय वजीर आजम का न्यूजीलैंड का ये पहला दौरा था। जनाब मोदी के इस दौरे से बाहमी ताल्लुकात को बड़ी तकवीयत मिली है। इस दौरे में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के अपने हम मनसब क्रिस्टोफर लक्सन के साथ बातचीत की। दोनों रहनुमाओं की मौजूदगी में मुख्तलिफ शोबों में 5 मुफाहमतनामों का तबादला किया गया। इनमें दिफा, सियाहत, खेल, कुदरती आफात से पैदा सूरतहाल से निमटना, डेयरी और मवेशी परवरी शामिल हैं। جناب مودی کے اس دورے کی ایک بڑی خاصیت آکلینڈ کے سپارک ایرینا میں کمیونٹی کا پروگرام تھا جس میں بھارتی برادری کے 10,000 سے زیادہ افراد نے شرکت کی. وہاں موجود لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ بھارت اور نیوزی لینڈ کا مستقبل ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہے اور دو طرفہ تجارت کے سمجھوتے سے ایک ترقی یافتہ

0: एकता मुल्क की समत भारत के सफर में तेजी आएगी।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
0: इस मौके पर न्यूजीलैंड के वजीर आजम क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत को एक भरोसेमंद दोस्त करार दिया और न्यूजीलैंड की तरक्की में भारतीय बिरादरी के लोगों के रोल की सताइश की और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कयादत को सराहा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जनाब क्रिस्टोफर लक्सन की गर्मजोशी और मेहमान नवाजी के लिए तशक्कुर का इजहार किया और कहा कि भारत न्यूजीलैंड ताल्लुकात में एक नए बाब का आगाज हुआ है। किसी भारतीय वजीर आजम के गुज़श्ता दौरे के बाद से 40 साल के वक्फे का तस्करा करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि अगले दौरे में इतना वक्त नहीं लगेगा।
1: 40 साल के बाद कोई भारतीय पीएम न्यूजीलैंड की धरती पर आया है, ये मेरा सौभाग्य है। मैं न्यूजीलैंड के सभी निवासियों के लिए, आप सभी लोगों के लिए 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं लेकर आया हूं। साथियों, प्रधानमंत्री के रूप में भले ही मेरा पहला न्यूजीलैंड दौरा है, लेकिन 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था, सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था, तब भी मुझे यहाँ न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था।
0: आज वियतनाम के फूक वॉक जजीरे के नजदीक एक कश्ती के डूब जाने से 15 भारतीय सयाहों की मौत हो गई है। वियतनाम में भारतीय सिफारतखाने ने तस्दीक की है कि महलुकीन में 13 मर्द और 2 खवातीन शामिल हैं। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर सिफारतखाने ने महलुकीन की वो फहरिस्त पोस्ट की है जो वियतनाम के अहलकारों ने फराहम की थी। सिफारतखाने के मुताबिक हलाक होने वालों में से 10 का ताल्लुक तमिलनाडु से, 3 का आंध्र प्रदेश से और 2 का केरलम से था। इस कश्ती में 36 लोग सवार थे जिनमें 32 भारतीय सयाह, अमले के 3 अफराद और एक अटेंडेंट शामिल था। 17 मुसाफिरों और अमले के 4 अफराद समेत 21 अफराद को बचा लिया गया और अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। जिंदा बच जाने वालों में से 2 की हालत नाजुक है और इंतहाई तिब्बी निगहदाश्त में उनका इलाज चल रहा है। बचाव मिशन के दौरान वियतनाम के साहली गार्ड रीजन 4 कमांड ने अपने अहलकार तैनात किए और बचाव से मुतालिक सामान का इस्तेमाल किया। मुतासरा कुनबों को मालूमात और मदद फराहम करने के लिए हो ची मिन्ह शहर में भारतीय कौंसल जनरल में एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है। इसके नंबर इस तरह से हैं, +84 36 210 7930, +84 91 552 7314 और +84 33 452 0414। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर सिफारतखाने ने कहा है कि हनोई में एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है और उसका नंबर है +84 91 308 9165। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के फूक वॉक जजीरे के नजदीक कश्ती के अलमनाक हादसे पर दुख का इजहार किया है जिसमें भारतीय शहरी भी शामिल हैं। हादसे पर रंजोगम का इजहार करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सोगवार कुनबों से ताजियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। सदर जमहूरिया ने अपने पैगाम में सभी जख्मियों की जल्द और मुकम्मल शिफायाबी की दुआ की। वजीर आजम मोदी ने इस हादसे में जान गंवाने वालों के कुनबों से ताजियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। उन्होंने कहा कि वियतनाम में भारतीय सिफारतखाना और कौंसल खाना सभी जरूरी मदद फराहम कर रहा है और वियतनाम के ओहदेदारों के साथ करीबी राबते में है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मगरबी बंगाल सरकार ने रियासत के लिए यकसां सिविल कोड के बिल के मुसवदे का जायजा लेने के लिए 9 अरकान पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई है। इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन पहले ही शाया कर दिया गया है। जस्टिस रिटायर्ड रंजना प्रकाश देसाई इस कमेटी की चेयरपर्सन होंगी। मेघालय के साबिक गवर्नर तथागत राय कमेटी के अरकान में शामिल हैं। यकसां सिविल कोड के बिल के मुसवदे का जायजा लेने की खातिर कमेटी तश्कील देने के बारे में

फीफा वर्ल्ड कप में आज रात मियामी स्टेडियम में क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात देर गए 2:30 बजे शुरू होगा। एक और क्वार्टर फाइनल मैच में कंसास सिटी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक कल सुबह 6:30 बजे शुरू होगा। आज स्पेन के मैड्रिड में तीरंदाजी आलमी कप स्टेज 4 में भारतीय खवातीन ज्योति सुरेखा वेनम, प्रतीका प्रदीप और चिकिता तनिपार्थी पर मुश्तमिल कंपाउंड टीम ने चांदी का तमगा जीता। फाइनल में तीनों खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम कोलंबिया से 228-232 से हार गई। चांदी के इस तमगे के साथ टूर्नामेंट के आखिरी मरहले में भारत ने अपना खाता खोला है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड का तारीखी दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस आने के लिए रवाना हो गए हैं। वजीर आजम ने कहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा तिजारती समझौते से एक तरक्की याफ्ता मुल्क की समत भारत के सफर में तेजी आएगी। वियतनाम में कश्ती के एक हादसे में 15 भारतीय अफराद की मौत हो गई है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने ताजियत का इजहार किया है। मगरबी बंगाल सरकार ने यकसा सिविल कोड के बिल के मुसवदे का जायजा लेने के लिए एक रिटायर्ड जज की सरबराही में नौरकान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी है। जुनूबी भारत के सरकर्दा गुलकारा एस जानकी का इंतकाल हो गया है। फीफा वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा, जबकि मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। और मैड्रिड में तीरंदाजी वर्ल्ड कप के चौथे मरहले में भारतीय खवातीन की कंपाउंड टीम ने चांदी का तमगा जीता है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। वर्षा भारत के लिए केवल एक ऋतु नहीं बल्कि नवजीवन का उत्सव है। बादलों का आगमन, धरती की सोंधी गंध, खेतों की हरियाली और लोकगीतों की स्वर लहरियां, ये सब मिलकर हमारी सांस्कृतिक स्मृति का हिस्सा बनते हैं। भारतीय मनीषा ने जल को सदैव जीवन का मूल माना है। ऋग्वेद का ये मंत्र कहता है, आपो हिष्ठा मयो भुवाः, यानी जल ही सुख, समृद्धि और कल्याण का स्रोत है। यही कारण है कि भारत ने जल का केवल उपयोग नहीं किया, उसका सम्मान भी किया। कहीं बावड़ियां बनी, कहीं तालाब, कहीं कुंड, तो कहीं मंदिरों के सरोवर। वर्षा की हर बूंद को संजोना हमारी जीवन पद्धति का एक हिस्सा ही था। आज परिस्थितियां थोड़ी बदल रही हैं, तो कहना चाहिए बदल चुकी हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा का स्वरूप भी बदला। कहीं अतिवृष्टि, कहीं अल्पवृष्टि और कई क्षेत्रों में लगातार गिरता भूजल स्तर, ये संकेत हमें सचेत करते हैं कि जल संरक्षण अब विकल्प नहीं, आवश्यकता है। इसी सोच को जन भागीदारी का स्वरूप देने के उद्देश्य से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कैच द रेन अभियान प्रारंभ किया गया। इसका संदेश है, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, यानी जहां भी वर्षा हो, जब भी वर्षा हो, उसकी प्रत्येक बूंद को सहेजिए। प्रधानमंत्री ने मन की बात के अनेक संस्करणों में भी जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया है। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में तालाबों के पुनर्जीवन, वर्षा जल संचयन और सामुदायिक प्रयासों के प्रेरक उदाहरणों का उल्लेख करते हुए कहा है कि जल संरक्षण तभी सफल होगा जब ये शासन का नहीं, समाज का संकल्प बने। ये अभियान वस्तुतः आधुनिक भारत को उसकी ही प्राचीन जल संस्कृति से जोड़ने का एक अद्भुत प्रयास है। बारिश की हर बूंद प्रकृति का उपहार है। उसे सहेजना केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति के उस मूल भाव का सम्मान भी है जो हमें सिखाता है कि प्रकृति से जितना लें उतना उसे लौटाएं भी। प्रकृति के प्रति श्रद्धा भारतीय संस्कृति को उसकी अनोखी अनूठी पहचान देती है। यही सांस्कृतिक चेतना हमारे पर्वों में भी

0: दिखाई देती है, हमारे उत्सवों में भी दिखाई देती है, जहाँ आस्था और लोक जीवन एकाकार हो जाते हैं।
1: यो यो जोगनाथो चोही नंदी।
0: इसी क्रम में पुरी की विश्व विख्यात श्री जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक समावेशिता, लोक आस्था और शिल्प परंपरा का एक अद्भुत उत्सव है। और इसी पर केंद्रित है हमारी अगली प्रस्तुति नित्य नीलाचल।

0: जैसा शरीर वैसा देव, अर्थात शरीर के लिए जो आवश्यक है देव पूजन भी उसी विधि के अनुसार होना चाहिए। इस भावपूर्ण विचारधारा का प्रतीक है उड़ीसा के पुरी में अनुष्ठित हो रही यह नवदिनात्मक यात्रा। भक्त और भगवान के बीच सारे व्यवधान को तोड़कर प्रभु बलभद्र, देवी सुभद्रा और प्रभु श्री जगन्नाथ रथारूढ़ होकर रत्नवेदी को छोड़कर पूरी बड़दांड में यात्रा करते हैं। श्री गुंडीचा मंदिर में 7 दिन रहकर बाहुड़ा यात्रा में भाई बहन श्री मंदिर को वापस आते हैं। यह यात्रा भाव की यात्रा है, समन्वय की यात्रा है। कठोपनिषद में कहा गया है, आत्मानम रथिनम विधि शरीरम रथमेव तु। रथ यात्रा की महानता के बारे में गवेषक अशोक पांडे कहते हैं,
1: भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को बड़े आकार में अनुष्ठित होती है। प्रत्येक वर्ष सरस्वती पूजा यानी वसंत पंचमी से काष्ठ संग्रह का कार्य शुरू होता है। रथ निर्माण में लगभग 205 प्रकार के सेवाएं कार्य करते हैं।
0: साल में एक बार अनुष्ठित इस रथ यात्रा की प्रस्तुति बहुत पहले से होती है। श्रीनगर के सम्मुख स्थित रथ खला में पवित्र अक्षय तृतीया से ही रथ का कार्य आरंभ हो जाता है। इसमें विश्वकर्मा महाराणा, रूपकार, चित्रकार, भोई सेवक, करतिया सेवक, ताम्र विशोई, ओझा महाराणा और अन्य सेवक हिस्सा लेते हैं। रथ निर्माण के परंपरा के ऊपर प्रकाश डालते हुए पुरी के मुख्य विश्वकर्मा सेवक विजय कुमार महापात्रा जी का कहना है,
2: मैं नंदीघोष रथ का मुख्य महाराणा सेवक हूँ। 1971 से हम एक कार्य कर रहा हूँ। भगवान जी जो रथ का काम होता है ना, ये हर साल बैसाख महीने अक्षय तृतीया तिथि से शुरू होता है और आषाढ़ श्री गुंडीचा के पहला दिन नेत्र उत्सव के दिन समाप्त हो जाता है। तीनों रथ में सबसे प्रथम का लकड़ी है फांसी। फांसी का लकड़ी इस्तेमाल किया जाता है, फांसी। इसके बाद ढोरा और एक लकड़ी है, इसका नाम है असन। फांसी, ढोरा, असन की लकड़ी में ये तीनों रथ निर्माण किया जाता है और मही सिमली का लकड़ी में ये निर्माण किया जाता है। हमारा विश्वकर्मा के साथ सहयोग करने के लिए अर्थात लकड़ी को उठाने के लिए भोई सेवक है। इसके बाद लोहे का काम करने के लिए कमार सेवक है और चित्र का काम करने के लिए चित्रकार सेवक है, रूपकार सेवक है, लकड़ी में रूप देता है। महाराणा, भोई, कमार, रूपकार, चित्रकार सेवक के द्वारा यही रथ का कार्य संपन्न होता है। अक्षय तृतीया तिथि से जब भगवान जगन्नाथ जी का रथ का कार्य शुरू दिया जाता है, इसके बाद रथ का काम शुरू होता है। इसके बाद ये जो नृसिंह चतुर्दशी तिथि आता है और एक काम जोड़ दिया जाता है, इसका नाम है गुज्जर। जगन्नाथ जी का चंदन यात्रा होता है ना अक्षय तृतीया तिथि से, जो भोर तिथि आएगा चंदन यात्रा के आखिरी दिन, आखिरी दिन में दोनों पहिया में एक अक्ष संजोग किया जाता है। प्रभु के आज्ञामण आने से बाद हर कार्य यहाँ पर प्रभु के आज्ञा से होता है। अक्षय तृतीया तिथि से प्रभु आज्ञा देता है, मेरा रथ को शुभारंभ करो। इसके बाद रथ का कार्य शुरू किया जाता है। भौरी तिथि में प्रभु आज्ञा देंगे, मेरा रथ को खड़ा करो। इसके बाद दोनों पहिया में एक अक्ष संजोग किया जाता है। नेत्रोत्सव तिथि से प्रभु आज्ञा देंगे, मेरा रथ को मेरे दरवाजे पर लाओ। आज्ञा माल आने से बाद खींच के ले जाएंगे प्रभु दरवाजे के पर। जगन्नाथ जी का रथ सबसे बड़ा है और बलभद्र जी का रथ जरा छोटा है, सुभद्रा माई का रथ सबसे छोटा है। जगन्नाथ जी का रथ में 16 पहिया लगता है, बलभद्र जी का रथ में 14 पहिया लगता है और सुभद्रा माई का रथ में 12 पहिया लगता है। इस तीनों रथ ऐसे बना जाता है और कोई

0: अमेरिका में इसी तरह रथ नहीं बना जाता है।
1: श्रीक्षेत्र धाम में भक्त के साथ भगवान के अपूर्व मिलन के दो मुख्य यात्राएं होती हैं। पहला स्नान यात्रा, दूसरा गुंडीचा यात्रा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मंदिर के स्वर्ण कुएं से 108 घड़े जल से श्री बलभद्र, देवी सुभद्रा, श्री जगन्नाथ और श्री सुदर्शन को स्नान कराया जाता है। इस दिन प्रभु श्री जगन्नाथ गजानन वेश धारण करते हैं। आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा से तीनों ठाकुर अणसर घर में रहते हैं। इस समय अणसर घर की पट्टी में तीनों ठाकुरों की एक चित्रपट की पूजा की जाती है, इसे पट्टदियां कहते हैं। दैतापति सेवक हलधर दास महापात्र के अनुसार,
2: मैं हूँ हलधर दास महापात्र, बलभद्र जी का बाढ़ग्रही दैतापति हूँ। प्रभु स्नान का बाद में अंदर जाते हैं, हमारा सेवा शुरू होता है, श्रृंगार करते हैं, वेश करते हैं। रात को समय भगवान अनसर पिंडी को चल जाते हैं। ये सेवा हमारा अमावस्या तक सेवा होता है। ये सेवा 15 दिन में चलते हैं। यहाँ अनसर का घर में शुक्ल वस्त्र परिधान होगा और शुक्ल फूल लगी होगा। एकादश का दिन महाप्रभु जी की रंगीन परिधान होगा। आयुर्वेदिक वैद्य पथी पांचन होता है, आम, केला, कणस, सपुरी, सपका, ये पांच प्रकार फल भोग होता है, पथी होता है, मूंग और नारियल का पूरा जल, लवंग, जायफल दे के, चंदन दे के इसको पानी खिलाते हैं और पान भी खिलाते हैं। जितना शब्द होता है कीर्तन का, भजन का, जो बाजा सब गाना होता है, मंदिर का अंदर में कुछ चलेगा। सुस्त होने के बाद में रथ यात्रा होगा, द्वितीया तिथि में रथ का ऊपर जाएगा।
1: अणसर खत्म होने के बाद प्रभु आरोग्य लाभ करते हैं। साधारण मनुष्य के जीवन में जो घटित होता है वही श्री मंदिर में भी होता है। अणसर के बाद नेत्रोत्सव, उसके बाद रथ यात्रा। ताल ध्वज, देव दलन और नंदी घोष तीनों रथ सुशोभित होकर सिंह द्वार के सम्मुख प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं। धाड़ी पहंडी में कब आएंगी चतुर्धा मूर्ति?
3: रथखला से तीनों ही रथ सज धज करके तैयार करके लाए जाते हैं और श्री मंदिर के महाद्वार के ठीक सामने उत्तर दिशा की तरफ मोड़ करके खड़ा कर दिया जाता है। ऐसे में भगवान जगन्नाथ अपने रत्न वेदी का त्याग करके बाहर निकलते हैं और पहंडी विजय करते निष्ठानंद सरस्वती महाराज अपने परिकरों के साथ तीनों ही रथों का वे अवलोकन करते हैं और रथों पर जाकर के अपना आत्मनिवेदन चतुर्धा देव विग्रहों को देते हैं। उनके वापस आने के बाद सीधे श्री नाहर से पुरी के गजपति महाराज भगवान जगन्नाथ के प्रथम सेवक तीनों ही रथों पर वे सोने के मूठ वाले झाड़ू से छेरा पोरा करते हैं और इस तरह से भगवान जगन्नाथ जब जाते हैं अपने गुंडीचा घर में जाकर वहाँ 7 दिन तक विश्राम करते हैं, उसको गुंडीचा महोत्सव कहते हैं।

0: रथ यात्रा की समाप्ति बाहुड़ा यात्रा में होती है। यात्रा तो समाप्त हो जाती है, पर प्रभु की अनंत लीला श्री मंदिर के रत्न सिंहासन में चलती रहती है। श्री मंदिर के शिखर पर पतित पावन की ध्वजा लहराती रहती है। उसी ध्वजा में सारे विश्वास का समन्वय होता है। ऐसा लगता है जैसे सबकी सांसें तरंगित हो रही है महोदधि में। और कवि इस दृश्य को शब्दबद्ध करते हुए भाव विभोर होके गाने लगते हैं, देखो ये नित्य नीलाचल सभी तीर्थों का संगम स्थल, देखो ये नित्य नीलाचल सभी तीर्थों का संगम स्थल।
1: ये था लघु रूपक नित्य नीलाचल। मूल उड़िया आलेख तरुण कांति राउत का था, जिसका हिंदी अनुवाद किया डॉक्टर रश्मि रेखा जिना ने। वाचन और प्रस्तुति थी प्रज्ञा पारमिता साहू की। आकाशवाणी कटक।

0: भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक सुंदर पक्ष ये भी है कि यहाँ ऋतुएं केवल मौसम नहीं बदलती बल्कि अपने साथ स्वाद, रंग और उत्सव भी लेकर आती हैं। इसी स्वाद और विरासत की एक अनूठी झलक मिलती है दिल्ली में हर साल आयोजित आम महोत्सव में। यहाँ देश के अलग अलग राज्यों से लाई गई सैकड़ों किस्मों के आम न केवल प्रदर्शित किए जाते हैं बल्कि भारतीय बागवानी, कृषि अनुसंधान और फल संस्कृति की समृद्ध परंपरा का भी परिचय कराते हैं। पत्रिका में हमारी अगली प्रस्तुति है इसी आयोजन पर, ये आम कुछ खास है।
1: मैं डॉक्टर ए के सिंह, एक्स प्रिंसिपल साइंटिस्ट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और मैंगो के विषय में आपको ये बताना चाहूंगा कि आम महोत्सव जो हमारा करने का जो उद्देश्य होता है वो होता है कि हम पूरे कंट्री से सभी जगहों पे एक दूसरे को एक मिठास के रूप में परिचित करा सके। और चूंकि एक आम ऐसा फसल है जो कि ट्रॉपिकल से लेके सब ट्रॉपिकल रीजन माने उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, हर जगह उगाया जाता है। केवल अंतर ये होता है कि हर जगह की जलवायु में प्रजाति विशेष का विशेष महत्व होता है और उस सूक्ष्म जलवायु में जो क्षेत्र विशेषता होता है उसमें आम का स्वाद अलग ही होता है। तो हमारा उद्देश्य होता है कि हर क्षेत्र के आम यहाँ पे आए और वो अपनी मिठास पूरी जनता के बीच में ले जाए और जनता सभी प्रजातियों के बारे में जान सके कि उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक कौन सी प्रजातियां उगाई जाती है। इस बार देखिए वैसे तो आए थे 20 पार्टिसिपेंट्स ऐसे आए थे जो ग्रोवर्स थे और 6 पार्टिसिपेंट्स ऐसे आए थे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थे और वो हमने कवर किया था उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, तो 5-6 स्टेट ही हमने पूरा कंप्लीट कर दिया।
2: डॉक्टर नितिन विक्रम सिंह प्रधान वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। हमारे पास हमारे संस्थान से विगत 15 वर्षों में लगभग 10 संकर किस्में विकसित की गई है आम की। उषा सूर्या है, उषा सूर्या एक सिलेक्शन है, बाकी सारी संकर किस्में है। अरुणिमा है, आपका प्रतिभा है, श्रेष्ठ है, पीताम्बर है, लालिमा है, अभी रिसेंटली हमने दीक्षिता भी रिलीज की है। मोस्टली अमरपाली और संचेषण के संकरण से बना है पर कुछ किस्में तो दशहरी और लाल सिंगरी भी सम्मिलित। जैसा आप सभी देखते हैं आम महोत्सव यहाँ चल रहा है और आम के नाम पे देखिए दिल्ली की जगह में कितने लोग, कितनी भीड़ यहाँ उमड़ी। आम केवल एक फल नहीं है, आम एक इमोशनल कनेक्शन है लोग। जैसे आप यूपी की बात कर लें तो वहाँ दशहरी है, आप वेस्ट बंगाल की बात कर लें वहाँ मालदा बहुत फेमस है, बिहार में जरदालू है, किशनभोग है, आप साउथ में चले जाए, आंध्रा में चले जाए तो वहाँ बैगना पल्ली है, महाराष्ट्र में चले जाए तो अल्फांसो है, गुजरात में केसर है। तो ऐसे ही विभिन्न किस्में हैं जो मिठास अपने स्वाद से लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है।
3: मेरा नाम भरतराज सिंह यादव है, मैं एमपी कठियोड़ा से आया हूँ। ये साइज में सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा आम है और ये हमारे कठियोड़ा में होता है, हमारे गांव में। और भी बहुत सारी वैरायटीज है लेकिन हमारे सीजन अभी खत्म हो चुका है तो हम लोग इतनी लेके आए।
4: मेरा नाम रामकिशोर मौर्या है, मैं मलिहाबाद लखनऊ से हूँ। हमारे यहाँ अनेक प्रकार की प्रजातियों के आम पाए जाते हैं जिनको लोग जानते नहीं, इसलिए दिखाने के लिए कि लोग जाने पहचाने। हम अकेले 250 वैरायटी यहाँ आम की वैरायटी प्रस्तुत किए हैं जिसमें खट्टे मीठे हैं और कुछ चूस कर खाने वाले हैं, कुछ काट के खाने वाले हैं, कुछ अचार की वैरायटियाँ विशेषकर जो कि सभी प्रजातियों का अपना एक अनूठा स्वाद है ताकि इन लोगों को मार्केट में जहाँ भी दिखे उनका स्वाद ले और खाए, तभी उसके बाद हमारे किसान की आमदनी बढ़ेगी। जो हमारी पुरानी हमारे पैतृक वैरायटियाँ है वो जीवित रहने अन्यथा विलुप्त हो जाएंगी।
5: मैं कदीम चंदन नर्सरी मलिहाबाद लखनऊ से आया हुआ हूँ। मेरा नाम शेख शादाब अली है, मेरा पुरखों से काम चला आ रहा है नर्सरी का, जो अलग अलग वैरायटी को डेवलपमेंट करते हैं, तैयार करते हैं, पौधे नए नए निकालते हैं। हमारे पास तमाम सी वैरायटी हैं, सुरखा बर्मा है, गुलाब खास है, हुसनारा है, दशहरी है, राम केला है, चन्नत पसंद है, साजिद पसंद है, बनारसी है, रस कपूर है, तमाम सी वैरायटी, इतनी वैरायटी है कि यहाँ पे आपको हम गिनाते हुए थक जाएंगे। अदर की तमाम सी ऐसी वैरायटी है जो आप एक दूसरे को मिलाती है, उसकी मिठास इतनी मिठास होती है जो दिल को खुश कर देती है और दिलों में मोहब्बत पैदा कर देती है। जो भी आम खाते हैं और दिल से हमको दुआएं देके जाती।
0: ये आम कुछ खास हैं। दिल्ली के वार्षिक आम महोत्सव के बहाने भारत की फल समृद्ध

कृषि परंपरा और विविधता की रोचक यात्रा अभी आपने सुनी। सहयोग श्रीनाथ दीक्षित का था। भारत की सांस्कृतिक धरोहर केवल परंपराओं से नहीं, उन कलाकारों से भी समृद्ध होती है जो अपनी साधना से लोक और शास्त्र के बीच एक सेतु बन जाते हैं और देह के परे जाकर समय पर अपने हस्ताक्षर अंकित कर देते हैं। दुख की बात यह है कि बीते कुछ समय में ऐसी ही दो विशिष्ट विभूतियों ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। सबसे पहले बात लोक गाथा की विश्व यात्री पद्म विभूषण तीजन बाई की। छत्तीसगढ़ की लोक गाथा पंडवानी को गांव की चौपाल से अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाने वाली तीजन बाई ने अपने सशक्त गायन, प्रभावशाली अभिनय और अद्भुत कथन शैली से लोक कला को नई पहचान दिलाई। उन्होंने परंपरागत सीमाओं को तोड़ते हुए पंडवानी की कपालिक शैली को अपनाया और अपनी अनूठी प्रस्तुति के माध्यम से भारतीय लोक नाट्य को विश्वव्यापी सम्मान दिलाया। उनके स्वरों में लोक जीवन की मिट्टी, महाभारत की कथा और भारतीय लोक संस्कृति की आत्मा एक साथ सुनाई देती है। सुनते हैं तीजन बाई से आकाशवाणी रायपुर के लिए रिकॉर्ड किया गया उनका एक पुराना साक्षात्कार।

పాట అటారి ఏది హమద్రు ఊహే కి దేనా మేము కుచ్ దిన్ హమన్ అటారి మే రహేన్ ఫిర్ హమలా छोटपन में पकड़ के गनियारी में ले आई वहाँ हमार लालन पालन हुई हमार माँ के नाम सुखबती और पिताजी के नाम छनुक लाल रही से छह भाई बहनी रहे हैं दो भाई चार बहनी गरीब होने के नाता ऐसे गुजारा बहुत दिन ले चलत रही से अब जब मैं बड़े लड़की हूँ तो संज्ञान हो गए तो लोग लेकर छोड़ के चल देवे भाई बहनी मन के पूरा देखभाल मैं करूँ हमन छह भाई बहनी में कोनो पढ़े लिखे नहीं है हमार दाई है बांस गीत गावे और हमार बाबू बांस बजावे माँ के साथ गुनगुनाए के जो आदत पड़ीस तो ऐसे पड़ीस कि वो एकदम लट लग गए लट लगे तो मैं कर्मा ददरिया सुआ पड़की बांस गीत गा लेते रहे हूँ माँ गावे है

बाटी भोरा भी अब्बड़ खेलत रही हूँ, कबड्डी खेलत रही हूँ, सूर खेलत रही हूँ, खो खो खेलत रही हूँ। तो रास्ता में मोर नाना के घर पड़त रही से, छोटे नाना के धनियारी गाँव में, तो छोटे से नौकर झोपड़ा रही से, तेमे भीतर में बैठ के पंडवानी के गायन गात रही से। बिजलाल पारधी मोर नाना जी के नाम, और वो हम ऐसे टेर लगाई द्रौपदी बन के श्री कृष्ण जिला, तो वो आवाज सुने के बाद तो मोर रोम रोम एकदम खड़ा हो गई। अरे बाप रे, हाथ कतेक सुंदर एक आवाज, और कतेक बढ़िया भगवान ल पुकारा थे। अब ये लोग मन हा बिजलाल नाम रही से, पर भगवान के नाम जपे ना तो ओला जपरी कहा भी। 11-13 के लगभग में रही हूँ मैं, तो ये बच्चा कतेक सुंदर एक दिल में लगाव है। तो सुने पर आते की वो छोटे से चटाई निकाली से कथे में बैठ बेटा, इमें बैठ। कतका कन सुने ऐसे की कही, तो एक हफ्ता के जतका कहानी सुनाए रही से नहीं, तेला 5-10 मिनट में खत्म कर दियो। तो नाना के आंखी में आंसू आ गए। उसी समय वो बोली कि बेटा, मोर घर में हीरा है हे प्रभु, और मैं नहीं परखे सकी हूँ इसी की। आज भी गुंजा थे, टेर के आधार पे ही मैं टेर लगा था जब पंडवानी जाता हूँ। तो

जो जनता जनार्दन के सम्मान हमल मिलते वो गदगद कर देते, ऐसे लग जाते कि हम धरती में नहीं के स्वर्ग में हनका, ऐसे लागते मोर मन लागते भाई। जब अच्छा कथा में हम डूब के उन मन ल सुनाथन और उन मन कोई कोई जगह रोए धोए की बात है वो मन रोना शुरू कर देते, हम उसका सम्मान पाके अपन आप ला हम पूरा उकरे ऊपर अर्पण कर देते, हम लग कई कौन सी मिट्टी।

बना के हमला भेजी। घर से हमला सब लोग ले सम्मान और प्यार मिला थे, ये में अब बड़ा आनंद आते। आज भी वही है, अब आगे बढ़ मालिक के हाथ।

0: मैं तो एक तो नारी हूँ है ना, और नारी के पात्र कहे माँ मोला कोई कष्ट नहीं पड़े और आनंद आते ज्यादा, पर जब भीम के रोल करता हूँ तो दो गुना आनंद आते। मैं अपन आप लग, मैं भीम समझने लग जाता हूँ कि मैं ही भीम हूँ, कि वो की जोशीला गदा पकड़ के रिंग था, तेकर कारण वही है कि मैं सचमुच में वो समय मैं भीम की रोल नहीं करके मैं खुद भीम हूँ, ऐसे अनुभव लागते। चाहते हैं तो मैं पंडवानी ला आजकल के आधुनिक युग में आधुनिक रूप से काम कर सकत रहे हूँ, ओला ऐति तेती बहका सकत रहे हूँ, वो मैं अच्छा अच्छा रोचक डाल सकत रहे हूँ, पर वो रोचक डाले में वो चीज नहीं दिखती, वो तो बर्बाद हो जाती ना, फिर नाम कहाँ होती। तो ये चीज बचाए के खातिर हमला सब जने जुल मिल के अपन संस्कृति ला अच्छा सजा के रखे माँ, हमन ला फायदा है, हमारे आने वाले पीढ़ी मन ला फायदा है, सिखाए में जो आनंद आते मैं अब कुछ मुला अच्छा नहीं लगे। कतको लेकर रोते रोवत रोवत गाते आ तो बोले भूर यारो बोले चुचकारो ये गाडर ही ते गाडर भी बेटा बहुत सुंदर गाले था, बोले बढ़ावा भी दो, तो ये में बड़ा आनंद आते मैंने गुरु बन के काम करो तो आपके समय में मुला बहुत अच्छा लगते, लेकर मुला सिखा के दे दो।
1: तपी करत मैं धुरला भेट्यो और नरसिंह ला भेट्यो खंभा भुईर बिनत सौरी ला भेट्यो क्योटल भेट्यो गंगा
2: और अब स्मरण करते हैं भारतीय रंगमंच की एक महान विभूति विजया मेहता का। विजया मेहता आधुनिक भारतीय रंगमंच की उन अग्रणी निर्देशकों में थी जिन्होंने मराठी रंगभूमि को नई सौंदर्य दृष्टि, प्रयोगशीलता और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। उन्होंने शास्त्रीय और आधुनिक रंग भाषा के बीच एक सशक्त सेतु बनाया। अभिनय, निर्देशन, रंग प्रशिक्षण और नाट्य चिंतन, हर क्षेत्र में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा। उनके व्यक्तित्व और योगदान पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं सुप्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक अमोल पालेकर।
3: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी जिसे दिग्गज कहना भी कम होगा। एक छोटी सी बात मैं कह दूं कि विजया जी के बाद जितनी भी अभिनेत्रियां मराठी स्टेज पे आई और बड़ी अच्छी अभिनेत्री, उन सब पे और जिन्होंने विजया जी के साथ काम किया था उन सब पे विजया जी के अभिनय की छाप इतनी जबरदस्त थी कि ये कौन से स्कूल से आई है ये बताने की जरूरत नहीं रहती थी। मतलब उनके करियर के शुरुआत से आखिर तक उन्होंने एक ऐसी छाप छोड़ दी मराठी रंगमंच पर कि जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकता। रंगायन जैसी संस्था का उन्होंने निर्माण किया और अलग अलग प्रायोगिक नाटक उन्होंने पेश करना शुरू किया। उन्होंने एक अपना प्रेक्षक वर्ग बनाया जो बढ़ते गया। और विजया जी के बारे में एक बात कहना बहुत जरूरी है और समझना, विजया जी ने उनकी शुरुआत प्रायोगिक रंगमंच से की लेकिन वहां से वो मेन स्ट्रीम रंगमंच पर चली गई और मेन स्ट्रीम रंगमंच पर उन्होंने अभिनय भी किया और निर्देशन बहुत ज्यादा किया। सवाल उठाना, अलग किस्म के नाटक पेश करना, नए नए नाटककार पेश करना, ये सारा योगदान विजया जी ने बड़े काबिलियत के साथ किया।
2: भारतीय लोक कला और रंगमंच की ये दोनों विलक्षण साधिकाएं अपने अपने क्षेत्र में सृजन, समर्पण और सांस्कृतिक प्रतिबद्धता की ऐसी विरासत छोड़ गई हैं जो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। भारतीय संस्कृति की शक्ति उसकी निरंतरता में है। प्रकृति के संरक्षण से लेकर लोक आस्था तक, कृषि परंपरा से लेकर सृजनशील कलाकारों की विरासत तक, हर धारा एक ही सांस्कृतिक प्रवाह का विस्तार है। इसी विश्वास के साथ

0: ये आकाशवाणी है। नमस्कार, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन।
1: दिस इज आकाशवाणी। गुड इवनिंग लिसनर्स, वेलकम टू द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। टुनाइट वी प्रेजेंट अ वीणा रिसाइटल इन कर्नाटक स्टाइल बाय डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी।
0: डॉक्टर रामवरपु शरत बाबू और श्रीमती विजयलक्ष्मी की बेटी डॉक्टर आर माधुरी देवी ने वीणा वादन की शिक्षा अपनी माताजी वीणा गुरु श्रीमती रामवरपु विजयलक्ष्मी के पास प्राप्त की। आपने संगीत की बारीकियां सुप्रसिद्ध वीणा विद्वान डॉक्टर ई मणि शंकर शास्त्री से सीखी। मनोधर्म का पालन करते हुए वीणा पर लयबद्ध तरीके से रस और भाव का प्रदर्शन डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी की विशिष्टता रही है। वीणा वादन में आकाशवाणी द्वारा ए ग्रेड प्राप्त डॉक्टर आर माधुरी देवी ने कई भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया है। आपको विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है।
1: बॉर्न टू डॉक्टर रामवरपु शरद बाबू एंड लेट श्रीमती रामवरपु विजयलक्ष्मी, डॉक्टर माधुरी देवी इज एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी। She began her training in Veena at an early age under the guidance of her mother, a well-known Veena guru, and even gave her first presentation at the age of 8. She later honed her skills under the tutelage of the renowned Veena artist, late Dr. Ee Mani Shankar Shastri. Dr. Madhuri Devi has earned her PhD degree for her thesis on the rasa elements in Telugu musical compositions of the prominent composers since Annamacharya up to 19th century. As an artist, she has performed extensively in respected platforms all over the globe and is the recipient of a number of awards, titles and felicitations. Her music has been appreciated for expounding the rasa and bhava aspects of melody, manodharma and her command over laya. She also has a number of compositions to her credit.
0: आज के कार्यक्रम में डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी की संगत कर रहे हैं मृदंगम पर श्री महादासु येडकोंडलु और घटम पर श्री मावडूरु सूर्यप्रसाद।
1: In tonight's concert, Dr. Ramavarapu Madhuri Devi is accompanied by Sri Mahadasu Yedukondalu on the mridangam and Sri Mavaduru Suryaprasad on the ghatam.
0: Dr. R. Madhuri Devi, आज के कार्यक्रम का आरंभ नाटराग में मुत्तैया भागवतार की रचना शक्ति गणपतिम से कर

0: डॉक्टर आर माधुरी देवी की अगली प्रस्तुति है रीति गौड़ राग में संत त्यागराज की रचना नन्नु विड़ची कदलकुरा जो कि त्रिपुट ताल में निबद्ध है.
1: She next presents a composition of Saint Tyagaraja in Riti Gaula Ragam, Triputa Talam.

संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप डॉक्टर रामावरपु माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन सुन रहे हैं। आपकी संगत कर रहे हैं मृदंगम पर श्री महादासु येडुकोंडलु और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद। कार्यक्रम को जारी रखते हुए

0: का तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर प्रस्तुत किया श्री महादासु येड़ुकोंडलु ने और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद ने। डॉक्टर रामवर्पु माधुरी देवी आज के कार्यक्रम का समापन बेहाग राग में डॉक्टर मंगलमपल्ली बालमुरली कृष्णाकृत तिल्लाना से कर रही हैं, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: That was Taniyavartanam on the Mridangam by Sri Mahadasu Erukondalu and on the Ghatam by Sri Mavuduru Surya Prasad. Dr. Ramavarapu Madhuri Devi concludes her performance this evening with a Tillana of Dr. Mangalampalli Balamurali Krishna. It is in Behagragam Aditalam.

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी तक आप डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन सुन रहे थे। आपकी संगत कर रहे थे मृदंगम पर श्री महादासु येडुकोंडलु और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के विशाखापट्टनम केंद्र में ध्वन्यांकित किया गया।
1: With this we come to the end of tonight's national program of music, wherein we brought you a Veena recital in Carnatic style by Dr. Ramavarapu Madhuri Devi. She was accompanied by Sri Mahadasu Erukondalu on the Mridangam and Sri Mavuduru Surya Prasad on the Ghatam. This program was recorded earlier at the studios of Akashvani Vishakhapatnam.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर बाद यानी ठीक 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05
3: अपर्णा सिंह। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारे विशेष संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ऐतिहासिक 2 दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है। मंजुमीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
3: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत राय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठन करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव के एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा लगाए गए उस आरोप की आलोचना की है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का ये बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने इस